ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

नानक सूतक एव नाम करै ज्ञान उतारै तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सुत

ਅਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऐं 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु नज़र आहे। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कंवरराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ कुझु फिल्मी गीत नशर कया वेंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी विचूड़ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो, छो त भगत कंवरराम साहब खे ॿुधूं।

साहब साधन जी मिठे आवाज में कलाम दे रही आकाशवाणी जी सिंधी सरस आए हर पेश है तबसरो मार्च 17 अगस्त 2026 ते मंगोलिया के उलनबतर में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी जे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP17 जे 17 इजलास में भारत पहिरियों भेरो साएगा ए बियन खुलियल मैदान में इकोसिस्टम बाबत गाइड पदरी कई आहे। इन मसौदे में खुलियल चरागाहन सावनगाहन बयाबानन ए बियन कुदरती खुलियल मैदान जे इकोसिस्टम जे शाहूकार डाइवर्सिटी उन जी माहौलत जी अहमियत ए समाजी माशी अहमियत ते जोर दिनो आहे। असां इन्हनि खुलियल ज़मीननि साहेगा चरा मैदाननि जे उन्हनि खे संभाले रखण ॿीहर खां ज़िंदा करण ते ज़ोर ॾिनल आहे। इन्वाइट खे माहौल जंगल ऐं क्लाइमेट चेंज जे काबीना वज़ीर भारतीय काबीना वज़ीर श्री भूपेंद्र सिंह हिकु वीडियो मैसेज ज़रिए पधरो कयो। ॿुधायो त खुलियल चरागाह सावा मैदान ऐं ॿिया खुलियल मैदान जिन ते वण कोन हूंदा आहिनि त पोइ बि इहे ॿियनि कुदरती स्पीसीस खे जानवरनि खे जीतनि खे ज़िंदा रहण जो हिकु इकोसिस्टम मुयसरु था कराइनि। ॿुधायो त जदीद साइंस में पिण मकानी क़ौमुनि जी समुझ ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे जंहिंमें खुलियल चरागाहनि खे बायोडाइवर्सिटी ज़िंदा रहण लाइ ऐं माहौलत में लचकेदारी लाइ अहमियत ॾिनी वई आहे। वज़ीर चयो त इहा गाइड संदसि दिलि जे वेझो आहे छो जो हू अजमेर में वॾो थियो आहे राजस्थान में जिते चौधारी रेगिस्तान ऐं साई ज़मीन आहे चरागाह आहिनि जिनखे वेस्ट लैंड करे छॾियो वेंदो आहे बेकार ज़मीन करे छॾियो वेंदो आहे। ओरन ऐं गौचर लैंडस्केप्स जेके आहिनि चरागाह मैदान आहिनि जिनखे ॻोठाणा बचाव मुयसरु कराईंदा आहिनि या लोकल मकानी क़ौमूं बचाव मुयसरु कराईंदा आहिनि सिर्फ़ ज़मीन लाइ सुठा पर सदन चारावे लाइ ऐं सदन ज़िंदा रहण लाइ पिण लाज़मी आहे। लाइट खे रस्मी यूएनसीसीडी COP17 जे साइड इवेंट में पधरो कयो वियो। लाइट खे पधरो करण जे वाके में अशोका ट्रस्ट रिसर्च इन इकोलॉजी ऐं एनवायरमेंट ॿियनि इदारनि सां मिली करे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर इन खां अलावा सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी लैंड मैनेजमेंट इन खां अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एडुकेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC ऐं इसरो सां मिली करे पधरो कयो। इन्हनि सभिनी गॾिजी करे एवज़न सरकार पारां साइंटिफिक ऐं खोजना इदारनि आलमी इदारनि ऐं समाजी समाज

करा पधरो पियो हिते बहस महस कंदे इन जी अहमियत खे रोशनी में आंदो वियो ऐं ॿुधायो त कीअं इन लाइ मज़बूत साइंटिफिक ॼाण जी ज़रूरत आहे। हिन गाइड में काफ़ी इंफॉर्मेशन ॾिनी वई आहे, ख़बर चार ॾिनी वई आहे, ख़ासि करे खुल कुदरती मैदान ते जेके भारत भर में आहिनि। इन्हनि जे इकोलॉजिकल करेक्टर्स खे रोशनी में आंदो वियो, बायोडाइवर्सिटी खे मिलंदड़ हिमायत, इन खां अलावा लोकल ट्राइब्स ऐं क़ौमुनि खे मिलंदड़ मदद ते पिणु ज़ोर ॾिनो वियो। ॿुधायो त कीअं इन खुला चरागान सबबि फायर इकोलॉजी ऐं कार्बन खे पिणाती मिली रही आहे। भारत जी ओएनई रेंज वन रेंज जेका हिमालय खां वठी करे तेराई जे सावन मैदाननि ताईं आहे, इन खां अलावा राजस्थान जे सर ऐं गुजरात जे बन्नी रेगिस्तान ताईं आहे। हुन डेकन सवनास महाराष्ट्र जे पहाड़ी ज़मीन, रेविन्स स्क्रबलैंड समुंडी किनारनि ऐं बैबननि ताईं आहे। इहो इकोसिस्टम वसीअ बायोडाइवर्सिटी खे हथी थो ॾिए, इन खां अलावा ज़मीन खे पाणी खे बचाव थो मुयसरु कराए, ज़मीन में कार्बन खे संभाले थो रखे जंहिं सां ज़री पैदावार सुठी पई थिए। उन्हनि लाइ इहा गाइड पॉलिसी तयारु कंदा आहिनि, खोजना कंदा आहिनि, कन्वर्सेशन्स प्रैक्टिशनर ऐं ॿियनि एजेंसियुनि खे खुलियल गाह जे अहमियत खे रोशनी में आणींदी, इन्हनि खे संभाले रखण में मदद कंदी। COP 7 में इन खे लॉन्च करण सां न फ़क़ति भारत खे हिकु ख़ासि प्लेटफॉर्म मिलियो आहे जंहिंमें हुन पंहिंजे खुलियल चरागाह ऐं खुलियल मैदाननि जे इकोसिस्टम खे पधरो कयो आहे। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: फिल्म गीत आवाज़ करे होली मालो फिल्म सां भगंदी नावाणी जी आवाज़ में गीत सां।

सिटी सिटी सिटी ओ कार है सिटी आज सही खाना सही घूमे थी सिटी सिटी सिटी ओ कार है सिटी आज सही खाना सही घूमे थी।

आद जी अगकथी साल 2026 ऐं 27 लाइ 10 बेसिक पॉइंट्स वधाए करे 6.8% कई आहे। मर्कज़ी अफ्रीकन रिपब्लिक में सोन जी खाणी जे टुटण सां उन में 30 माइनस खाणी खोटींदड़ मारिजी विया आहिनि। राहत कार्रवाई जारी आहे। मर्दनि जे हॉकी वर्ल्ड कप पूल डी मैच में भारत पंहिंजे मुख़ालिफ़ पाकिस्तान खे मात ॾिनी आहे।

तो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ब्रह हीर संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रो है वरी वहां से मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 तेसी तीन इजाजत सदन कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तो सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक व्याख्यात वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि

0: साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल नीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब हुर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The government has approved an incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in their kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The Ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid student protests over the issue. Issuing 8 notifications, state government said the cancelled exams include those conducted by Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and outsourced agency TSR Data Processing Private Limited since 2014. The exams cancelled include recruitment for drug inspectors, assistant professors, deputy collectors, dental doctors, assistant engineers, civil judges, additional public prosecutors, and forest range officers, among others. Among the other major examinations cancelled are recruitment for lecturers in government polytechnics, senior scientific officers, assistant conservators of forest and other administrative and technical posts. National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. The anti-corruption branch ACB of Delhi government has arrested former minister and AAP leader Satendra Kumar Jain IAS officer and former CEO of the Delhi Jal Board, Udit Prakash Rai, and four other accused persons.

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में स्वास्तिक भारद्वाज द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद, सरोद पर दानिश असलम और तबले पर पशुपति नाथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है 7:32 और 30 सेकेंड। साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और इसे आज लेकर हाजिर हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे उससे पहले सुनेंगे ये संदेश।
1: ₹10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने खुद के प्यारे से कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और मैं हूं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। लेकर आए बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे नगमे आप सभी श्रोताओं के लिए और कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें।

दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ पल गुजर जाते हैं, कुछ पल याद बन जाते हैं और कुछ पल तस्वीर बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, तस्वीर जिक्र चलेगा यहाँ पर आज तस्वीर का, क्योंकि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो यादें हैं ना वो तस्वीर के रूप में ही जो है ना, पल जो है वो यादों के रूप में, तस्वीरों के रूप में हमारे पास रह जाते हैं। आज का दिन कुछ ऐसा ही खूबसूरत पलों के नाम करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं अपने इस दिन की इस खूबसूरत गीत के साथ और खूबसूरत बात के साथ, क्योंकि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी तेज क्यों ना भाग रही हो, कभी कभी एक पल को रोक लेना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वक्त तो आगे निकल ही जाता है दोस्तों, लेकिन एक तस्वीर जो हमेशा ठहरी रह जाती है एक याद के रूप में, एक खूबसूरत से पल के रूप में। जरा सोचिए आपके फोन की गैलरी खोलते ही कितनी सारी कहानियां आपके सामने उभर कर आती हैं, कहीं बचपन की तस्वीर, कहीं स्कूल की यादें, कहीं दोस्तों के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत दिन, वो खूबसूरत पल, तो कहीं परिवार की प्यारी से मुस्कुराहट वाला टाइम, कहीं कोई यात्रा की कुछ यादें, और कहीं ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हम खुद ही कह देते हैं कि अरे ये फोटो कब खींची भाई, ये तो पता ही नहीं चला। यही जादू होता है फोटोग्राफी का। जी हाँ, फोटोग्राफी सिर्फ एक कैमरा दबाने का नाम नहीं होता है दोस्तों। फोटोग्राफी का मतलब होता है एक पल को महसूस करना, उसे देखना, फिर उसे हमेशा के लिए संभाल लेना, सजो कर रखना, अपने आगे आने वाले वक्त में उसे याद करने के लिए हम इन यादों को सजोते हैं एक तस्वीर के रूप में।

दोस्तों, अभी आपने गौर किया है कि एक ही तस्वीर को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग अलग बातें महसूस कर सकते हैं। किसी के लिए समुद्र की तस्वीर सिर्फ समुद्र है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही तस्वीर उसकी पहली समुद्री यात्रा की याद हो सकती है। किसी के लिए किसी पुराने घर की फोटो सिर्फ एक पुरानी इमारत है, लेकिन किसी के लिए वो उसका बचपन है। इसलिए तस्वीरों की सबसे खास बात ये है कि तस्वीरें सिर्फ चीजें नहीं दिखाती, तस्वीरें तो भावनाएं दिखाती हैं। एक तस्वीर में खुशी हो सकती है, उत्साह हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कभी कभी बिना कुछ कहे पूरी कहानी भी हो सकती है एक तस्वीर। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है।

आपने सोचा है कि कैमरे से पहले की दुनिया कैसी थी? आज हमारे हाथों में मोबाइल है और मोबाइल में कैमरा। ये एक मोबाइल एक ऐसी चीज हमारे हाथ लग चुकी है जिसने सब चीजों का स्थान जो है ना वो अपने में समेट लिया है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो आपके पास लिखित में कोई दस्तावेज हो, हर चीज का जो प्रारूप है वो आपके मोबाइल में आपको मिल जाता है। जहाँ चाहा कैमरा खोला, क्लिक किया और बस फिर एक फोटो पसंद नहीं आई तो दूसरी क्लिक कर ली, दूसरी ले ली। लेकिन जरा सोचिए, कैमरे के शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तस्वीर खींचना एक खास काम हुआ करता था दोस्तों। लोगों को कैमरे के सामने बैठना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती थी और तस्वीर बनने का इंतजार भी करना पड़ता था। याद है ना वो नेगेटिव्स वाली जो फोटोज होती थी, उनमें ही कई बार होता था कि हम देखने की कोशिश करते थे कि आखिर हम कैसे दिखते हैं उस तस्वीर में, उस नेगेटिव में जो असली में बनकर आएगी, उभर कर आएगी, एक रंगीन कागज पर उभर कर आएगी। आज हम एक सेकंड में 10 तस्वीरें खींच लेते हैं और फिर 10 में से 9 को तो डिलीट ही कर देते हैं। देखा, टेक्नोलॉजी ने कितना काम हमारा जो है ना वो आसान कर दिया है। कई बार 10वीं तस्वीर भी देखकर कहते हैं नहीं यार, इसमें मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ। फिर एक और फोटो लेते हैं, फिर एक और और आखिर में कैमरा रोल में 200, 250, 300 बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ जाती है।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल यहाँ बात चल रही है आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे और बातें हो रही हैं तस्वीरों की। आज फोटोग्राफी की बात तो हो और सेल्फी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल जी हाँ, सबसे इजी टास्क है सेल्फी लेना, बहुत इजी। एक जमाना था जब लोग कहते थे अरे भाई कोई हमारी फोटो खींच दो, अब जमाना कहता है भाई फोन देना जरा सेल्फी लेनी है। पहले फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर्स चाहिए था, अब फोन सामने किया, एंगल देखा, लाइट देखी, बाल ठीक किए और बस एक क्लिक किया और लीजिए आपकी फोटो आ गई आपके हाथों में।

से चीज। जी हाँ, ये वर्ड याद है, जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो सामने जो फोटो हमारी खींच रहा होता है बंदा, फोटोग्राफर, कोई भी दोस्त यार सहेली, वो कहते हैं से चीज। से चीज कहेंगे तो जो तस्वीर है आपकी बहुत ही मुस्कुराती हुई आएगी और बहुत ही खूबसूरत भी आएगी। लेकिन सेल्फी ने एक मजेदार चीज तो जरूर की है दोस्तों, इसी चीज के साथ साथ। अब हमें फोटोग्राफर से ज्यादा ना चिंता होती है अपने कैमरे के एंगल की। ऊपर से फोटो कैसी है, नीचे से कैसी है, साइड से कैसी है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिल्टर कौन सा लगाए भाई। जी हाँ, एक बहुत अच्छी सी खूबी है, बहुत कमाल की खूबी है कि आप कैसे भी दिखते हो, नेचुरली आप कैसे भी दिखते हो, अच्छे, एवरेज, गुड, वेरी गुड, अगर आपका फिल्टर बढ़िया है तो आपके लुक्स में जो चार चांद आपका फिल्टर लगाता है, आपकी जो तस्वीर को और खूबसूरत जो बनाता है ना, उसके तो कहने ही क्या। लेकिन दोस्तों, फोटोग्राफी सिर्फ खूबसूरत चेहरों या शानदार जगहों की तस्वीरों को के लेने का ही नाम नहीं होता है। एक अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो उस चीज में भी खूबसूरती देख सके जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर दें। जी हाँ, असली तस्वीर वही होती है जो आपको एक एवरेज सी चीज का एक खूबसूरत पहलू दिखाए, जैसे बारिश की खिड़की, सड़क किनारे चाय का कप,

सुबह की पहली धूप, दादी के हाथों की झुरियां, बच्चे की खूबसूरत सी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान, किसी पुराने घर की दीवार, पेड़ पर बैठी चिड़िया या फिर सड़क पर दौड़ता हुआ कोई प्यारा सा बच्चा, ये सब भी जिंदगी के छोटे छोटे फ्रेम्स हैं। और कभी कभी यही छोटे फ्रेम सबसे बड़ी याद बन जाते हैं एक तस्वीर के रूप में।

आप सुन रहे हैं गिरो भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी यार की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल वक्त हो चुका है यहाँ पर 7:50 बस थोड़ा सा ही वक्त आपका और हमारा साथ। और

दोस्तों आप जानते हैं कि रिश्तों की भी अपनी एक फोटो गैलरी होती है। कुछ लोग हमारे साथ तस्वीरों में होते हैं और कुछ लोग हमारी यादों में। कभी कभी पुरानी तस्वीर खोलते ही हमें वो लोग याद आ जाते हैं जिनसे हम बहुत समय से नहीं मिले हैं। एक तस्वीर अचानक हमें कोई साल पीछे ले जाती है। हम वही चेहरा देखते हैं, वही मुस्कान, वही जगह, और मन कहता है काश वो दिन फिर से आ जाए। लेकिन वक्त है ना, वापस कभी आया है किसी के लिए तो नहीं आता है। हाँ, उसकी तस्वीर जरूर हमारे पास रह जाती है, इसलिए शायद तस्वीरों की कीमत फोटो की खूबसूरती से ज्यादा उसमें छिपी कहानी की होती है।

तो दोस्तों आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और इस पर आपको करना है एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा काम, अपने फोन की गैलरी खोलिए, लेकिन इस बार सिर्फ फोटोज देखने के लिए नहीं, यादें देखने के लिए जी हाँ, वही पुरानी यादें ताजा कीजिए, अपने फोन की फोटो गैलरी में जाकर देखिए, ढूंढिए उन पलों को जो पल आप दोबारा से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पल वापस आ जाए, बेशक वापस ना आए लेकिन उन पलों की यादें तो तस्वीर के रूप में आपके फोन में जरूर कैद होंगी। एक ऐसी तस्वीर ढूंढिए जिसे देखकर आपके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाए। मिल गई, आहा, इसी को तो ढूंढ रहे थे इतनी देर से, बस ये वाली जो बात है ना वो आपके होठों पर आ जाए उस तस्वीर को देखते ही। और अब खुद से पूछिए, इस तस्वीर में ऐसा आखिर है क्या जो इसे मेरे लिए इतना खास बनाता है? मे बी कोई इंसान, मे बी कोई प्लेस, कोई जगह, मे बी कोई स्पेशल डे, या शायद सिर्फ और सिर्फ एक एहसास। बस इसी आशा के साथ कि आज आप उन पलों को ढूंढेंगे, उन्हें एंजॉय करेंगे, उन्हें जिएंगे, और इस आशा के साथ कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, आपसे दोबारा से मिलने का वादा लिए और जल्द ही मिलने का वादा लिए आपसे विदा चाहती है आपकी ये आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। आप अपना ख्याल रखें और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, आसपास स्वच्छता रखें। टेक केयर, बाय बाय।

0: इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया। वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित हुए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तो सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
4: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। नवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थी जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थी। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
6: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
2: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल।

0: हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष

सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और

0: PNG connections. The National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satinder Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amsterdam, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और पांच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कुरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तोसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुंबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कुरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलियत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर एनटीए सवाल नामों को चेक करने का 4 सतही निजाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां सीआईएसएफ की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में एनटीए ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मनसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी जेएसएससी और एक एजेंसी टीडीपीएल समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहान शामिल हैं। जो इम्तिहान मनसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिप्टी कलेक्टर्स डेंटल डॉक्टर असिस्टेंट इंजीनियर्स सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तिहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तिहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तिहान

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम सुबुगाही। आज के प्रोग्राम में सुनिए भाई हरिकिरत सिंह और साथियों का गाया हुआ ये शब्द।

0: मुखाही प्रोग्राम के तहत अभी आप शब्द सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और आज सवेरे में वक्त हुआ है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का आज के इतिहास के दिन क्या कुछ हुआ है। तो आज तारीख है 19 अगस्त और आज ही के दिन हर वर्ष 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों तक भोजन, दवाइयां और आश्रय जैसी सहायता पहुंचाते हैं और वर्तमान में उनका काम पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवीय सहायता कर्मियों को अपने मिशन के दौरान लगातार हत्या, घायल होने, अपहरण, हिरासत और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विश्व मानवता दिवस पर आइए उन लोगों को याद करें जिन्होंने दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन लोगों को सलाम करें जो आज भी अग्रिम मोर्चे पर सेवा में जुटे हुए हैं और खुद को ये याद दिलाएं कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है। और आगे बढ़ते हैं। 1757 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला 1 रूपये का सिक्का ढाला था। अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन 1919 में की थी। 1977 की बात करें तो आज ही के दिन सोवियत संघ ने सेरी सागान में परमाणु परीक्षण किया था और वांडेन हुगेन बैंड ओलंपिक खेलों के सबसे तेज तैराक बने थे 2004 में आज ही के दिन, जबकि 2007 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए मिशन एंडेवर के यात्रियों ने स्पेस वॉक आज ही के दिन पूरा किया था और 2009 में आज ही के दिन नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी स्वदेश निर्मित नौसेना नौका महादेव से संपूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुए थे।
0: जी,
1: और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी की, आज उनकी पुण्यतिथि है। खयाम बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया मगर उनके गीत और धुनें अमर हैं। उनके गीत रोजाना रेडियो और टेलीविजन पर किसी न किसी रूप में सुनाए दिखाए जाते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल तक काम किया और 35 फिल्मों में संगीत दिया। खयाम ने शर्मा जी नाम से कुछ फिल्मों में भी संगीत दिया है। तो खयाम की फिल्मों के कुछ गीत हम लोग निकाल के लाए हैं, तो क्यों ना वो सुना जाए।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

और अपने शुभा को बता दें खयाम के मामा जी को गीत संगीत से बेहद लगाव था। उन्होंने ही मुंबई में खयाम को बाबा चिश्ती से मिलवाया, जो बीआर चोपड़ा की फिल्म ये है जिंदगी का संगीत तैयार कर रहे थे।

ने उन्हें अपना सहयोगी तो बना लिया, मगर कहा कि पैसा टका कुछ नहीं मिलेगा। संगीतकार खयाम ने फिल्म रोमियो एंड जूलियट में एक्टिंग भी की थी और एक बार फिल्म के सेट पर खयाम और चोपड़ा सही समय पर पहुंचे थे और बाकी लोग देरी से आते थे। महीने के आखिरी दिन सबको वेतन दिया गया, लेकिन केवल खयाम खाली हाथ रहे।

और अपने श्रोताओं को बताएं कि जब महीने का आखिरी दिन उनको खाली हाथ रहना पड़ा तो ये देखकर चोपड़ा ने बाबा से पूछा इन्हें पैसे क्यों नहीं दिए। तो जवाब मिला ट्रेनिंग पीरियड में ये मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो चोपड़ा की बात रास नहीं है और उन्होंने फौरन अकाउंटेंट से 125 रुपए

अपने हथेली पर इतने रुपए देखकर खयाम की आंखों में आंसू आ गए। चुपा साहब की इस मेहरबानी को उन्होंने हमेशा याद रखा और बाबा चिश्ती के खयाम को साहेब तो बनाया मगर सिर्फ खाना खुराक और खूनी का किराया।

0: मिला जब 1982 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का एक और पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला और 2007 में संगीत नाटक अकादमी से उन्हें पुरस्कार मिला जबकि 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरकीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कीलें नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मजकूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की 1 तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुंबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मजकूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरलों में नाफिज की जाएगी। भारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाले रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी NTA ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतल्लिक अपनी टीम की तश्कीलें नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर NTA सवालनामों को चेक करने का 4 सतही निजाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां CISF की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने के वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में NTA ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात 39 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि मनसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC, JSSC और एक एजेंसी TDPL समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहान शामिल हैं। जो इम्तिहानात मंसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तिहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी अहदों पर भर्ती के इम्तिहान भी मंसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तिहान मुलतवी करने और 17 इम्तिहान की CID तहकीकात का भी हुक्म दिया है। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नमानेगार ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और मुजरमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस राय के मुताबिक आग लगने का ये वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि मजकूरा होटल में आग बुझाने से मुतल्लिक कोई निजाम नहीं था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैन अल-क़वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तशवीश का हवाला देते हुए अगले नोटिस तक ईरान के साथ तमाम तरह की तजारत कमर्शियल सरगर्मियां और मालियाती लेन देन को मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफ़ा अल-हमीली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैन अल-क़वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैन अल-क़वामी मालियाती निजाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल यूएई ने कहा था कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिजाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिजाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे जो समंदर में जा गिरे। यूएई ने कहा है कि वो अमन और इस्तेहकाम के जरिए के तौर पर मुज़ाकरात बाहमी ताउन और इलाकाई हमाहंगी के तहत अहदबस्ता है। ईरान की तरफ से यूएई के इल्जामात के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तमाम ईरान ने इंतबाह दिया है कि आबनाए हुरमुज तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक कि अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुजाकरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुजाकरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक कि ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आबनाए हुरमुज की सूरत हाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयान सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हुरमुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता जिसमें नकाबंदी खत्म करना, ईरान के मुंजमद असासों को जारी करना और उसके तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी लाना शामिल है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, साहली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे मगरबी बंगाल के जैली हिमालय खत्ते और सिक्किम में औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास 2 मैचों से 3 पॉइंट हैं और इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम एक ड्रॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2 मैचों से सिर्फ 1 पॉइंट है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतल्लिक अपनी टीम की तश्कीलें नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में 39 भर्ती इम्तिहानात की फीस जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मंसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से मिजाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश है अखबारी जर्री का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
3: इंसान की गलत फहमी और बेअकली ये है कि वो खुद अपने मुतालिक तमाम गलतियों और कोताहियों से पाक और साफ होने का तसव्वुर कायम कर लेता है। वो ये समझता है कि दुनिया के तमाम इंसान गलत हो सकते हैं, तमाम इंसान ऐबदार हो सकते हैं, लेकिन वो खुद किसी ऐब और बुराई का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये इंसान की एक फितरी कमजोरी है। उसे सारी दुनिया के अयूब नजर आते हैं, लेकिन उसकी निगाह उसकी खुद की गलतियों और कोताहियों तक नहीं पहुंचती। वो इस कदर खुद परस्त वाकई हुआ है कि उसे खुद के ऐबदार होने और बिगड़ने का एहसास तक नहीं होता। वो हमा वक्त दूसरों के अयूब और बुराइयां तलाशने में मसरूफ रहता है। हालांकि इंसान अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अपनी खुद की बुराइयों, कमियों और कोताहियों पर नजर दौड़ाए तो उसे पता चलेगा कि उसमें कितनी कोताहियां और नकाइस हैं और वो किस दर्जे का इंसान है, माशरे और समाज में उसका क्या मकाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अखलाक और आदात, चाल चलन, गुफ्तगू और तौर तरीकों का दूसरों की जिंदगी पर मनफी असर पड़ता हो। मकसद खुद को कमतर समझना या खुद को किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार कर लेना नहीं है, बल्कि असल मकसद अपने नफ्स का मुहासबा करना और अपनी खुद की कमियों को तलाश करके उनको दूर करना है। यही वो अमल है जो इंसान को कामयाबी की राह पर गामजन करता है। इंसान अपनी जिंदगी में कुछ काम ना चाहते हुए भी फितरतन करता है, जिनको करने के लिए उसे मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ती और ना ही इन कामों को छोड़ा या बदला जा सकता है। और ये काम इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी भी होते हैं, मसलन सांस लेना, पलक झपकाना और छींकना वगैरह। कुछ काम इंसान फितरतन तो नहीं करता, लेकिन इन कामों को करते करते इंसान को उनकी आदत पड़ जाती है, गोया वो इंसान की फितरत में शामिल हो जाते हैं। और इन कामों को करने और इनकी आदत डालने के लिए इंसान को मेहनत और मशक्कत भी करनी पड़ती है। नीज इन इंसानी आदतों में से कुछ मुफीद और जरूरी भी होती हैं, मसलन वर्जिश करना, सुबह के वक्त सैर व तफरीह करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, अपनी आदत और अखलाक को बेहतर बनाना, हर किसी से खंदा पेशानी से मिलना, लहजे में नरमी पैदा करना वगैरह। कुछ आदतें इंसान के लिए मुजिर और गैर जरूरी भी होती हैं, मसलन बात बात पे गाली देना, नामुनासिब कलिमात का इस्तेमाल करना, सुस्त काहिल लाउबाली और गैर जिम्मेदार बनना वगैरह। आदतें अगर मुस्बत हैं तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आदतें अगर मनफी हैं तो उनको बदलने की हद तक इम्कान कोशिश करनी चाहिए। और इसका तरीका यह है कि इंसान दूसरों की जिन आदतों को ऐब और बुराई समझता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान खुद उन अयूब और बुराइयों का शिकार हो। वो खुद अपना मुहासबा करने के बजाय दूसरों की ऐब जोई में मसरूफ हो। इंसान खुद परस्ती और अना में मुबतला होकर खुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद के अयूब से वाकिफ नहीं हो पाता। वो ये भूल जाता है कि दूसरों की तरह वो भी एक इंसान है और उसमें भी बुराइयां हो सकती हैं। इंसान جب اپنے من کو ٹٹولے گا، اپنی خود کی برائیوں پر غور کرے گا، تب اسے احساس ہوگا کہ سب سے زیادہ عیب تو اسی کے اندر ہیں، جس کے نتیجے میں وہ انانیت، تکبر اور غرور کے خول سے باہر نکلے گا اور اس کے اندر تواضع، انکساری اور خوش اخلاقی کے جواہر پیدا ہوں گے۔ مشہور کوی کبیر داس جی نے اپنے دوہے کے ذریعے انسان کی توجہ اس نظریے کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبیر داس جی کا دوہا ہے، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئے، جو دل کھوجا آپ نو مجھ سے برا نہ کوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عیب دیکھنا ہی ہے تو انسان کو چاہیے وہ اپنے اندر دیکھے اور انہیں دور کرے، تبھی جا کر انسان کو احساس ہوگا کہ سب سے زیادہ عیب تو اسی کے اندر ہیں۔ اگر ہم کبیر داس جی کے اس نظریے کو اپنا لیں تو بلا شبہ ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے اور سماج سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج آپ نے کبیر کے اقبال سنے، پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد نوید۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ چتر سین کی آواز میں آج آپ سنیں گے ریاض خیر آبادی اور جگر مراد آبادی کا کلام، اور ایرا نگم سے مومن خام مومن اور داغ دہلوی کا کلام۔

0: क्या हो रहा है रवि
1: जी? बाबूजी चिट्ठियां देख रहा था।
0: बाकी सब कहाँ हैं?
1: दूसरे कमरे में।
0: अरे भाई सुनती हो?
2: जी आई। आ गया?
0: हाँ। पानी वानी भी पूछोगी कि नहीं?
2: अभी लाए।
0: कितनी चिट्ठियां आई हैं रवि?
1: गिनी तो नहीं बाबूजी, है कोई 150 के करीब।
0: कोई तुम्हारे मतलब की भी है कि नहीं?
1: कई लड़कियां तो इतनी पढ़ी लिखी हैं बाबूजी, ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने मुझे चिट्ठियां लिखी क्यों।
0: अरे बेटा अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं, तुम कौन सा कम पढ़े लिखे हो? माँ से सलाह की?
1: अभी तो खुद ही देख रहा था।
2: आए हाय, तुम लोगों के दिमाग में तो ताले पड़ रहे हैं। ये लो पानी। ऐसे भी वाला कहीं शादियां होती है, ना लड़की का पता ना उसके खानदान का।
0: हमारा जमाना नहीं है अब रवि की माँ, अब वक्त किसके पास है इतना कि लड़के लड़कियां ढूंढता फिरे। अब तो एक इश्तहार दो बस, चिट्ठियां ही चिट्ठियां, कोई एक लड़की पसंद कर लो।
2: अजी मैं संतों को कह आई हूँ, वो भी रिश्ते करवाती है पर 200 रुपए लेती है।
0: अरे शांति बात तो ये भी वही हुई ना।
2: और वही कैसे हुई? वो कुल खानदान की सारी खबर रखती है और दहेज भी तय करवा देती है।
0: बस शांति तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती।
1: दिक्कत तो यही है बाबूजी, लड़कियां एक से एक अच्छी मिलती हैं, लेकिन माँ को तो बस।
0: देखो बेटा हमारी तरफ से तो पूरी आजादी है तुम्हें, लड़की वाले कुछ दे दें तो ठीक और न दें तो उससे भी ठीक। बाकी तुम विजय से सलाह कर लो
1: जी,
0: और अपने दोस्त नफीस की भी राय ले लो
1: जी, वो भी आते ही होंगे।
2: ओहो तुम सबने मिलकर सब कुछ चौपट कर रखा है। अजी ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो अब तुम, फिर देखो बहू भी अच्छी आएगी और दहेज भी अच्छा लाएगी।
0: जब रवि नहीं चाहता तो तुम्हें कोयले की दलाली में मुंह जरूर काला करना है।
2: कल को जो तुम बिंदु की शादी करोगे तो कुछ नहीं दोगे।
1: अरे माँ तुम तैयार हो जाओ, लड़का तो तुम्हें ऐसा ढूंढ कर दे सकता हूँ जो लेन देन को हिकारत की निगाह से देखता हो।
0: और क्या, हम तो मजबूरी में देते।
2: मजबूरी में? आए हाय जिसे आप मजबूरी कहते हैं ना, मैं उसे अपनी खुशी कहती हूँ। हाँ
3: नमस्ते बाबूजी।
0: आओ बेटा विजय, जीते रहो, अच्छे वक्त पर आए तुम।
3: क्यों क्या हुआ पिताजी?
0: संभालो अपनी माँ को।
3: माँ तो ठीक ही लग रही है।
2: अरे इन्हें ठीक नहीं लगती मैं।
3: लेकिन हुआ क्या?
0: अरे वही दहेज।
3: छोड़िए सब झंझट पिताजी। तो काफी रिस्पॉन्सेस है रवि।
1: हाँ भैया अब आप भी कुछ तय कीजिए।
3: वो नफीस नहीं आया? वो नमाज पढ़कर आते ही होगा, या शायद ना भी आ सके, उसके कॉलेज में आज ही सालाना जलसा है। हाँ तो काफी अच्छे रिश्तों की ऑफर्स लगती है रवि। वो तुम्हारे ऑफिस में जो थी, क्या नाम था उसका, मीरा, उसका क्या हुआ रवि?
1: हाँ वो भैया मुझे गलत फहमी हो गई थी, उसकी शादी तो कहीं और तय हो चुकी थी।
3: ये देखो रवि ये कैसे है? मेरे ख्याल से इनको कांटेक्ट करना चाहिए।
0: भाई तुम लोग तय कर लो और हमें बता दो, मैं जरा आराम कर लू। चलो शांति मेरे कपड़े दे दो।
2: घर वो देखना जो भरा पूरा हो।
3: तुम जाओ माँ, ये हम पर छोड़ दो। ये ठीक है ना रवि? मैं ये खत लिख लेता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे।
1: ठीक है भैया आप बेहतर समझते हैं।

0: देखना यदि
1: जी बहन आप
0: मैं रहता हूँ।
1: ओ नमस्कार, आइए आइए तशरीफ लाइए।
2: बाबूजी आप मेहता साहब हैं।
3: हाँ नमस्ते मेहता साहब।
0: नमस्ते खन्ना जी,
3: आइए तशरीफ रखिए ना, बैठिए। ये है शांति मेरी पत्नी।
4: नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: और ये मेरा बड़ा लड़का भी जय है
5: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते। आप किस डिपार्टमेंट में हैं?
3: मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जी। विजय कॉलेज में पढ़ाता है और रवि बैंक में हिंदी ऑफिसर है
0: जी। मेरी बेटी भी बैंक में है।
4: आपकी बड़ी बेटी है ना?
0: जी नहीं, सबसे छोटी है, बस उसकी शादी कर दें फिर छुट्टी।
3: शांति जरा चाय वगैरह का इंतजाम करो।
0: जी नहीं, तकल्लुफ मत कीजिए।
4: अजी तकल्लुफ कैसा, बिंदु बना रही है चाय।
0: आपकी बेटी है
4: जी, इससे बड़ी नीरू है जिसकी शादी हो चुकी है। अरे बिंदु चाय ले आ बेटी।
6: अच्छा अम्मा अभी लाई।
0: और तो सब ठीक है खन्ना जी, एक बार जरा साफ कर लें, आपकी कोई डिमांड वगैरह तो नहीं है?
5: जी नहीं मेहता साहब, डिमांड क्या, हम तो दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ है।
4: अजी ये तो बच्चे हैं आजकल के, इन्हें क्या मालूम।
3: शांति चाय का क्या हुआ?
4: आती होगी। भाई साहब आपको जो देना है अपनी लड़की को ही तो देना है ना, हम भला क्या मांगेंगे, सब अपनी हैसियत से बढ़कर ही देते हैं
0: जी। हाँ
3: हाँ मेहता साहब, हमें तो सुशील लड़की चाहिए बस
0: जी। मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ, आप खुद ही देखेंगे।
4: देखिए भाई साहब, अभी पिछले महीने मेरी एक सहेली के भाई की शादी हुई थी। आये हाय क्या नहीं लाई वो लड़की, फ्रिज टीवी स्कूटर 20 सोने की चूड़ियाँ और वो क्या कहते हैं उसे VCR और न जाने क्या क्या लाई।
3: शांति हमारे पास क्या नहीं है। छोड़िए मेहता साहब, आप इनकी बातों को बुरा ना मानिएगा, ये जरा ज्यादा ही बातें करती हैं।
0: आई एम सॉरी खन्ना साहब, 7 बज गए हैं, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है।
3: मेहता साहब 2 मिनट लगेंगे, आप चाय पी कर जाइएगा।
0: बुरा मत मानिएगा खन्ना साहब, अब मेरा रुकना जरा मुश्किल है, चाहे फिर कभी सही फिर मुलाकात हो शायद।
4: बाबूजी चाय।
3: लो ये चाय के प्याले, एक टीवी में डाल दो और एक स्कूटर में, डिमांड नहीं है लेकिन फला फला सामान तो सब लड़की को देते ही हैं। ये डिमांड नहीं है तो क्या है।
4: अजी कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, मैंने कोई मांगा तोड़ ही है उनसे।
3: शांति तुम समझती क्यों नहीं, उम्मीद करना भी मांगना ही है। बेटा रवि
1: जी,
3: तुम या तो ये मामला अपनी माँ पर छोड़ दो और या फिर लोगों से कहीं बाहर ही मिला करो।
4: अजी सब जय तो रहे थे, मुलाकात हो शायद। हाँ
3: शायद, शायद का मतलब है नहीं, सब तुम्हारी तरह से जाहिल नहीं होते।
4: मैं जाहिल हूँ
3: बिल्कुल।
5: हम चलते हैं पिताजी। चलो रवि।
1: आओ भैया।
4: बच्चों के सामने ही मुझे फटकार देते हैं।
3: फटकारूं ना तो क्या करूं, आज तीसरी पार्टी गई है तुम्हारी वजह से एक अच्छी लड़की हाथ से इसलिए निकलती जा रही है कि तुम्हें दहेज चाहिए। तुम क्या करोगी इस सारे सामान का, क्या नहीं है हमारे घर में। आखिर मैं कहता हूँ, आखिर ये लालच क्यों।
4: मैं अपने लिए थोड़े ही मांग रही हूँ।
3: तो फिर किसके लिए।
4: इसलिए कि कुछ नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे।
3: उफ, लोग, उन्हीं लोगों की वजह से तुम रवि के अरमानों का गला घोट रही हो। शांति सोचो रवि तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा।
4: अजी हम भी तो सब कुछ देते हैं ना, नीरू को क्या क्या नहीं दिया हमने।
3: गलत किया, विजय की शादी में दहेज लिया वो भी गलत किया, अब ये गलती मैं नहीं होने दूंगा। और सुनो, विजय की शादी में दहेज आया था ना, तो वो भी तुम्हारी जिद से, और फिर भी रोज तुमने बहू को ताने मार मार कर ये घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया ना। अब ये सब नहीं होगा शांति, जो हो चुका है उसी से सबक लो।
4: मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि बहू खाली हाथ चली आए, रीति रिवाज निभाने ही पड़ते हैं।
3: ये रीति रिवाज फरसूदा हो गए हैं शांति, और इससे हम सब खोखले हो रहे हैं। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने खुद को न बदला तो एक बेटा तो खो ही चुकी हो, दूसरे से भी हाथ धो बैठोगी।
4: ठीक है, जो जिसके जी आए वो ही करे।
2: अब आप ही बताइए भैया, इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ?
5: कुछ ना कुछ तो करना ही होगा रवि। माँ की जिद गलत है और उनकी जिद की वजह से एक के बाद एक तीन लड़कियां हाथ से जाती रहीं।
2: और आज भी वही हुआ तो?
5: मैंने माँ को साफ तौर पर बता दिया रवि कि उन्होंने अपने अरमान मेरी शादी के वक्त पूरे कर लिए थे। अब जो भी करेंगे हम खुद ही करेंगे। देखना शायद वो आ गए।
2: जी
1: आइए। नमस्कार
2: सर।
1: नमस्कार विजय खन्ना यही रहते?
5: आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए।
1: मैं इंद्रदत्त हूँ। मेरा खत मिल गया होगा आपको?
5: जी।
1: आपके पिताजी
5: कहीं जरूरी काम से गए हैं, आते ही होंगे। ये रवि है, मेरा छोटा भाई।
1: नमस्कार।
3: रवि
5: लीजिए, बाबूजी आ गए।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार। आप
5: मिस्टर इंद्रदत्त?
3: ओह माफ कीजिएगा, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया था।
1: कोई बात नहीं। अरे आप बैठिए ना।
5: हाँ आप कहिए
1: जी। मैं जिस लड़की की बात करने आया हूँ वो एक गरीब खानदान की है, उसकी 3 महीने और हैं, सभी छोटी, यही नीना ही सबसे बड़ी है और कॉलेज में लाइब्रेरियन है।
5: आप?
1: मैं उसका भाई हूँ।
3: तो क्या आपको ही सब कुछ करना है?
1: जी बाबू जी, 5 साल हुए नीना के पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे, जब से ही उनकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है।
5: हम दो भाई हैं और दो बहनें हैं, बड़े की शादी हो चुकी है यहीं दिल्ली में।
1: अच्छा।
5: पिताजी फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ।
1: विजय साहब बात ऐसी है कि हमारे पास तो लड़की ही लड़की है, सुशील समझदार और बरसई रोजगार है, बाकी दो पढ़ रही है, माँ घर संभालती है।
5: आपकी बात मैं समझ रहा हूँ दत्त साहब, हमने तो पहले ही खत में लिख दिया था कि दहेज या जात पात से हमें कोई सरोकार नहीं है।
1: जी मैं यही कहना चाहता था कि हम लोग कुछ भी देने की हालत में नहीं है, बस शगुन के तौर पर 2 जोड़े लड़की के और 1 लड़के का।
3: अरे दत्त साहब आप क्या बात करते हैं, मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ।
1: इसलिए आप ठीक फरमाते हैं। दरअसल आजकल आप रोज पढ़ते सुनते हैं कि दहेज कम मिलने या न मिलने की वजह से कितनी बुरी बुरी खबरें आती हैं, और जब वो लड़की ये सब पढ़ती है तो दहल जाती है।
2: दत्त साहब आपका डर बेबुनियाद नहीं है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि दहेज की मांग वो लड़के करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में ऐश आराम का सामान खुद अपनी कमाई से मुहैया कर सकते हैं।
5: एकदम सही है ये बात। मुझे देखिए दत्त साहब, मैं खुद सब आराम के साजो सामान मुहैया कर सकता था, किए भी हैं, फिर भी घर परिवार के दबाव में आकर वक्त पर इस चक्कर में फंसी गया, और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है।
3: मेरा अपना नजरिया भी यही है।
1: ये तालीम आप ही की दी हुई तो है।
7: बाबूजी क्या है? नमस्ते जी।
1: नमस्ते बेटा।
3: रख दो बेटा, ये मेरी बेटी है बिंदु और ये है मिसेस खन्ना मेरी पत्नी।
1: नमस्कार।
7: नमस्कार।
3: अरे आप तो खड़े हो गए, बैठिए, इतनी नाम से चाय पीजिए।
1: दूसरी बात मैं बारात के बारे में करना चाहता था।
3: जी शौक से।
1: कि शादी निहाय सादगी से होगी, ऐसा नहीं कि बारात का खर्च उठा नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि हम इसके भी खिलाफ हैं।
5: यानी
1: शादी चाहे कोर्ट में कर लें चाहे मंदिर में, बस घर के लोग और कुछ बेहद नजदीकी दोस्त, एक छोटी सी पार्टी।
3: वो आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, लेकिन पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद तो कर ले।
1: ठीक है बाबू जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। रही बात नीना की, तो आप परसों तशरीफ ले आइए और लड़की देख लीजिए।
3: जैसे आपकी मर्जी।
1: तो अब मुझे इजाजत दें। नमस्ते।
5: नमस्ते।
1: नमस्ते।
7: ये भी कोई शादी का तरीका है? न जात मिले, न पाप, न दहेज, न बारात।
3: अरे भाई अभी लड़की को तो देख लो।
7: मैं कह देती हूँ यहाँ रवि की शादी नहीं हो सकती, वो कोई लूला लगना है कि उसे और कोई लड़की मिलेगी नहीं।
2: माँ अभी कुछ भी तय तो नहीं हुआ ना?
7: अरे तय हो या ना हो मैंने अपना फैसला बता दिया, कोई जरूरत नहीं है उसे देखने की।
2: ठीक है सोचेंगे।
3: तुम्हें सुधरोगी शांति, दूसरे बेटे को भी खो गए।

0: विजय साहब माता जी नहीं आई, क्या बात है
1: जी? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी।
0: भाभी जी को ही ले आते,
1: फिर कभी आ जाएंगी।
0: मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
1: नहीं नहीं डॉक्टर साहब,
0: आइए बैठे बैठे ना
1: जी। शुक्रिया, बैठो रवि
2: जी। लगता है आपको किताबों से गहरी दिलचस्पी है।
0: ये तो नीना की कलेक्शन है, उसे बेहद शौक है किताबों का।
1: कहीं बाहर है?
0: नहीं। नीना नीना
3: आई भैया,
0: आप बैठो
4: जी। भैया
0: आप रवि खन्ना है?
4: नमस्कार।
0: नमस्ते। और आप है इनके बड़े भाई विजय खन्ना?
4: नमस्ते।
0: और ये है इनकी छोटी बहन बिंदु?
4: नमस्कार।
5: नमस्ते।
1: नीना जी
4: जी,
1: आपकी किताबें देखकर खुशी हुई। आज के जमाने में किसी का किताबों से इतना लगाव देखकर तबीयत बेहद खुश होती है। वैसे आपको कैसी किताबें पसंद है?
4: जो इंटेलेक्चुअली साउंड हो।
1: गुड। आप अपनी लाइब्रेरी भी कलीज रखती होंगी?
4: कोशिश तो यही रहती है।
5: मुझे तो अपने कॉलेज में कोई भी किताब अपनी जगह पे नहीं मिलती।
4: बिंदु जी, हम लोग तो करीने से लगा देते हैं, बाकी पढ़ने वाले जाने।
1: नीना जी, एमए यहीं दिल्ली से किया है आपने?
4: जी।
1: दरसाहब, क्यों ना हम लोग एक एक पान खाइए?
0: हाँ जरूर आइए।
1: और बिंदु, तुम अंदर जाकर जरा नीना की दूसरी बहनों से भी तो मिल लो।
5: अच्छा भैया।
1: रवि
2: जी,
1: हम अभी आते हैं, तब तक तुम लोग बातें करो
0: जी।
1: चलिए दरसाहब
0: आइए। नीना जी, आपने क्या तय किया?
4: तय समझी नहीं।
0: मेरा मतलब है, दस साल में सब बातें आपको बता ही ली होंगी।
4: लगता है आपकी माता जी इस सबसे खुश नहीं है।
0: तुम अपनी कहो।
4: ये तो भाई साहब ही जाने।
0: और तुम?
4: ठीक है।
0: ये हुई ना बात। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कहीं और नहीं मिल सकते?
4: वो क्यों
0: भाई, ये भी कोई मुलाकात हुई क्या? 10-20 मिनट मिले, हेलो हेलो, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? भला एक दूसरे को समझने के लिए 10-20 मिनट काफी होते हैं क्या?
4: अरे ऐसे भी तो लोग हैं जो सारी जिंदगी साथ रहते हैं और फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते।
0: उनकी बात छोड़ो, अपनी बताओ।
4: मुझे मिलने में एतराज नहीं है, लेकिन सब कुछ तय हो जाने के बाद।
0: ठीक है, आने दो भाई साहब को, अभी तय किए रहते हैं।
4: आपके दिल में कोई हिच तो नहीं है ना?
0: हिच कैसी? नो कम ऑन, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने ढंग से करना चाहता हूँ। भैया
1: पान आपके यहाँ का बहुत हिंदा है।
0: विजय साहब दूर दूर तक जाते हैं पान इनकी दुकान के। नीना
5: जी
1: चाय लाओ। बिंदु
5: जी
1: चलो तुम भी नीना की मदद करो।
5: अच्छा भैया, भैया मुझे तो लगता है।

0: अब तो बेहद मुश्किल हो गया है।
1: क्या
0: ना दिन चैन से करता है ना रात।
1: तो फिर?
0: अब फिर लेगी नहीं।
1: रवि, मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी से माता जी को कोई दुख पहुंचे।
0: हम सब ने बहुत मनाया उन्हें, लेकिन वो मानती नहीं। वो तो शादी के एकदम खिलाफ है।
1: कुछ समझ में नहीं आता रवि कि क्या किया जाए। मैं ना तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही उन्हें नाराज करना चाहती हूँ।
0: तो फिर बना लो सामान और रचा लो ब्याह।
1: वो भी जैसे तैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, वो मेरे जमीर के खिलाफ होगा रवि।
0: मेरा जमीर भी तो वही कहता है जो तुम्हारा।
1: जैसे भी हो, माता जी को मना लो।
0: मीरा, मैंने, भैया ने, बाबू जी ने सबने उनको बहुत समझाया है, लेकिन लेकिन वो मानती नहीं।
1: ये अच्छा नहीं लगता रवि।
0: अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन चारा भी क्या है। माँ की ना समझी के आगे अपने उसको नहीं बदल सकता मैं।
1: जब तुमसे मिली थी तो लगा था जैसे सब बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, अब लगता है कि हर आदमी वक्त के साथ बदल नहीं सकता।
0: जो बदलता नहीं वो पिछड़ जाता है, धीरे धीरे अकेला रह जाता है।
1: रवि सुनो, तुम किसी भी तरह से माँ को राजी कर लो, उनके आशीर्वाद से ही सब हो, यही अच्छा लगता है।
0: आज मैं कोशिश करके देखता हूँ।
2: मैं तो अपनी राय दे चुका हूँ, लड़की अच्छी है तो शादी कर लो।
3: आप ही कैसी बातें करते हैं, क्या लोग से हमारे लड़के में जो ऐसी वैसी से शादी कर ले।
2: ऐसी वैसी क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जो दहेज ना ला सके वो ऐसी वैसी हो गई।
0: माँ, मैंने तो मीना से शादी करने का फैसला कर लिया।
3: तो फिर मुझसे क्या पूछते हो, जो जी में आए वो ही करो।
0: लेकिन माँ, मीना को तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए।
3: अगर उसे मेरा आशीर्वाद चाहिए तो उसे जाकर साफ साफ बता दे कि बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती।
0: हो समझा, आज ये भी जाना कि माँ के आशीर्वाद की भी कीमत लगती है।
1: माँ छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें।
3: तू चुप रे बिंदु, बातें पुरानी होंगी तुम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है।
1: कितनी दुख की बात है कि आज भी लड़की की कोई कीमत ही नहीं है। कीमत है तो दहेज की, दहेज के साथ लड़की अच्छी बहू है, वरना कुछ भी नहीं।
3: ज्यादा बकबक मत कर।
1: ये बकबक नहीं है माँ, सच्चाई है। जरा सोचो, तुम भी तो दो लड़कियों की माँ हो।
3: आए तो क्या हुआ, बड़ी को सब कुछ दिया है, तुम नहीं देंगे?
0: तो ठीक है माँ, फिर मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुम्हें मीना मंजूर नहीं तो फिर मैं भी चला, शादी तुम्हारे बिना भी हो सकती है।
3: हाँ हाँ, ये तो मैं पहले ही जानती थी। वो बड़ा है ना, वो ही तुझे भड़का कर गया है। जाओ, जहाँ जी करे वही चले जाओ, जो जी में है वो ही करो। मैं यही सोचूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं।
0: ठीक है माँ, तुम्हारे पास सिर्फ जिद है और मेरे पास

0: लेकिन मैं जानता हूं उसे, और जब रवि और मीना उसके सामने जाएंगे तो वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकेगी। बेटा रवि
1: जी,
0: तुम दोनों जाओ अपनी माँ के पास। हाँ
1: जी।
0: विजय
2: जी,
0: माँ नहीं आई अभी तक,
2: ट्रेन पूरे 6 घंटे लेट है बाबूजी।
0: एक दिन पहले बुला लेते उसे।
2: आ जाएगी बाबूजी, वहां भी बहुत जरूरी काम था।
0: अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम्हें रवि और मीना को अपनी माँ के पास ले जाओ।

0: ठीक है शादी, न दान न दहेज। मैं लोगों को क्या कहूंगी? मोहल्ले के लोग रिश्तेदार पूछेंगे बहू क्या लाई है, तो क्या जवाब दूंगी? हाँ ठीक है, जहां चाहे जाए, जब उन्हें ही मेरी बात की, मेरे अरमानों की कोई कदर नहीं, तो मैं ही क्यों, मैं ही क्यों सबके लिए परेशान रहूं?
1: पोस्टमैन।
0: चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है? अरे ये तो मीरू की चिट्ठी है। क्या लिखा है मेरी बेटी ने? हाँ बहुत दिन हुए तुम लोगों ने अपनी कोई खबर नहीं दी, क्या अपनी बेटी को भूल गए? खैर ये सब ठीक तो है ना माँ? आज ये खत बड़े बोझल दिल से लिख रही हूँ। तुम तो जानती ही हो माँ कि मेरी शादी के वक्त तुमने खुद दहेज की रकम और दूसरी चीजें तय की थी, क्या कुछ तुमने मुझे नहीं दिया? इसके बाद भी मेरी सास मुझसे खुश नहीं है, वक्त बेवक्त ताने देती रहती है कि तेरी माँ ने कौन सा दहेज में ये दे दिया है वो दे दिया है। शेखर है तो अच्छे, लेकिन वो भी कभी कभी माँ की बातों में आ जाते हैं। अभी कल ही की बात है कि उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। ये दुख दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है, इससे तो अच्छा यही है कि ना दहेज दो ना लो। लोग यही तो कहेंगे ना कि नहीं दिया या नहीं लिया, ये तो नहीं कहेंगे कि ये नहीं आया वो नहीं आया, पर आया तो घटिया सामान। माँ मैं तो सास जी के ताने से तंग आ गई हूँ, कभी सोचती हूँ घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। रवि और विजय भैया ठीक कहते थे कि ये रिवाज ही खराब है, इसे खत्म होना चाहिए। माँ तुम रवि की शादी में दहेज बिल्कुल मत लेना और ना बिंदु की शादी में देना। न जाने क्या क्या ले गई माँ, तुम्हें परेशान कर दिया ना। अपनी परेशानी कहूं तो और किससे कहूं? सही दिया, मैं तो जैसे तैसे भुगती रही हूं, लेकिन बिंदु के साथ ही गलती मत करना। विजय भैया तो घर आते ही रहते होंगे, रवि का क्या हाल है, कोई लड़की देखी या नहीं? और नफीस भाईजान भी आते होंगे, मेरा आदाब कह देना, राखी पर आने की कोशिश करेंगे।
2: कभी कभी अपनी बेटी को याद कर लिया करो।
0: बाबू जी को नमस्कार, खत लिखना, तुम्हारी बेटी नीरू। नीरू मेरी बच्ची, ये क्या कितने लाड़ से पाला था तुझे।
3: तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे जमीर की आवाज।
0: क्या चाहती हो?
3: चाहती हूँ कि तुम मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे ख्यालात पुराने हो चुके हैं, तुम आज की फरसुदा रिवाजों से चिपकी हुई हो, तुम बेबुनियाद उसूलों को तरजीह दे रही हो, तुम झूठे गुरूर की शिकार हो, तुम्हें इससे बचना है। इसी वजह से तुमने नीरू को मुसीबत में डाल दिया, इसी वजह से तुमने विजय को घर से निकाला, और आज आज इसी वजह से तुम रवि और मीरा के साथ बेइंसाफी कर रही हो।
0: ठीक है,
3: यही ठीक है शांति। और सुनो, वक्त तेजी से बदल रहा है, और जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते, वक्त उन्हें ऐसी पीरगी में फेंकता है जहां उनकी पहचान खत्म हो जाती है। बदलो शांति, खुद को बदलो, अपनी बच्ची की हालत देखो, पहचानो वक्त की नई रफ्तार को, पहचानो उन चेहरों को जो समाज की गलत रिवायतें बदल देना चाहते हैं, उनका साथ दो, उन्हें सहारा दो, उनका खैर मकदम करो।
0: मेरी बेटी नीरू, तुझे इतना सामान दिया फिर भी तुम परेशान हो, शायद तुम भी ठीक हो बेटा। रवि ठीक, विजय ठीक है, रवि कहाँ हो? रवि तुम कहाँ हो? कैसे रुकी है? कौन रवि और उसकी बहू? रवि
4: माँ, माँ, माँ, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ।
0: रवि बेटा, मीना आ बेटा मेरे गले लग जा। माँ
5: अरे शांति, ये क्या हो गया तुम्हें?
1: तुम तो इस शादी के एकदम खिलाफ थी।
0: हाँ विजय के बाबू, जब तुम सब लोग चले गए तो मुझे सोचने का मौका मिला, और फिर ये खत।
1: किसका है?
0: नीरू का। इस खत ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत है, आज के जमाने की हवा के खिलाफ है।
1: बताओ तो सही, क्या लिखा है?
0: लो पढ़ लो। आओ बहू, आओ बेटा, आराम से बैठो। यहाँ
4: तुम्हारे लिए कोई था नहीं माँ।
0: हाँ बेटा, भला माँ की भी कोई था होती। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं?
4: हम भी हाजिर हैं माँ, हम लोग पिछली टैक्सी में थे।
0: अरे अरे बहू भी आई है।
1: विजय बेटा जी, आखिरकार तुम्हारी माँ ने भी अपने ख्यालात बदल दिए हैं। पर बेटा हमें आज ही नीरू के पास जाना होगा।
0: हाँ, मैं भी चलूंगी।
4: मैं भी चलूंगा, लेकिन माँ पहले एक स्नैप हो जाए। हाँ माँ, जरा मुस्कुराइए तो सही। नीला को गले लगाइए माँ। हाँ।

अभी आप सुन रहे थे जनाब प्रताप सहगल का तहरीर करदा ड्रामा आखिरकार, पेशकश प्रेम वोरा की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा था आपकी परछाइयां फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश को सुनिए, फिल्म है सरस्वती चंद्र।

रफी की आवाज में ये नगमा था कौन अपना कौन पराया फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले को सुनिए, फिल्म है प्राण जाए पर वचन न जाए।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा हमने आपको सुनवाया उजाला फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। अब सुनिए जनाब जितेंद्र पाल सिंह की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी फर्ज़।

जी अपनी बेटी की शादी में मसरूफ है, सारे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, बारात भी आने वाली है, लेकिन अंजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो बार बार कभी खड़ी तो कभी मेन गेट की तरफ देखती है। अब तक तो शकील को आ जाना चाहिए था, आखिर आज उसे अपना फर्ज जो पूरा करना है। इतने सालों तक अंजलि अकेले ही शीना की परवरिश करती आई है, उसने शीना को मां और बाप दोनों का प्यार दिया। कुछ सोचते अंजलि अपनी माजी में खो गई। डॉक्टर अंजलि की शादी शकील से हुई थी, शकील का अपना कारोबार था, जबकि अंजलि एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। शादी के बाद शुरू के दिनों में शकील अंजलि से बेपनाह मोहब्बत करता, दोनों खूब मौज मस्ती करते।

0: शकील नाश्ता तैयार कर दिया, अब खा लेना प्लीज, मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है।
1: अरे अरे इतनी जल्दी, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा, थोड़ी देर रुक जाओ ना।
0: अरे मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ, अस्पताल पहुँचने में जरा सी भी देर हुई नहीं कि मरीजों की लंबी कतार लग जाएगी।
1: तुम्हारे साथ यही तो मुसीबत है, हमेशा वक्त की पाबंदी। अब हमें देखो, जब चाहे ऑफिस जाएं।
0: अच्छा जी।
1: नहीं भी गए तो घर बैठे टेलीफोन पर मुलाजिमों को हुक्म दे दिया।
0: अरे तुमने एक डॉक्टर से शादी की है, इतना खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा।
1: ठीक है ठीक है, तुम्हारा ये सितम भी सह लेंगे।
0: हाँ।
1: लेकिन हाँ, शाम को वक्त पर आ जाना।
0: क्यों?
1: एक दावत में चलेंगे।
0: अच्छा मैं पूरी कोशिश करूंगी।
1: अच्छा बाय।
0: ओके।
2: शाम को अंजलि ड्यूटी ऑफ होने पर घर के लिए निकल ही रही थी कि एक इमरजेंसी केस आ गया। उधर शकील अंजलि का इंतजार करने के बाद अकेला ही दावत पर चला गया। देर रात जब अंजलि घर वापस आई तो शकील मुंह फुलाए बैठा था। अब तो रोज का यही सिलसिला चल पड़ा। अंजलि की मसरूफियत बढ़ती गई, वो सीनियर डॉक्टर जो बन गई थी। रूटीन ड्यूटी के अलावा उसे इमरजेंसी केसों से भी वाबस्ता होना पड़ता। अब तो घर में उसे दो पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। इससे शकील की परेशानी बढ़ने लगी। उसे अपने कारोबार बेशुमार दौलत पर गुरूर होने लगा। वो अंजलि की मामूली सी नौकरी का मजाक उड़ाता। अंजलि बेचारी आंसू के घूंट पीकर रह जाती। उसकी इस खामोशी से शकील का हौसला बढ़ गया और उसकी अय्याशी और बढ़ गई। उसने घर में ही महफिल जमानी शुरू कर दी।

0: ये सब क्या है?
1: मैं अपना बिजनेस डील कर रहा हूँ।
0: ये कैसा बिजनेस है? घर को तुमने क्लब बना रखा है।
1: ये सब मेरी बिजनेस पार्टनर थी। तुम भी तो अस्पताल में डॉक्टरों के साथ घिरी रहती हो। मैंने तो कभी टोका नहीं।
0: तुम मुझ पर शक कर रहे हो?
1: शक तो तुम कर रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम दिन भर अस्पताल में मसरूफ रहती हो।
0: हाँ।
1: मरीजों के बीच रहकर तुम्हारी जिंदगी भी ना मरीज सी बन गई है।
0: और तुम्हारी जिंदगी
1: पूरे ऐश में गुजर रही है। मेरे जहन में कोई टेंशन नहीं है। ये क्या बात हुई कि सारा दिन काम में जुटे रहो, अपने लिए वक्त भी ना निकाल सको?
0: इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हमेशा अय्याशी में डूबे रहे। बस मैं अब ऐसे माहौल में नहीं रह पाऊंगी।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तुम चाहती हो मैं घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं? कब तुम आओ, कब तुम खाना बनाकर खिलाओ?
0: आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? नहीं, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा।
1: मेरे पास बेशुमार दौलत है, बहुत बड़ा कारोबार है। तुम चाहो तो घर बैठकर पूरा ऐशो आराम हासिल कर सकती हो।
0: तुम्हें मुबारक हो ये ऐशो आराम। दूसरों की तिमारदारी करके मुझे जो सुकून मिलता है वो इस ऐशो आराम में नहीं मिलेगा शकील।
1: तो फिर लगी रहो तिमारदारी करने में। मेरे पास जो दौलत है उससे मैं हर खुशी खरीद सकता हूँ।
0: तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत गुमान है, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ।
1: तुम फिर अपनी डॉक्टरी नसीहतें देने लगी?
0: अरे और कुछ नहीं, तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो।
1: मैं सिर्फ आज में जीता हूँ, आज में, समझी? कल क्या होगा मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: शकील अभी भी संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगे।
2: लेकिन

अखिल के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, उसकी अयाशी बढ़ती गई। अंजलि से उसकी रोज तकरार होती, फिर तो शकील हाथापाई भी करने लगा। आखिर अंजलि ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया और चुपचाप शकील का घर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अंजलि की गोद में एक प्यारी सी बच्ची आ गई, वो खुशी से झूम उठी।

इस दौरान शकील की कोई खबर नहीं आई। अंजलि ने सब कुछ भुलाकर अपनी नई दुनिया में कदम रख लिया। वो अपनी बेटी शीना की परवरिश करने लगी। वक्त बीतता गया, मां बेटी दोनों सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई। जहां अंजलि बहुत बड़ी माहिरीन डॉक्टर बन गई थी, वहीं शीना अपनी तालीम पूरी कर कॉलेज में प्रोफेसर बन गई थी। एक दिन अंजलि अस्पताल में स्पेशल वार्ड का मुआयना कर रही थी तो एक केबिन में से उदास सी आवाज सुनाई दी।

0: ये तो शकील की आवाज थी। उसने केबिन के अंदर झांक कर देखा तो एक पतला दुबला बड़ी हुई दाढ़ी मैले कुचले कपड़ों में शख्स दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो वाकई वो शकील ही था। अपने चैम्बर में आकर उसने उस केबिन के डॉक्टर को तलब किया। उस मरीज की सारी केस हिस्ट्री सुनकर अंजलि तो जैसे एक बार की कांप गई। शकील को इतनी मुजीर बीमारी और वो भी आखिरी मुकाम पर, उस डॉक्टर ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी है। अंजलि सोचने लगी आखिर ऐसे शख्स का यही अंजाम होना था। ऐसे लोगों को तो इससे भी बदतर मौत आनी चाहिए। दूसरी तरफ उसके जहन में डॉक्टर का फर्ज याद आ गया। मरीज जो भी हो जैसा भी हो, डॉक्टर का फर्ज उसकी जान बचाना है। आखिर अंजलि ने शकील का इलाज शुरू कर ही दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ और शकील मौत के मुंह से वापस आ गया।
1: अब तुम ठीक हो जाओगे शकील, तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है।
2: कौन? ओह, डॉक्टर अंजलि, तुम?
1: हाँ।
2: मुझे माफ कर दो। हाँ? मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। देखो मुझे मेरे किए की क्या सजा मिली।
1: शकील,

0: अपने आप को खत्म किया है।
1: सिर्फ जिस्म ही नहीं, मैं अपना सब कुछ गवा बैठा। दौलत, कारोबार, शान और शौकत, अपने बेगाने सब मुझसे दूर हो गए। अपनी बददिमागी की वजह से मैं सभी कुछ खोता गया। मैं बर्बाद हो गया अनिल।
0: तुम्हें अपनी बेशुमार दौलत का गुमान था ना?
1: सचमुच मैं अंधा हो गया था। तुमने घर छोड़ दिया तो मैं और दलदल में फंसता चला गया। मेरा कारोबार ठप हो गया। दौलत गई तो लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अकेला रह गया।
0: खुदा का शुक्र है तुम आखिरी वक्त पर मेरे ही अस्पताल में आ पहुंचे, वरना तुम तो खत्म हो चुके थे।
1: मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
0: मैंने डॉक्टर की हैसियत से अपना फर्ज पूरा किया। हाँ, अब तुम्हें भी अपना एक फर्ज अदा करना होगा। चंद रोज बाद मेरी बेटी की शादी है।
1: ओह, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई?
0: हाँ।
1: मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा, जरूर।
2: बैंड बाजों की तेज आवाज सुनकर अंजलि वापस अपनी हकीकी दुनिया में आ गई। बारात आ चुकी है। सामने देखा तो शकील खड़ा था। अंजलि ने दुल्हन बनी अपनी बेटी से शकील को मिलाया। बाप बेटे के पहले मिलन से तीनों की आंखों में से आंसू बहने लगे। और फिर शादी की सारी रस्मों को पूरा कर शकील ने अपनी बेटी को रुखसत किया।

नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन

0: अच्छा
1: अब आप कहाँ जा रहे हैं?
0: मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं वापस।
1: बाप का फर्ज तो अदा कर दिया, बीवी को क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं शकील, आप मैं आपको मनमानी नहीं करने दूंगी।
0: बस अंजलि बस, मुझे और ताने मत दो, ये जिंदगी अब तुम्हारी दी हुई है।
1: इसीलिए अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती।
0: सच में अंजलि, तुम बहुत अजीम हो, बहुत बड़े दिवाली हो।

अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी, उनवान था फर्ज। तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की थी और पेशकश थी परवीन सलाम फरीदी की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। कॉमर्स और सनअतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी अफराद से भारत में सरमायाकारी और साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेनदेन मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता उस वक्त तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में अबू ज़र फजाइया के अड्डे पर फजाई हमले किए हैं और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टेलवीन में

0: आज शाम FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कुरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि PNG कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर यह स्कीम बनाई गई है, ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन हैं। मस्कुरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। कॉमर्स और सन्नतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी अफराद से भारत में सरमायाकारी और साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने भारत जापान साझेदारी की बढ़ती हुई वसत और कलीदी अहमियत को उजागर किया। नई दिल्ली में जापान के एक वफद से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत और जापान के दरमियान करीबी और पायदार साझेदारी है, जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका उमंगों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि जापान के यामानाशी खित्ते के वफद की मौजूदगी से भारत की रियासतों और खित्तों तक दो तरफा साझेदारी की बढ़ती हुई रसाई की अक्कासी होती है। जनाब गोयल ने कहा कि माली साल 2025-26 में भारत और जापान के दरमियान दो तरफा तिजारत 27,50,00,000,00,000 तक पहुंच गई, जबकि जापान अब गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी का भारत का 5वां सबसे बड़ा वसीला है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन एक वजारती वफद के साथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं, जहां वो 4थी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारतीय वफद में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। भारत और सिंगापुर के दरमियान इस तरह की कॉन्फ्रेंस का सिलसिला 2022 में शुरू हुआ था, जो आला सतह का एक कलीदी इक्तिसादी निजाम है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने साल 2026-27 में भारतीय मईशत की मुतवक्के मजमूई घरेलू पैदावार की तरक्की का तखमीना 10 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इस एजेंसी ने रवां साल मई में भारत की 6.7% शरह तरक्की रहने की पेशगोई की थी। ताहम इस एजेंसी ने वार्निंग दी है कि अलनीनो, मौसमी हालात और जोग्राफियाई सियासी चैलेंजों का असर इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार पर पड़ सकता है। भारतीय साहिली मुहाफिज के दमन के एयर स्टेशन ने समंदर में एक कश्ती में फंसे हुए 9 माहीगीरों को बचाने की खातिर एक ऑपरेशन चलाया। ये माहीगीर एक ऐसी कश्ती में सवार थे जो डूबने वाली थी। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक स्टेशन ने इतला मिलते ही एक चेतक हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर रवाना किया। कामयाबी से अंजाम दी गई इस बचाव कार्रवाई में तमाम माहीगीरों को बहिफाजत बचा लिया गया। ब्रिक्स ममालिक ने माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की से मुतालिक इश्तराक को मजबूत बनाने के तई अपने अज़्म का इरादा किया है। कल नई दिल्ली में ब्रिक्स माहौलियाती वज़रा की 12वीं मीटिंग के इख्तिताम पर जारी किए गए मुश्तरका वज़ारती बयान में कहा गया कि ब्रिक्स ममालिक ने पायदार तरक्की के लिए साल 2030 के लाए हमल, आबोहवा में तब्दीली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस मुआहिदे के मुकम्मल और मौसर नफाज को आगे बढ़ाने के तई अपने अज़्म का इरादा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तशवीश का हवाला देते हुए अगले नोटिस तक ईरान के साथ तमाम तरह की तिजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और मालियाती लेन देन को मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैन अल-अक़वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैन अल-अक़वामी मालियाती निजाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल UAE ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिसाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुजाकिरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक के ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यह पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है कि जब आदनान हुरमुज की सूरत हाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयानात सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वह आदनान हुरमुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता। इसराइल ने मुल्क के शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में फलाई अड्डे पर फजाई हमले किए हैं। उसका कहना है कि उस अड्डे पर तुर्की के फौजियों की तैनाती को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। 8 हमलों में मुबैना तौर पर फजाई अड्डे को निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक मुल्क शाम इस अड्डे पर तुर्की के फौजियों की तैनाती की इजाजत देकर सिक्योरिटी के मामले में जो कि तू सूरत हाल बरकरार रखने के मुत्तफिका उसूल की खिलाफ वर्जी के करीब पहुंच गया है। उसने कहा कि इसराइल ने शाम को बारहा मुतनब्बे किया है कि इस तरह की तैनाती उसके मुल्क के लिए खतरा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में नामुआफिक मौसम के मद्देनजर एहतियाती इकदाम के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आरजी तौर पर रोक दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह फैसला किया है। जिन यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही मुकम्मल कर लिया है और उनके पास दुरुस्त आरएफआईडी कार्ड हैं उन्हें यात्रा के लिए जाने की इजाजत दी जा रही है लेकिन इसका इन्हिसार मौसम के हालात और हुक्काम की तरफ से जारी की गई हिदायत पर होगा। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास दो मैचों से 3 प्वाइंट हैं और उसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम एक ड्रॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास दो मैचों से सिर्फ 1 प्वाइंट है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरकीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। कॉमर्स और सनतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी अफराद से भारत में सरमायाकारी और साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता उस वक्त तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में फजाई अड्डे पर फजाई हमले किए हैं और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टलवीन में आज शाम एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेशा खिदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

कभी कभी फिल्म का नगमा भी आपने मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश दो दिल फिल्म से है, आवाजें मोहम्मद रफी और आरती मुखर्जी की हैं।

0: महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को आपने सुना आकाशदीप फिल्म में, अब सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफी को, फिल्म है आर पार।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े

परछाई देता कुछ नहीं सुझाई, जहाँ ये मस्ती नजर मिठाई देता कुछ नहीं।

मोहब्बत कर लो जी भर लो, मुझे किसने रोका है।

लता मंगेशकर के साथ ये थे तलत महमूद फिल्म थी छाया। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अगली पेशकश आंधी फिल्म से है।

आशु भोसले के साथ आपने महेंद्र कपूर को सुना, फिल्म का नाम था दिल और मोहब्बत। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

0: फिल्मी दुकानें आकाशवाणी की उर्दू सर्विस एयर कर रही है। ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है चार मीनार।
1: आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो कुछ आसार कलीमा ऐसे भी हैं जिनको रोजे अव्वल से ही तहजीबी इमारतों की फहरिस्त में अव्वलियत और अहमियत का दर्जा हासिल है। ऐसी ही एक मुनफरिद कौमी विरासत हिंदुस्तान के दक्कन में वाकई शहर हैदराबाद की शनाख्त के तौर पर जानी जाने वाली इमारत चार मीनार गुज़श्ता तकरीबन 400 साल से भी ज्यादा अरसे से अपनी तारीखी तहजीबी और सल्तनत कुतुबशाही के अहद की एक दीदाज़ेब आसार कलीमा के तौर पर पूरी दुनिया के सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। चारमीनार महज पत्थर गारे और दर दीवार पर मबनी एक इमारत ही नहीं बल्कि ये सुल्तान कुली कुतुब शाह के ख्वाबों की एक ऐसी ताबीर है जो उसने देखा था और सच कर दिखाया। तारीखी हवालों से इस बात की तस्दीक हुई है कि 16वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में कुतुबशाही हुकूमत के पांचवें सुल्तान अली कुतुब शाह के दारुसल्तनत गोलकुंडा में किसी मौलिक बीमारी के सबब पूरा शहर एक वबा का शिकार हो गया और चारों तरफ बीमारी और अमवात की वजह से अफरा तफरी मच गई। चारों नाचार सुल्तान ने एक नई जगह और नया शहर बसाने का फैसला लिया और इस तरह 1590 में कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक नया शहर बसाने और एक ऐसी बेमिसाल इमारत की तामीर का फैसला किया जो न सिर्फ अजायबात में शामिल हो बल्कि बारगाह रब्बुल इज्जत में शुक्राने के तौर पर भी हो, जिसके क्रम से उसकी हुकूमत में रियाया को बीमारी से निजात मिली। इस तरह चार मीनार की शक्ल में एक चौकोर और बुलंद मीनारों से आरास्ता तामीर आलम वजूद में आई जो न सिर्फ उस जमाने में बल्कि आज भी तारीखी तहजीबी और आसार कदीमा के

फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शंस हैं। मस्कुरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस, एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाले रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। कॉमर्स और सनअतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी अफराद से भारत में सरमायाकारी और साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने भारत जापान साझेदारी की बढ़ती हुई वसत और करीबी अहमियत को उजागर किया। नई दिल्ली में जापान के एक वक्त से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत और जापान के दरमियान करीबी और पायदार साझेदारी है जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका उमंगों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि जापान के यामानाशी खित्ते के वफद की मौजूदगी से भारत की रियासतों और खित्तों तक दो तरफा साझेदारी की बढ़ती हुई रसाई की अक्कासी होती है। जनाब गोयल ने कहा कि माली साल 2025-26 में भारत और जापान के दरमियान दो तरफा तिजारत 27,50,00,000,00,000 तक पहुंच गई है, जबकि जापान अब गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी का भारत का 5वां सबसे बड़ा वसीला है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन एक वजारती वफद के साथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई है, जहां वो 4थी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारतीय वफद में वजीर खारजा डॉ जयशंकर, कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के मरकजी वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। भारत और सिंगापुर के दरमियान इस तरह की कॉन्फ्रेंस का सिलसिला 2022 में शुरू हुआ था, जो आला सतह का एक करीबी इकतसादी निजाम है। ये तरीकेकार 6 शोबों में इश्तराक के नए इलाके तलाश करने और पेशरफ्त का जायजा लेने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इन्हें जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटल निजाम, हिफ्जान सेहत, हुनरमंदी का फरोग और पायदार निजाम शामिल है। वजारत खजाना ने कहा कि इलाकाई देही बैंकों ने माली साल 2025-26 के दौरान कर्जों की फराहमी में नुमाया इजाफे का मुजाहरा किया है। वजारत के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरजीही शोबे के कर्जे देने के फ्रेमवर्क के तहत इलाकाई देही बैंकों की कारकर्दगी साल के दौरान मजबूत रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तशवीश का हवाला देते हुए अगले नोटिस तक ईरान के साथ तमाम तरह की तजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और मालियाती लेन देन को मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैन अल-अक़वामी कानून और आलमी मियारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैन अल-अक़वामी मालियाती निजाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल यूएई ने कहा था कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिसाइल बहरी जहाज रानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे, जो समुद्र में जा गिरे। ईरान की तरफ से यूएई के इल्जाम के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तहम ईरान ने इंतबाह दिया है कि अब नए हुरमुज तक तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुजाकरात कारों की टीम से कहा है कि वे ईरान के साथ मुजाकरात को तब तक के लिए रोकते हैं जब तक ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई अख्तलाफ राय नहीं है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब अब नए हुरूज की सूरत हाल और ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाजा बयान सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वह अब नए हुरमुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमतनामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता, जिसमें नाकाबंदी खत्म करना, ईरान के मुंजमिद असासों को जारी करना और उसके तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी लाना शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इसराइल ने मुल्क शाम के शुमाल मगरबी सूबा इदलिब में वाकई अबू अल जहूर फजाई अड्डे पर फजाई हमले किए हैं। उसका कहना है कि उस अड्डे पर तुर्की के फौजियों की तैनाती को रोकने के लिए यह कार्रवाई की

0: गई। आरोपों में मुबैन तौर पर फिजाई अड्डे को निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक मुल्क शाम इस अड्डे पर तुर्की के फौजियों की तैनाती की इजाजत देकर सिक्योरिटी के मामले में जो कि तो सूरत हाल बरकरार रखने के मुत्तफ़िका उसूल की खिलाफ वर्जी के करीब पहुंच गया है। उसने कहा कि इसराइल ने शाम को बारहा मुतनब्बे किया है कि इस तरह की तैनाती उसके मुल्क के लिए खतरा है। ब्रिक्स ममालिक ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की से मुतालिक इश्तराक को मजबूत बनाने के तई अपने अज़्म का इहादा किया है। कल नई दिल्ली में ब्रिक्स माहौलियाती वज़रा की 12वीं मीटिंग के इख्तिताम पर जारी किए गए मुश्तरका वजारती बयान में कहा गया कि ब्रिक्स ममालिक ने पायदार तरक्की के लिए 2030 के लायमल आबोहवा में तब्दीली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस माहदे के मुकम्मल और मुअस्सर नफाज को आगे बढ़ाने के तई अपने अज़्म का इरादा किया। भारतीय साहिली मुहाफिज के दमन के एयर स्टेशन ने समुद्र में एक कश्ती में फंसे हुए 9 माहीगीरों को बचाने की खातिर एक ऑपरेशन चलाया। ये माहीगीर एक ऐसी कश्ती में सवार थे जो डूबने वाली थी। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक स्टेशन ने इतला मिलते ही एक चेतक हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर रवाना किया। कामयाबी से अंजाम दी गई इस बचाव कार्रवाई में तमाम माहीगीरों को बाहिफाजत बचा लिया गया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने साल 2026-27 में भारतीय मईशत की मुतवक्को मजमूई घरेलू पैदावार की तरक्की का तखमीना 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इस एजेंसी ने रवां साल मई में भारत की 6.7% शरह तरक्की रहने की पेशगोई की थी। जम्मू कश्मीर में नामुवाफिक मौसम के मद्देनजर एहतियाती इकदाम के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आरजी तौर पर रोक दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह फैसला किया है। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास 2 मैचों से 3 पॉइंट हैं और इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम एक ड्रॉ की जरूरत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी अफराज से भारत में सरमाएकारी और साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता उस वक्त तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में अबू अल जहूर फिजाइया के अड्डे पर फिजाई हमले किए हैं और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टेलविन में आज शाम एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरकीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। कॉमर्स और सन्नतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी अफराद से भारत में सरमायाकारी और साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता उस वक्त तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में आज शाम एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: श्रोताओ, आज जो हमारी फिल्म है वो है आखिर क्यों, और इस फिल्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जे ओम प्रकाश ने किया था। और सबसे रोचक की बात यह है कि ये अभिनेत्री रीना रॉय के ससुर थे और बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के नाना थे। श्रद्धा, सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो निशा जो कि स्मिता पाटिल है, एक अनाथ लड़की है जिसके रिश्तेदारों ने उन्हें गोद लिया है और वह अपनी चचेरी बहन इंदु यानी टीना मुनिम के साथ पली बड़ी है। इंदु को अमीर और आकर्षक कबीर राकेश रोशन से प्यार हो जाता है, हालांकि कबीर को पारंपरिक स्वभाव वाली निशा पसंद आती है और वह उससे शादी कर लेता है। इंदु निराश हो जाती है। हसमुख निशा कबीर के अन्य महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों और इश्कबाजी के बारे में अनजान रहती है और जिनमें वह व्यापारिक यात्राओं के बहाने घूमता रहता था।

श्रोताओ, निशा और कबीर के विवाह के बाद जब निशा गर्भवास अवस्था में आती है तो इंदु की माँ इंदु से निशा और कबीर के साथ रहने और निशा की देखभाल करने के लिए कहती है। जैसे जैसे निशा अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाती है वैसे इंदु और कबीर करीब आ जाते हैं। निशा एक बच्ची को जन्म देती है। अपने पति और चचेरे भाई के बीच के संबंध का पता चलते ही वह टूट जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है। कबीर अपना संबंध खत्म करने से इनकार कर देता है और उसे इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए कहता है। निशा घर छोड़कर चली जाती है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी नौकरानी को सौंप देती है। पुरुष प्रधान दुनिया में निशा को जीवित रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उसकी दोस्ती आलोक जो कि राजेश खन्ना है उनसे हो जाती है। निशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखती है और एक सफल लेखिका बन जाती है। कबीर और इंदु की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है।

निशा और कबीर की बेटी जब शादी की उम्र में आ जाती है तो चिंतित कबीर को समझ नहीं आता कि वह इस रिश्ते का खर्च कैसे उठाएगा, लेकिन निशा कबीर की मदद करती है और उसे अपने प्रकाशन अधिकार बेचकर जीवन भर के लिए रॉयल्टी देने का वादा करती है। कबीर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और गहरा पश्चाताप करता है। इस पर निशा कहती है कि वह आगे बढ़ चुकी है और नहीं चाहती कि उसकी बेटी को उसकी पहचान और उसकी माँ के दर्दनाक अंजाम का पता चले। आलोक निशा से मिलता है और उसे बताता है कि अब उनके रिश्ते को औपचारिक रूप देने का समय आ गया है। निशा पारंपरिक मूल्यों को मानते हुए इसका विरोध करती है। आलोक उससे पूछता है आखिर क्यों, जब वह वैवाहिक समस्याओं से जूझ रही थी तब समाज ने उसे दोषी ठहराया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तो अब समाज की चिंता क्यों।

श्रोता, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और जो पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, और उनके साथ है पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। जो अगला संदेश है वो है नितेश दिवांगन का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग टेलर, पूना राम दिवांगन, कृष्णा दिवांगन। अगला संदेश है वो स्वर्ण सिंह का है, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और ये हम लिखकर भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अगला संदेश आर कुमार का, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार। अगला जो संदेश है वो है संदीप मक्कर का, इनके साथ है ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर पंजाब से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और इनके अन्य परिवार के सदस्य। जो अगला संदेश है वो है संतोष काले, इनके साथ है तेजस लोकेश, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शिगांव बुलडाड़ा महाराष्ट्र से। जो अगला संदेश आया है वो आया है राजू माठे का।

और इनके साथ है गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे, संजय माठे, और ये हमको लिखकर भेज रहे हैं असल गांव बाजार तहसील जलगांव जामोद महाराष्ट्र से। और जो साथी जो अगला संदेश है वो है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं दतरिंगी से। और जो अगला संदेश है वो है पीएस नाहकर, संतोष और मोहन निवारे, राजू माठे, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से। श्रोताओं अगला जो संदेश है वो है हीरामणि वर्मा का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा से। रामशरण विश्वकर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। अगला जो संदेश है वो है सुर संगम रेडियो श्रोता की तरफ से, विरम गांव गुजरात, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार ने हमें लिखकर भेजा। दिग्दर्शन गौर हमें संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है कविता गौर मेरठ कैंट से। जो अगला संदेश है सुदर्शन मुखी का है और इनके साथ है नीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं। और ये जो हमारे पास जो और जो बाकी लोगों का संदेश है श्रोताओं, हम उनको अपने अगले कार्यक्रम में इंक्लूड करेंगे। और फिलहाल आज के लिए श्रोताओं बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पे इस कार्यक्रम को लेकर एक ही फिल्म से, लेकिन फिल्म होगी दूसरी। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, दिन के 1:40 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर दरमियान व्यापक रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत करने ते चर्चा की। पंजाब पुलिस ने नवे भर्ती रक्षा मुलाजमान की तस्दीक प्रक्रिया तेज करने एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 165 दौड़ा जीत लिया। भारत के ध्रुव कपिला त्रिशा क्रास्टो की जोड़ी नवी दिल्ली BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास नूं हुण विश्व पद्धर ते मानता मिल रही है। उन्हें कहा कि देश 6-8% की विकास दर नाल अगे वध रहा है। श्री वैष्णव अज नवी दिल्ली विच उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हें कहा कि निवेश देश के विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है अते भारत सालाना लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर निवेश कर रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था ने एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: उन्होंने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।

0: स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4वीं भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन

0: की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रूपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रूपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: ओडिशा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न हैं। वासुदेवपुर, तिहड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रपड़ा जिले के कुलसाही गांव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शक समझ जाते हैं कि कहानी अब कुछ खास होने वाली है। तो आज जिन कलाकार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही कलाकार हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता हो, आवाज में ठहराव हो या फिर सिर्फ एक नजर से सामने वाले को डरा देने वाला अंदाज, ऐसे कलाकारों में एक नाम बेहद खास है। वो है उत्पल दत्त।

श्रोताओं, आज की पीढ़ी उत्पल दत्त को खासतौर पर गोलमाल की भवानी शंकर के रूप में याद करती है। एक ऐसा किरदार जो अनुशासन, परंपरा और अपने बनाए नियमों को लेकर इतना सख्त है कि उसके सामने आधुनिक जमाने की छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन उत्पल दत्त सिर्फ गोलमाल के भवानी शंकर नहीं थे, वो अभिनेता थे, रंगमंच के बड़े कलाकार थे, निर्देशक थे, लेखक थे और सामाजिक राजनीतिक विचारों को अपने थिएटर के माध्यम से सामने रखने वाले बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका सफर इतना लंबा और विविधता की तरह था, अगर उत्पल दत्त को सिर्फ एक कॉमेडी अभिनेता कह दिया जाए तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। उत्पल दत्त का जन्म 1929 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बरिसाल क्षेत्र में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। बचपन से ही उनका झुकाव साहित्य की तरफ था, अभिनय और थिएटर की तरफ उनका रुझान जो है लगातार वो बढ़ता था। उनके समय में रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हुआ करता था, थिएटर सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हुआ करता था और वो एक बहुत ही शक्तिशाली रोल प्ले करता था। यहीं से उनके अभिनय शैली को एक मजबूत आधार भी मिला। उनकी आवाज, संवाद बोलने का तरीका और मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता धीरे धीरे उन्हें एक अलग पहचान देने लगी। उत्पल दत्त का सबसे बड़ा योगदान भारतीय रंगमंच में माना जाता है। उन्होंने थिएटर को केवल मनोरंजक तक सीमित नहीं रखा था, उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की झलक दिखाई देती थी। वो मानते थे कि कलाकार का समाज के प्रति भी एक दायित्व होता है और इसी सोच के कारण उनका थिएटर कई बार सत्ता व्यवस्था पर भी सवाल उठाने वाला हुआ होता था। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, उनका निर्देशन भी किया, उनमें अभिनय भी किया, यानी कि मंच के पीछे लेखक निर्देशक भी वही और मंच पर सामने दिखाई देने वाले अभिनेता भी वही। यही बहुमुखी प्रतिभा आगे चलकर उनके फिल्मी करियर का सबसे बड़ा साधन बना, ताकत बना।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। और आज बात हो रही है एक बहुत ही मजे हुए कलाकार रंगकर्मी की, उत्पल दत्त नाम है जिनका। तो अब बात करते हैं उनकी फिल्मों में प्रवेश। अभी तक हमने सुना कि कैसे वो रंगमंच की दुनिया में छाए हुए थे, लेखन करते थे, अभिनय भी करते थे, निर्देशन भी करते थे। अब उत्पल दत्त ने

में काम करना शुरू किया तो उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं थी, उन्होंने बंगाली सिनेमा में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक में उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे वो बंगाली सिनेमा के महत्वपूर्ण कलाकारों में शामिल हो गए। लेकिन उनके करियर का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आया 1960 और 70 के दशक में। उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे महान फिल्मकारों की फिल्मों में भी काम किया। उनका अभिनय, उनका अंदाज इतना जबरदस्त था कि वो एक तरफ गंभीर दिखते थे, एक तरफ बौद्धिक भूमिकाएं करते थे तो दूसरी तरफ कॉमेडी करते थे, व्यंग करते थे, और ये सभी चीजें बहुत ही प्रभावशाली लगती थी। भुवन शोम ने उनकी पहचान को बदल दिया। 1969 में ये मूवी आई थी और इस तरह से इस फिल्म में जो उनका अभिनय था उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला था। और खास बात यह थी कि जिस अभिनेता को आगे चलकर लोग हिंदी फिल्मों में हास्य और गंभीर भूमिकाओं के लिए याद करने वाले थे, उनके भीतर का गंभीर अभिनेता इस फिल्म में पूरी ताकत के साथ दिखाई दिया। 1970 के दशक में जो हिंदी भाषी दर्शक थे, जो हिंदी फिल्मों को देखा करते थे, उनके यहां पर फेमस हो गए उत्पल दत्त। उनकी शुरुआती हिंदी फिल्मों में सात हिंदुस्तानी, गुड्डी, बॉम्बे टॉकी, मेरे जीवन साथी, सबसे बड़ा सुख और कई बहुत सारी ऐसी फिल्म थी, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उन्हें एक ही तरह की भूमिका में बांधकर नहीं रखा था। कभी वो पिता बनते तो कभी अधिकारी, कभी सख्त व्यक्ति, कभी खलनायक और कभी ऐसे किरदार में दिखाई देते जिसमें उनकी कॉमेडी का अंदाज सामने आया और उनके चेहरे के हाव भाव, आवाज का इस्तेमाल निर्देशक अलग अलग तरीके से करते थे। और गुड्डी और हिंदी दर्शकों में पहचान उनको इस फिल्म से मिली जो कि 1971 में आई थी, गुड्डी फिल्म, जिसमें उन्होंने निभाया था प्रोफेसर गुप्ता का किरदार।

अगर हिंदी फिल्मों की बात करें खासतौर पर, तो उत्पल दत्त की को याद किया जाता है। कई किरदार और फिल्में ऐसी हैं जैसे गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता, अमानुष में गंभीर भूमिका में, गोलमाल में भवानी शंकर का अंदाज, नरम गरम में उनका हास्य अंदाज, शौकीन, अंगूर, रंग बिरंगी, पसंद अपनी अपनी, किसी से न कहना, लाखों की बात, जॉन जॉनी जनार्दन, साहेब, राम बलराम, द ग्रेट गैम्बलर, कई अन्य फिल्मों में उनके जो किरदार थे वो बहुत ही यादगार रहे। उनकी हिंदी फिल्मोग्राफी 1970 और 1980 के दशकों में विशेष रूप से काफी सक्रिय रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में खुद को केवल एक कॉमेडी तक सीमित नहीं रखा, वो एक ऐसे चरित्र अभिनेता रहे जो कहानी की जरूरत के अनुसार अपना पूरा व्यक्तित्व बदल लिया करते थे। उत्पल को कई अभिनय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। भुवन शोम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा गोलमाल जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर के हास्य अभिनेता वर्ग में भी सम्मान मिला। लेकिन उनके लिए पुरस्कार शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उनकी असली उपलब्धि थी कि उन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई।

तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी है कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपने संदेश भेजे हैं ईमेल के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा जुड़ रहे हैं अपने सभी परिवारीजन के साथ में। और दिग्दर्शन कविता गौड़ जुड़ रहे हैं मेरठ कैंट से, लिखते हैं कि एक ही कलाकार कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू लेने वाले गाने बहुत ही सुकून दे रहे हैं, आपको उत्कृष्ट तथा उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो भाई धन्यवाद आपको भी। वडिंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं कार्यक्रम में और सिंहभूम चाईबासा झारखंड से जुड़े हैं हमारे श्रोता शिवा गोप, प्रेम गोप, कविता, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपा जी। और साथ ही ये संदेश आया तुलसी मस्कीन जी का और ये लिखते हैं, ये बिहारी कॉलोनी चाहतरा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही कलाकार में आज उत्पल दत्त के बारे में बहुत उम्दा जानकारी मिल रही है, नाइस गीत से आगाज आने वाला पल। जी बिल्कुल। और अगला संदेश अमर रमेश कुमार खत्री का है, चनेश्वर गोट कराची से, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं, ठकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अभिराज जुड़ रहे हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जुड़ रहे हैं, लिखते हैं कि आज एक ही कलाकार के अंतर्गत बहुत बढ़िया शानदार बेहतरीन बातें रोचक किस्से सुनाई, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही, हमें भी बेहतरीन जानकारी आपने दी जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती हैं। तो हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह से हमारा भी हौसला अफजाई करते हैं। और अगला संदेश है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मस्कीन दादा का और ये लिखते हैं कि उत्पल दत्त के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं काफी अच्छी लग रही हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटपारा भाटापारा से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज उत्पल दत्त जी पर केंद्रित कार्यक्रम में उत्पल दत्त साहब जी की फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल जुड़ रहे हैं, इसके अलावा पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई। फिल्म अमानुष का सॉन्ग सुना बहुत ही अच्छा लगा, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। तो भाई ये जो कार्यक्रम में हमारे साथ सभी श्रोता जुड़ रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कार्यक्रम में बात हो रही थी उत्पल दत्त के बारे में और उत्पल दत्त

एक ऐसा अभिनय एक ऐसे एक कलाकार थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, लेखक भी थे और सबसे बढ़कर एक बहुत ही शानदार रंगकर्मी थे। और आज के जमाने के लोग उन्हें चाहे याद करें या ना करें, लेकिन गोलमाल फिल्म के भवानी शंकर के रूप में जरूर याद करते होंगे। तो चलिए चलते चलते एक और उन्हीं की फिल्म का गीत सुन लेते हैं।

स्वामी ने आपको बता दूं आपसे कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। हमें 3:30 हम पेश करेंगे मोहतरमा उषा सेठी का तहरीर करदा ड्रामा आखिरी कड़ी। फिल्मी नगमों का लुत्फ

सकते हैं शाम 4 बजे से। रवि नगमो का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

और सामने आपको शगुन फिल्म तो जरूर याद होगी, जिसमें खयाम साहब की अहलिया यानी उनकी बीवी ने एक खूबसूरत नगमा गाया था। और वो नगमा एक तरह से कहा जाए तो यूं तो शगुन फिल्म के सारे ही नगमे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उस नगमे ने शगुन फिल्म को बहुत शोहरत अता की।

जब खयाम का जिक्र होगा, उनकी मौसीकी का जिक्र होगा, तब तक रज़िया सुल्तान फिल्म का नाम जरूर आएगा, जिसमें उन्होंने बहुत मुनफरिद अंदाज में मौसीकी दी थी और जिसकी वजह से उस फिल्म के नगमे बहुत मकबूल हुए थे।

इस फिल्म के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पिछले खिदमतें मोहतरमा उषा सेठी का तहरीर का ड्रामा आखिरी

0: जी सुनते हो?
1: हाँ कहो, क्या बात है?
0: आज विवेक कह रहा था कि उसने अपने लिए दूसरा घर देख लिया है।
1: ठीक है।
0: हाँ ठीक है, बेटा घर छोड़कर जा रहा है और तुम कहते हो ठीक है।
1: हरि भगवान, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है? जमाना बदल रहा है, वो जो कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा होगा।
0: मगर हम उसके बड़े हैं, कोई भी फैसला करने से पहले क्या उसे हमसे नहीं पूछना चाहिए था?
1: अरे शीला, तब तक तुम अपने फैसले दूसरों पर लादती रहोगी। विवेक खुद दो बच्चों का बाप बन चुका है, कब तक उंगली पकड़कर उसे चलाती रहोगी?
0: मैं कुछ नहीं जानती। हाँ मैं तो फकत इतना जानती हूँ कि अगर विवेक ये घर छोड़कर कहीं और चला गया तो मैं जी न सकूंगी। क्या एक बेटे का फर्ज नहीं है अपने वालदेन के तहत?
1: तुम आज फर्ज की बातें कर रही हो? उस वक्त तुम्हारा फर्ज कहाँ था जब तुमने मेरी माँ को ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था?
0: क्यों, मैंने तो माँ जी से कभी नहीं कहा था कि घर छोड़कर चली जाए। वो तो खुद उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ रोज को हरिद्वार हो आए।
1: मुझे सब कुछ याद है, भूल कैसे सकता हूँ वो सब जो माँ के साथ बीत।

0: माँ
1: कहाँ चले गए थे आनंद बेटे?
0: वो माँ वो मनोहर भैया के लिए टिकट बुक कराने गया था।
1: कराया?
0: हाँ।
1: कब की वापसी है उसकी?
0: कल सुबह।
1: इतनी जल्दी?
0: माँ वो भैया कह रहे थे कि संजू की चिट्ठी आई है, लिखा है कि बिजनेस का काम देखने से उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, सो जल्दी पहुंचे।
1: हाँ, अब यह करने को काम ही कौन सा बाकी रह गया है। तेरे बाबूजी की तेजी भी कल हो गई, बच्चे वहां अकेले होंगे, सो उसे वापस चले ही जाना चाहिए।
2: अरे माँ, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढाया। आऊं? तुम कब आए?
0: स्टेशन से सीधे ही आ रहा हूँ मनोहर भैया।
2: सीटों का क्या हुआ?
0: बुकिंग हो गई है, कल सुबह 6:50 की ट्रेन है।
1: तू अकेला ही जा रहा है ना? बहू तो अभी कुछ दिन तक रुकेगी ना बेटे?
2: नहीं माँ, वो भी मेरे साथ ही जा रही है। जूही को अभी ठीक तरह से खाना वगैरह बनाना नहीं आता। नौकरानी पिछले महीने छुट्टी लेकर गांव गई थी, आज तक लौट कर नहीं आई।
1: हाँ।
2: सो मधु के बिना वहाँ खाने वगैरह की बहुत तकलीफ हो जाएगी माँ।
1: ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। संजू और जूही को देखने का बड़ा मन होता है रे, 5 साल हो गए हैं उन्हें देखे हुए।
2: तो क्या है माँ, जूही के इम्तिहान खत्म होते ही संजू और जूही दोनों को कुछ दिनों के लिए भेज दूंगा, उनके लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा।
1: हाँ हाँ, ठीक है बेटा।
2: माँ, वो आनंद कह रहा था कि बाबूजी के बैंक में जो रुपये हैं उन्हें निकलवाने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, सो मैंने एफिडेविट तैयार करके आनंद को दे दिया है।
1: और ये मकान भी तो तुम्हारे बाबूजी के नाम पर ही है।
2: हाँ माँ, इसके बारे में मैंने बड़े भैया और आनंद से बात कर ली है, जैसा सब ठीक समझेंगे वैसा कर लिया जाएगा।
1: अच्छा होता बेटा जो ये सब तू अपने सामने समेट कर जाता।
0: माँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। मकान है, तुम हो, इसके बारे में अभी से सोचने की क्या जरूरत है? और फिर मनोहर भैया को जब टाइम मिलेगा तो 4 रोज के लिए आ जाया करेंगे।
2: हाँ माँ, आनंद ठीक ही तो कह रहा है।
3: अरे मनोहर, तुम जहाँ हो तुम्हारी बहू तुम्हें बाहर तलाश कर रही है। भाई हूँ।
2: क्या बात है बड़े भैया?
3: भाई तुम्हारे ससुराल वालों में से कुछ लोग अफसोस करने के लिए आए हैं।
2: ओह अच्छा माँ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ।
0: अच्छा।
1: क्यों रे महेश, मकान और तेरे बाबूजी के बैंक के रुपयों के बारे में कुछ बात हुई अपने भाइयों से?
3: अरे बात क्या करनी है माँ, आनंद कागजात तैयार कर लेगा, मनोहर ने तो शायद पेपर साइन करके दे भी दिए हैं, अब मेरा क्या है, मैं तो यही हूँ।
1: ठीक है बेटा, तुम जानो और तुम्हारा काम, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की फिक्र है।
3: ये सब हम पर छोड़ दो माँ, चलो चलकर कुछ खा पी लो, कहीं रोज से तुम्हारे खाने पीने का कुछ ठीक नहीं है।
1: अरे क्या ठीक नहीं है रे, भली चंगी तो हूँ, मरने वाले के साथ कोई मर थोड़े ही जाता है बेटे। मैं तो भगवान से हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि जैसी मौत तेरे बाबूजी को दी वैसी मुझे भी दी।
3: माँ कैसी बातें करती हो माँ।
1: मैं तो कहती हूँ बेटा, वो बड़े किस्मत वाले थे, वरना
3: अरे
1: ये बुढ़ापा।
3: छोड़ दी माँ, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई, आओ अंदर चलो, सब लोग वहां तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो
1: चलो बेटे, चलो
3: चलो।

0: बोलो।
1: मैंने कहा आपके भाई बहन सब एक एक करके चले गए, पर किसी ने भी झूठे को एक बार भी माँ को साथ चलने को नहीं कहा।
0: तो क्या हुआ, माँ को बच्चों के घर आने जाने के लिए क्या किसी दावतनामे की जरूरत होती है भला?
1: ओफो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि आप लोगों ने अपनी माँ के मुतालिक भी कुछ सोचा है या नहीं।
0: अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, माँ जहाँ चाहे रहे, इसे उनकी मर्जी पर है। वैसे वो किसी पर बोझ नहीं है, किराए के पूरे 1500 रुपए महीना आते हैं।
1: आते होंगे। देखो जी, मैं कहती हूँ ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है।
0: तुम कहना क्या चाहती हो?
1: मैं ये कह रही थी कि क्या माँ हमेशा हमारे पास ही रहेंगी?
0: शीला, ये घर माँ का है, वो अपने घर में रह रही है। तुम अगर पूछना है तो यूं पूछ सकती हो कि क्या हम हमेशा माँ के पास ही रहेंगे या नहीं।
1: देखिए जी, ये अपनी ये वकालत घर में ना झाड़िएगा। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपको अपने पांचों भाई बहनों से माँ को बारी बारी अपने पास रखने की बात करनी चाहिए थी।
0: बड़े भैया और मनोहर ने इसके मुतालिक माँ से बात करना दुरुस्त नहीं समझा, अब ठीक भी तो है। अरे हम

0: कौन होते हैं माँ की मर्जी के खिलाफ उनके बारे में कोई फैसला करने वाले?
1: मतलब ये कि आप तुम्हारी माँ जी की सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी?
0: तो मत करो माँ की सेवा, कौन कहता है तुम्हें। ठीक है, देख लो अपने लिए और कोई घर।
1: कोई और घर? बोला हम क्यों जाएंगे कोई और घर ढूंढने, हम तो यहाँ ही रह रहे हैं। ये तो माँ को चाहिए कि वो बारी बारी से सब बच्चों के पास आकर रहे।
0: क्यों? माँ अपने घर में रह रही है, किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसके मुताबिक फैसला करने वाले हम होते कौन है? और फिर ये मत भूलो शीला, ये घर माँ का है, वो भी हमारे यहाँ रहने ना रहने के बारे में सोच सकती है।
1: ओफो, तो क्या इस घर में रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? ठीक है, आप जाने आपका काम, मैंने तो आपको आने वाली परेशानियों से आगाह किया था। आगे आपकी मर्जी।

0: चिट्ठी।
1: अरे बहू जरा देख तो किसकी चिट्ठी है।
2: अच्छा माँ जी
3: लाओ मुझे दे दो।
0: बहन जी
3: जी
0: एक नया लेटर बॉक्स लगवा लीजिए, यूं आवाज देने से बड़ा वक्त खराब होता है।
3: कह दूंगी इनसे।
0: देख लीजिए कल को अगर चिट्ठियां इधर उधर हो गईं तो फिर मुझसे न कहिएगा। बड़े बाबूजी के गुजरने के साथ साथ आपका लेटर बॉक्स एक बार क्या दीवार से उखड़ा है, फिर दोबारा वापस कभी लगा ही नहीं।
3: हाँ सो तो है भैया, बड़ों का बहुत सहारा होता है। मैं कल ही इनसे नया लेटर बॉक्स लाकर लगाने के लिए कह दूंगी।
0: अच्छा बहन जी राम राम।
3: राम राम।
4: किसकी चिट्ठी है बहू?
3: जेठ जी की है माँ जी।
4: मनोहर की?
3: जी।
4: क्या लिखा है?
3: मकान आपके नाम ट्रांसफर करवाने के लिए सबको तहसीलदार के दफ्तर में हाजिर होना पड़ेगा।
4: अच्छा
3: सो कल सवेरे की गाड़ी से आ रहे हैं।
4: अच्छा चलो इसी बहाने मिल तो जाएगा, क्या अकेला ही आ रहा है।
3: चिट्ठी में तो कुछ नहीं लिखा।
4: अच्छा आ ही रहा था तो संजू और जूही को भी साथ ले आता, बहुत मन कर रहा था उन्हें देखने को।
3: माँ जी अगर इतना ही दिन उदास हो रहा है संजू और जूही के लिए तो जेठ जी के साथ आप खुद ही वहां क्यों नहीं चली जाती?
4: हाँ मनोहर कल आएगा तो बात करूंगी उससे, अगर ये मकान का झंझट निपट गया तो हो ही आऊंगी कुछ दिनों के लिए।
5: किसके पास जाने की बात कर रही हो माँ?
4: अरे आनंद बेटे पता है कल मनोहर आ रहा है मकान के ट्रांसफर के लिए, सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए उसके साथ ही चली जाऊँ।
5: वो तो ठीक है माँ, मगर यूँ बिन बुलाए किसी के यहाँ?
4: कैसी बातें करता है रे, मनोहर का घर क्या मेरा घर नहीं है? वहाँ जाने के लिए क्या मुझे बुलावे की जरूरत है भला?
5: अब मैं क्या कहूँ माँ, आज पूरे 6 महीने हो गए बाबा जी को गुजरे हुए, उनकी 13वीं करके यहाँ से जाने के बाद न कभी उन्होंने तुम्हें कोई खत लिखा न अपने पास आने के लिए कहा।
4: उफ़
5: वो तो अब इस काम के लिए उनकी हाजिरी जरूरी है इसलिए आ रहे हैं एक दिन के लिए।
4: अरे फुर्सत नहीं मिली होगी उसे, माँ से भला दिखावा करने की क्या पड़ी है उसे। वैसे भी मकान का फैसला होने तक तो मैं खुद भी कहीं आ जा नहीं सकती थी।
5: चलो माना, मगर बड़े भैया गीता और बड़ी दीदी वो सब तो इसी शहर में रहते हैं, उन्होंने तुम्हारी कितनी बार खबर ली आकर। खासतौर पर बड़ी भाभी ने बाबूजी के गुजरने के बाद एक बार भी आई यहाँ?
4: अरे बेटे अब कोई नहीं चाहता तो मैं किसी को जबरदस्ती पकड़कर तो ला नहीं सकती, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं।
5: यही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ, इसलिए कहीं आने जाने की बातें छोड़ो और चैन से बैठो अपने घर में।
4: तो ठीक कहता है रेआनंद, रहना तो अब यहाँ ही है। तेरे बाबूजी ने बड़े चाव से बनवाया था ये घर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस घर में वो हर घड़ी हर पल मेरे आसपास कहीं है।

0: मैं पूछती हूँ ये घर है या सराय?
1: क्यों, अब क्या हो गया?
0: ये लो, अभी कुछ होने को रह गया है क्या? मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी?
1: शीला सीधे सीधे बात करो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो?
0: यही कि बारात की रोटियाँ मुझसे नहीं पकती। हाँ, अरे मनोहर भैया जी आ रहे हैं तो यहाँ वालों को न्योता देने की क्या जरूरत है?
1: कैसी बातें कर रही हो तुम?
0: मैं ठीक कह रही हूँ, और जो इतने मेहमानों के राशन पर खर्च आएगा वो क्या आपकी माँ जी देंगी?
1: शीला प्लीज जरा आहिस्ते बोलो, मनोहर और महेश भैया हमारे कुछ नहीं लगते क्या? गीता मेरी बहन नहीं है क्या? भाई भाई के यहाँ नहीं आ सकता?
0: आ सकता है, जरूर आ सकता है, मगर आपके भाई बहन आपके पास नहीं आ रहे, अपनी माँ के पास आ रहे हैं। सो हमारा उन पर कोई ऐसा नहीं होगा, जबकि हर चीज का खर्चा हम उठाएंगे।
1: मगर शीला अपनों का एहसान क्या?
0: क्यों एहसान क्यों नहीं होना चाहिए? रोटियां तोड़े हमारी और वाह आपकी माँ की, चूल्हे चौके में घुसना पड़े मुझे और खाने की मेज पर क्या क्या लगाए वो लोग।
1: अगर शीला और लोग भी तो आते हैं हमारे घर मेहमान बनकर, फिर तुम्हें मेरे रिश्तेदारों का आना क्यों खटक रहा है?
0: खटकेगा कैसे नहीं, सुनो जी मैं कह ही देती हूँ, अगर इस तरह घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा तो मैं एक दिन घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ
1: देखो, अगर खाना बनाना तुम्हें ऐसा ही बोझ लगता है तो मैं तुम्हारे लिए नौकर रख दूंगा।
0: अव्वल तो कोई नौकर मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी गया तो उसकी तनख्वाह और खाने कपड़े का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा?
1: मैं माँ से बात करूंगा।
0: करके देख लीजिए, मगर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इन तिलों में से तेल नहीं निकलने वाला।
1: क्यों, माँ को जो हर महीने किराया आता है उसमें से?
0: कह देती हूँ माँ जी आपकी हथेली पर घेरा नहीं रखने वाली। आज बाबू जी को गुजरे 6 महीने से ऊपर हो गए, 1500 रूपए महीने के हिसाब से कम अज कम 9000 रूपए होने चाहिए उनकी थैली में, मगर फूले से भी कभी 2 रूपए की जरूरत पड़े तो आज टका सा जवाब दे देंगी, मेरे पास रूपए कहाँ रखे हैं बहू?
1: तो वो किराया जाता कहाँ है?
0: मुझे क्या पता। हाँ, आपके पीछे आपके महेश भाई साहब अक्सर आते रहते हैं, उन्हीं को।
1: शीला क्या अनाप शराब बक रही हो तुम?
0: अनाप शराब नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ मैं। मेरी मानिए तो अलग से कोई मकान किराए पर ले लीजिए, इस रोज रोज के झंझट से तो छुटकारा मिल जाएगा।
1: सवाल सिर्फ पैसों का ही नहीं है शीला, हम लोग चले जाएंगे तो माँ अकेली हो जाएंगी।
0: होती है तो हो जाए, आखिर जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो फिर हम ही क्यों चिपके रहे उनके साथ?
1: मगर शीला तुम्हें पता है कि ये सब मुमकिन नहीं है। इस वक्त तुम मुझे ये बताओ कि अब करना क्या है मुझे?
0: कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना करेंगे कि महेश भैया जी और गीता को मनोहर भैया जी के आने की खबर नहीं देंगे, जिसे आना होगा खुद आ जाएगा, बस
1: बस इतनी सी बात। तो ठीक है, मैं महेश भाई साहब और गीता को मनोहर भाई साहब के आने की इतला हरगिज नहीं दूंगा, बाकी सब तुम संभाल लेना। ठीक है, अब तो खुश होना।
2: आ गए बेटा मनोहर, सारी कार्रवाई ठीक ठाक हो गई ना?
3: हाँ माँ।
2: महेश कहाँ है?
3: बाहर किसी से बात कर रहे हैं, मेरे साथ ही आए थे।
2: आनंद और गीता नहीं पहुँचे थे तहसीलदार के यहाँ?
3: पहुँचे थे माँ, वो गीता को जल्दी घर पहुँचना था, बबली के स्कूल से वापस आने का टाइम हो रहा था, और आनंद को किसी जरूरी काम से कोर्ट पहुँचना था, कार्रवाई खत्म होते ही वो कोर्ट वापस चला गया।
2: ये सब महेश और तेरी भागदौड़ का नतीजा है बेटे, नहीं तो अकेले आनंद के बस की बात नहीं थी।
4: अरे क्या हुआ माँ, किस पर खफा हो रही हो?
2: अरे किसी पर नहीं महेश बेटे, मैं तो बस इतना कह रही थी कि हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अब आनंद कोई बच्चा तो नहीं है, दुनिया जहाँ के केस निपटाता है रोज कोर्ट कचहरी में, मगर घर के काम में हाथ डालने को तैयार ही नहीं था, आखिर तुझे ही ये सब काम निपटाना पड़ा ना।
3: तो क्या हुआ माँ, आनंद ने किया या बड़े भैया ने, एक ही बात है ना, और बहू और आनंद कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, घर में चाहे कितने ही मेहमान क्यों ना आ जाए, मगर मैंने आनंद की बहू के माथे पर कभी शिकन तक नहीं देखी।
2: माथे पर शिकल लाएगी तो अपना ही कुछ गवाएगी। इतना बड़ा

0: का मकान मुफ्त रहने को मिला हुआ है महारानी को, ये क्या कम है? और बाहर कहीं रहेंगे तो 3/4 आमदनी तो किराए पर ही उड़ जाएगी उसकी।
1: ओफो माँ, तुम तो बस हर बात को उल्टी ही तरफ ले जाती हो। अब छोड़ो इस किस्से को और जरा जल्दी से अपने हाथ के आलू के पराठे बनाकर खिला दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है।
0: क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। अरे बहू सुन तो।
2: जी माँ जी।
0: देख जरा जल्दी से थोड़े आलू उबाल दे, मनोहर को आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसे आज अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। जवान जहान बच्चों का बाप हो गया है मगर माँ के सामने खुद बच्चा बन जाता है।
2: मगर माँ जी खाना तो सब तैयार है फिर ये।
0: अरे तो क्या हुआ, वो सब रात को काम आ जाएगा ना। जा आलू उबलने रख दे गैस पर, आज माँ के हाथ के बने पराठे खाएगा मेरा बेटा।

0: आनंद बेटे, बेटा आनंद,
1: क्या है माँ जी? ये भी सो रहे हैं? आज इतवार है ना, कचहरी बंद है।
0: ओह, मैं तो भूल ही गई थी।
1: कोई जरूरी काम था? कहीं तो नहीं उठा दूं?
0: अरे नहीं नहीं, रहने दे, मुझे तो बाहर से जरा रिक्शा मंगवानी थी।
1: रिक्शा? आपको कहीं जाना है क्या?
0: हाँ हाँ, सोच रही थी दो एक दिन महेश के यहाँ हो आऊं, बच्चों को देखने का बड़ा मन होता है।
1: क्यों, कोई खास बात?
0: अरे नहीं जी, कल महेश आया था, उसने नया कलर टेलीविजन खरीदा है।
1: अच्छा?
0: आज शाम कोई धार्मिक फिल्म दिखाई जाएगी उस पर, सारा मन को शांति मिल जाएगी बहू, और क्या।
1: पर हमें तो बताया तक नहीं।
0: अरे मुझे बता दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आखिर घर तो एक ही है ना। महेश खास तौर पर कह गया था कि माँ आकर टीवी का बटन ऑन करेंगी तब हम कोई प्रोग्राम देखेंगे।
1: ठीक है, मगर नाश्ता तो कर लीजिए ना।
0: नाश्ता मैं वहीं जाकर कर लूंगी बहू, बच्चे टीवी देखने को उतावले हो रहे होंगे ना।
1: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लौटने की खबर कर दीजिएगा, ये आकर आपको ले जाएंगे।
0: हाँ हाँ, कर दूंगी बहू, कर दूंगी।
1: ए जी, मैंने कहा उठ भी जाओ, कब तक सोते रहोगे?
2: क्या बात है शीला?
1: अजी अब होने को रह ही क्या गया है?
2: शीला प्लीज, पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो बात क्या है।
1: साफ साफ ही बता रही हूँ, आपके महेश भैया जी ने आज से 3 महीने पहले बड़ा फ्रिज खरीदा था और आज उनके यहाँ कलर टेलीविजन आ रहा है।
2: सच?
1: हाँ।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर तुम्हें कैसे पता चला?
1: अभी अभी माँ जी ने बताया है।
2: अच्छा, पर माँ है कहाँ?
1: गई है महेश भैया जी के घर उनके टीवी का उद्घाटन करने के लिए।
2: चलो अच्छा है,
1: पर मैं पूछती हूँ अचानक इतने रुपए बड़े भैया के पास आ कहाँ से गए? ये सब जरूर माँ जी के पैसों से खरीदे गए होंगे।
2: क्या बक रही हो शीला?
1: मैं ठीक कह रही हूँ, मैं भी कहूँ घर के खर्च पे तो माँ जी एक पैसा भी नहीं देती, फिर किराए के रुपए आखिर जाते कहाँ हैं? वैसे भी कल शाम आए थे जेठ जी माँ से मिलने के लिए।
2: अरे भाई, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया मैंने कि किराए के रुपए माँ के अपने हैं, वो उनसे जो चाहे खरीदे, जो चाहे करे।
1: क्यों, रहती वो हमारे पास है, खाना कपड़ा मेहमानों का खर्चा इनकी दवाइयों के बिल वो सब हम चुकाते हैं, फिर इन्हें मकान के किराए के रुपए हमें देने चाहिए, ना कि महेश भैया को।
2: फिर वही बात, किसे क्या करना है और वो क्या कर रहा है इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं?
1: मगर ये कहाँ का इंसाफ है, सेवा करें हम और मौज उड़ाएं दूसरे, अगर किराए के रुपयों पर सबका हक है। मैं कहती हूँ हाँ, अपने भाई बहनों से बात कर लीजिए, अगर वो सबके हक के रुपए अकेले बड़े भाई साहब पर लुटाने वाली होती कौन है?
2: ओहो ठीक है बाबा, कर लूंगा बात।
1: आपकी माँ जाते जाते एक ऑर्डिनेंस जारी कर गई है।
2: ओहो कुछ बताओगी भी, मुझे कोर्ट को देर हो रही है।
1: वो बताना क्या है, आपकी माँ का बस चले तो वो विवेक और सोनिया का स्कूल जाना ही बंद करवा दे।
2: पर हुआ क्या है, कुछ पता भी तो चले।
1: आज सुबह आपकी माँ जी का दिल घबरा रहा था, सो उन्होंने विवेक की स्कूल से छुट्टी करवा दी कि वो घर पर रहेगा तो उनका दिल लगा रहेगा, और चूंकि विवेक

0: स्कूल नहीं गया, इसलिए सोनिया ने भी स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया।
1: अरे तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना लेती हो। एक दिन स्कूल से छुट्टी कर ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। और फिर हो सकता है बच्चों का ही मन ना हो स्कूल जाने का।
0: हाँ जी, आप तो घुमा फिरा कर माँ को ही ठीक कहेंगे। ठीक है, इम्तिहान में जब दोनों फेल हो जाएंगे ना तब समझ आएगी आपको। और ऊपर से राजू बुआ के बच्चों को भी बुलवा लिया है माँ जी ने रोटियां तोड़ने को।
1: तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, राजू बुआ के बच्चे दो चार दिन रह जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। कुछ दिन घर में चहल पहल हो जाएगी, माँ का दिल लगा रहेगा।
0: माँ का दिल तो लग जाएगा, पर मैं पूछती हूँ मेहमानों के आने से रसोई का जो खर्च बढ़ जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा, आपके महेश भाई साहब या माँ जी।
1: शीला, हर बात की हद होती है।
0: यही तो मैं कहती हूँ कि हद हो चुकी है, मुझसे और नहीं होती मेहमानों की खातिरदारी। माँ जी से कह दीजिए बारी बारी से अपने दूसरे बेटों के पास जाकर रहें, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप अपने लिए कोई मकान देख लीजिए, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती।
1: शीला तुम बेकार जिद कर रही हो, पता है बाहर मकानों के किराए कितने हैं, आधी से ज्यादा कमाई किराए में उठ जाएगी। और हमारे साथ रहने से माँ को कितना सहारा है।
0: अजी, माँ का बुढ़ापा संभालने का ठेका क्या हमने ले रखा है, आपके दूसरे भाई भी तो हैं, जायदाद में से हिस्सा लेने के लिए तो सब उठ खड़े होंगे। बुला ले महेश भाई साहब उन्हें अपने पास, जिन पर दिन रात किराए के रुपए लुटाए जा रहे हैं, वो क्यों नहीं करते कुछ दिन सेवा।
1: ठीक है बाबा, मैं कल ही किराए को कोई मकान देखता हूँ अपने लिए। माँ माँ,
2: दादी माँ तो चली गई। पापा
1: क्या बक रहा है, आखिर कहाँ गई माँ।
2: अभी थोड़ी देर पहले ताऊ जी आए थे, उन्हीं के साथ गई हैं। दादी माँ कह रही थी अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगी, कह रही थी कि वो हरिद्वार में किसी आश्रम में जा रही हैं। ताऊ जी उन्हें गाड़ी पर चलाने गए हैं।
0: अजी क्या हुआ, माँ जी चली गई है तो दो चार दिन में मन भर जाएगा तो लौट आएंगी। अगर बाबू जी के साथ इससे पहले भी तो कई बार ज्वालापुर आश्रम गई है,
1: तब की बात और थी, अब तो मैं बिल्कुल अकेली है। जरूर जरूर माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली होंगी।
0: सुन ली हो तो सुन ली हो, चलो मुझे तो कुछ दिन आराम मिल जाएगा। चल विवेक जा, जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। अब तो सोनिया कहाँ मर गई।
2: ताऊ जी के साथ स्टेशन गई है। जाते हुए सोनिया को गले लगाकर दादी माँ बहुत रो रही थी। पापा मैं भी दादी माँ के पास जाऊंगा।
0: बकवास बंद कर और जा, स्कूल देर हो रही है।
2: अच्छा माँ।

0: 엄마.
1: 아낸.
0: 아니, 뭐라고 해서 앞.
1: 가세요, 아낸.
0: 지구. 기타? 지자지? 앞섭이야? 아, 맞게.
1: 고수능이 아낸. 예, 일로보핫. 좀 마이즈 베이안에 또 말이 남리카에. 자주 से पढ़ो इसे तुम भी सुनो बहू
2: जी
0: लाइए भाई साहब खत के साथ ये चेक
1: तुम चिट्ठी तो पढ़ो
0: आनंद ये चिट्ठी पाकर तुम्हें हैरानी तो होगी मगर क्या करूं
1: कई बातें जो मैं तुमसे चाह कर भी नहीं कर सका इस चिट्ठी के जरिए कह रहा हूं आनंद तुम बहुत छोटे थे जब मैंने मैट्रिक पास करके आगे पढ़ने की ख्वाहिश होते हुए भी नौकरी कर ली थी ताकि मेरे छोटे भाई बहनों की परवरिश ठीक तरह से हो सके मैं बाबूजी का सहारा बनना चाहता था और मैंने कड़ी मेहनत और अपने अखराजात में तवाजुन रखकर ही अपने लिए आहिस्ता आहिस्ता आराम और आसाइश के सब सामान जुटा लिए तुम्हें शायद ये सब बेसिक तरह की बातें लगेंगी मगर इन्हीं में तुम्हारी बीवी शीला के शक व शुबे का जवाब भी पिना है बहू का ख्याल था कि मैंने मां से पैसे हथिया लिया है और उन्हीं से फ्रिज और कलर टेलीविजन लिया है मगर ऐसा नहीं है मैंने ये सब चीजें अपनी जाती बचत और किस्तों पर खरीदी है रही मां के मकान के किराए के रुपयों की बात तो वो मेरे पास बतौर अमानत मेरे बैंक में जमा थे उसमें से ही मैंने सबको बराबर बराबर हिस्से के चेक इरसाल कर दिए हैं और तुम्हारे हिस्से का चेक इस खत के साथ लगा है ऐसा मैंने मां की ख्वाहिश के मुताबिक ही किया है मां की यह हिदायत थी कि इस रुपए के बारे में

0: उनकी हयात तक किसी को कुछ न बताऊं, शायद यही मेरा कसूर था। हो सके तो अपने बड़े भाई को माफ कर देना, मैं तुम दोनों का कसूरवार हूं।
1: तुम्हारा भाई महेश, ओ महेश भैया, महेश भाई साहब,
2: महेश भाई साहब, आप कितने अजीम हैं और मैं हमेशा आपको गलत ही समझती रही।
0: कोई बात नहीं बहू, सोनका भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।
2: मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब।
1: मगर उस मकान का क्या करना है मनोहर भाई साहब?
0: उसका फैसला भी हो चुका है। यह मकान बाबूजी की आखिरी निशानी है। यह हम सब भाई बहनों के बीच प्यार की आखिरी कड़ी है। इस मकान को हमारे रहते कभी नहीं बेचा जाएगा, और आनंद ना ही तुम इस मकान को छोड़कर कहीं जाओगे।
1: जी,
0: तुम ताहयात इस घर में बतौर केयरटेकर रह सकते हो। इसके अवज तुम्हें मकान की मरम्मत वगैरह करवानी होगी
1: जी,
0: और किराए वाले हिस्से को खाली करवाकर हम तमाम भाई बहनों और उनके बच्चों के लिए महफूज कर दिया जाएगा
1: जी।
0: और कोशिश होगी कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने इस मकान में आकर रहे, ताकि ये मकान हम भाई बहनों के बीच आखिरी कड़ी का काम करता रहे।
1: ओ भाई साहब,

भूपेंद्र की आवाज में आप सुन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था खयाम ने। आज की फिल्म मौसीकी के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं खयाम की मौसीकी सजे कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम वफात के मौके पर। प्रोग्राम की अगली पेशकश उमराव जान फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज में, नगमेगार शहरयार।

0: अश्विन फिल्म का नाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, नगमा निगार थे साईं, मौसीकार खय्याम। और सुनिए लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजों में बाजार फिल्म का ये नगमा, कलाम मखदूम मुहिद्दीन का है।
1: चूड़िया लाला चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया, गोरे गोरे हाथा की सगाई, आशिक के मन को भाई, चूड़िया ले लो चूड़िया, चूड़िया
2: ए चूड़ी वाले चूड़िया दिखाओ ना, चूड़िया दिखाओ।
3: इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़िया कयामत आएंगी।
2: ये क्या कर रहे हैं?
3: चूड़िया दिखा रहा हूं बीबी।
2: हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए।
3: धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहां से लाऊं मैं? ये चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

तकरीबन 70 सीनियर कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल भारतीय कारोबारी वफ्द का भी वफ्द भी उनके हमराह है, जिसका मकसद भारत और सिंगापुर के इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान जनाब गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईएसएमआर भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आला सतह का वजारती प्लेटफॉर्म है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के साथ चौथी भारत सिंगापुर कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी मुनद होगी, जिसके बाद मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब गोयल के हमराह वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णवी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर तिजारत सिंगापुर के अपने हमनसब और सिंगापुर के दिगर आला सतह के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में ऑस्ट्रेलिया के सफीर डॉ रॉबर्ट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तरफेन से जमहूरियत और चुनाव बंदोबस्त से मुतालिक भारत की बैन अल-कौमी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए विजन के मुताबिक जमहूरी तौन को मजबूत बनाने के अपने मुश्तरक आजम का इरादा किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव बंदोबस्त और चुनावी अमले की तरबियत के शोबे में बाहमी तआवुन को मजीद उसअत देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज लापता होने वाले और बचाए गए बच्चों के लिए एक कौमी डीएनए और बायोमेट्रिक शिनाख्ती निजाम के कयाम की मांग के सिलसिले में मुफादियामा में दायर की गई एक अर्जी पर मरकज और बच्चों के हकूक के तहफ़ से मुतालिक कौमी कमीशन से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड पोलिंग पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया है। इस पॉलिसी के तहत जमीन के मालिकान और तरक्याती इदारों की रजाकाराना शमूलियत के जरिए मनसूबाबंद शहरी तरक्की के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पॉलिसी के मुताबिक लैंड पोलिंग उन इलाकों के लिए काबिल इतलाक होगी जिन्हें जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के तहत तरक्याती अथॉरिटी या हुकूमत की जानिब से नोटिफाई करदा किसी दूसरे इदारे के जरिए मुकर्र किया गया है। पंजाब पुलिस ने नए भर्ती होने वाले दिफाई एहलकारों की तस्दीक के अमल को तेज करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल वजारत दिफा से मुंसलिक है जो नए भर्ती होने वाले एहलकारों की इसनाद और दस्तावेजात की तस्दीक करेगा। खातिन के कौमी कमीशन एनसीडब्ल्यू ने पंजाब के शहर जालंधर में अपनी यशोदा एआई पहल का आगाज किया है ताकि उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन को डिजिटल तौर पर बाख्तियार बनाया जा सके और उनकी साझेदारी में इजाफा किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुजाकरातकारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुजाकरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक कि ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आप नए हुर्मुज की सूरत हाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयान सामने आ रहे हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की कनाडा की दरामदात पर 50% महसूल आयद किए जाने के मंसूबे को मुअख्खर कर दिया है। यह ऐलान दोनों मुल्कों के माबेहन समझौता हो जाने के बाद किया गया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्निक ने कहा है कि महसूलात पर अमल दरामद को जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक मुरासले में उन्होंने कहा कि कई हफ्ते से कनाडा अमरीका के साथ बातचीत कर रहा था ताकि बाकी मानदा तजारती मामलों को हल किया जा सके जो कनाडा के बाशिंदों के हकीकी मुफाद में हो। मर्दों की क्रिकेट में भारत ने गोल में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। आज खेल के पांचवें दिन श्रीलंका की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग में 206 रन बनाकर आउट हो गई जबकि जीतने के लिए उसे 372 रन का निशाना मिला था। इस तरह भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग में 193 रन बनाए थे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पायदार इकतसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमाएकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद इम्तिहान

0: में इजलास से मुतालिक राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात के निफाज के लिए मरकज से जवाब मांगा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वक्त की क्यादत कर रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: वीडियो में भी गुजारी के 70 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

मैं मांगती माला ली दी मैं क्यों घबरावा असदुल्लाह दा वजल्लाह दा करमुल्लाह दा ऐनुल्लाह दा विरद पकावा मैं मांगती माला ली दी मैं क्यों घबरावा इश्क़।

मैं मंगती मौला अली दी, मैं क्यों घबरावा। असदुल्लाह दा वजुल्लाह दा करमुल्लाह दा एनुल्लाह दा विरद पाकावा। मैं मंगती मौला अली दी, मैं क्यों घबरावा। मैं मंगती मौला अली दी, मैं क्यों घबरावा। अली मामी मनस्तो मनं गुलाम अली, हजार जान गिराए फिदाए नाम अली। सीवन विच हरावे याद हुसैनी आवे, सीवन विच लहरावे याद हुसैनी आवे, पुल दे भाग जगावे परचम अब्बास दा गाजी, अब्बास दा सोने अब्बास दा परचम, परचम

आगे पहरा देखो है रजपाली, सब दे दर्द मंडावे खुशियां झोली पावे, पुल दे भाग जगावे परचम अब्बास दा गाजी, अब्बास दा सोने अब्बास दा परचम, हो परचम।

निष्कामारे करण चढ़ागा लोकी सारे जगमग जगमग दीवे जग दे दे, दे

सच्चा तेरा नाम सच्चा सच्ची जात है तेरी जर तो महताब बना दे ला।

ताब बढ़ा दे लालन हस्ती मेरी जदों की ताज़ी कर कलंदर दा जदों की ताज़ी कर कलंदर दा मेरी हर एक मुश्किल टली टली मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा।

है कि कोई भी कम ना आया। मुर्शद लाल कलंदर मेरे हरदम साथ निभाया। इस फानी दुनिया विच रह के कोई भी कम

ਚੰਗੀ ਈਸਾ ਮਾਏ ਜਿੰਦੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲ ਸਖੀ।

गुरु वास्ता पावा। सदका शाहिद आलम दा मैं खाली हथ न जावा। जेरा ते हसनैन अली दा रोरो वास्ता पावा। रोंदे रोंदे ना मर जावा, रोंदे रोंदे ना मर जावा। दर पीरा तेरे खड़ो।

झला पक्षी पक्षी झला में पक्षी झला पक्षी पक्षी झला में पक्षी पक्षी झला में पक्षी पक्षी झला में पक्षी झला पक्षी ते लगे ठंडी हवा मौसम गर्मी दा झला पक्षी पक्षी झला पक्षी ते लगे

झल्ला पखी पखी झल्ला पखी पखी झल्ला पखी ते लगे ठंडी वा मौसम गर्मी दा झल्ला पखी पखी झल्ला पखी कलियां भी घूंढ।

ਗੰਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੂੰ ਝੱਲਾ ਪੱਖੀ ਪੱਖੀ ਝੱਲਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੱਗੇ।

आमिन अजकल सोहना साईं, आमिन अजकल सोहना साईं, पर्वत धार

आमिल अजकल सोहणा साईं, नात में मुफ्ती खून थी साईं। जा देखा झुंड में किन मिन को, रोवा कर कर याद सजन को। जा देखा झुंड में किन मिन को, रोवा कर कर याद सजन को। अखियां

आमिन अॼुकल्ह सोहणा साईं, नात में मुफ़्ती खून थी साईं, वाट निहारा कांग उडारा पंडित जोशी दे कन खावा, वाट निहारा कांग उडारा

मारी तड़िया भूल गया रस मारी तड़िया जेडे लंगड़िया पीता बट पे खेवश कभी लड़े पर हिक हिक तेनु मैं चाहा बट पे खेश कभी लड़े पर हिक हिक तेनु मैं चाहा आ मिल मारो मार रो थल विच कर दिया धाहा आ मिल मारो माड़ू

फिल्म गोरियां नूं दफा करो इस फिल्म दा एह गीत करमजीत अनमोल दी आवाज दे विच सामने तुसी हुणे सुनिया। प्रोग्राम चल रहा सी पंजाबी फिल्म म्यूजिक इस नारे नाल सामने हुण देश पंजाब प्रोग्राम खत्म करन दी शीतल नूं इत्थे ही दिओ इजाजत खुदाफिज़।

0: हेलो
1: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अभी भी कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबाने से पहले एक मिनट ले रुको, सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।

0: मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। यह प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेकर स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, टीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, जारी है हमारा फोन इन कार्यक्रम।

0: हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जारी है। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ना फसल में रोग समस्या जो भी है उससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2342108 और दूसरा नंबर है 2342108।
1: और इस समस्या को लेकर कोई भी आपके मन में अगर जहन में कोई सवाल आता है या कोई आपको लग रहा है कि मेरे फसल में कोई आप रोगग्रस्त हो रही है तो हमारे डॉक्टर साहब भी वहां पर बहुत तैयारी से अब जुटे हुए हैं। डॉक्टर सुरजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर डी एस सोई जी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहैलाइट।
2: किसान बहन भाइयों, फॉरेन कार्यक्रम में कृषि जगत कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, तो फिर से हम आ गए हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर DS सिरोही जी, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि फोन इन कार्यक्रम है तो बिना फोन के कैसे संपर्क करोगे आप, तो फोन नंबर बता देते हैं आपको। फोन नंबर हमारे वही हैं जो अक्सर रहते हैं, 2342108223, 2342108223, 2342108283, 2342108283। दिल्ली का STD कोड जरूर लगाइएगा इन नंबरों से पहले, 011। कोई भी समस्या गन्ने से संबंधित तुरंत फोन कीजिए। और जैसा आप सुन ही रहे हैं, कुछ किसानों ने फोन किए थे, उनकी समस्या का समाधान हमने करा दिया है। तो हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन का, तुरंत फोन कीजिए। इससे पहले थोड़ी चर्चा डॉक्टर साहब आपसे कर लें। आपने फोन आ गया है, डॉक्टर साहब इशारा कर रहा है अश्वनी बहुत देर से कि फोन आ गया, तो देखते हैं किस किसान का फोन है। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार जी।
3: जी नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा
2: कौन बोल रहे हैं जी?
3: जी मैं गौरव कुमार, गांव संदलीपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
2: गौरव भाई बताइए क्या सवाल है?
3: मेरा सवाल ये है, अगले महीने सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुवाई होती है, तो उसमें हम क्या सावधानियां रखें जिससे गन्ने की फसल को बीमारियों से बचाया जा सके,
2: बताइए डॉक्टर साहब। सुजीत जी,
4: गौरव जी नमस्कार। आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे कृषक भाई बहन हमारे लाभान्वित होंगे। तो अगला 15 सितंबर से जो समय स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है, शरद काल के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और अधिक पैदावार के लिए भी एक अनुकूल समय होता है किसान भाइयों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा शरद काल में गन्ने की बुआई करेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक फायदे भी होते हैं। क्या क्या से बीमारी और कीट से बचने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज और मैं कह दूं किसान भाइयों को, जो किसान भाई ग्रीन मैन्यूरिंग में ढैचा अभी लगा रखे होंगे, तो उस ढैचा को बहुत जल्दी उसको पलटाई कर दें, क्योंकि पलटाई करने के बाद उसको कम से कम 45-60 दिन के आसपास होना चाहिए। अगर उसमें फ्लावरिंग हो जाती है या उसमें पक जाते हैं तो वो फायदे नहीं मिल पाते जो 45-60 दिन में फायदे मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही ढांचा आपका मुलायम होता है उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो जल्दी से जल्दी सड़ने में सहायक होता है, जिससे कि खेत की जुताई कर दें तो उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और खेत में गन्ने की पैदावार में लाभान्वित लाभ पहुंचाते हैं। खेत की तैयारी आप सबसे पहले आप मिट्टी प्लटहल से कीजिए, गहरी जुताई से कीजिए, चीजलर से कर लीजिए, जिससे कि आपके जो नीचे की जो परत है वो टूट जाए। उसके बाद कल्टीवेटर वगैरह चलाइए। सबसे पहले आप मिट्टी को शोधित जरूर कीजिए। मिट्टी को शोधन करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर आता है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में अंकुश के नाम से आता है, या कोई भी ऐसी प्रतिष्ठित संस्थान है, उस प्रतिष्ठित संस्थान से आप ट्राइकोडर्मा के कल्चर को आप लीजिए और कम से कम 10 किलोग्राम प्रति

0: एयर की दर से या कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे जल प्लावित क्षेत्र हैं वहां पे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भूमिगत में भूमिजनित जो होगी मृदा जनित बीमारियां हैं इससे बचाव के लिए भी है ट्राइकोडर्मा उसमें मुख्य रोल प्ले करता है। भूमिगत कीट से बचने के लिए बगरिया बेशियाना और मेटाराइजियम यानी सोपली का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर के साथ दोनों जैविक चीजों को मिला लेंगे, जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाए। और पहली जुताई पे सबसे पहली जुताई करें, उससे पहले मिला के मिट्टी में मिला दें, उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जिससे कि भूमिगत कीट से भी बचाव कर सकते हैं और मृदा जनित बीमारी से भी बचाव कर सकते हैं। ये तो रही मिट्टी को शोधन करने का तरीका। उसके बाद जो बीज का चयन आप करेंगे, कम से कम 10 महीने का बीज होना चाहिए और कोशिश ये करें कि उसमें रोग और कीट का प्रकोप ना हो और ऐसे शुद्ध बीज का उपयोग करना चाहिए। और उस बीज को 2 आंख का टुकड़ा काट सकते हैं, या नर्सरी लगाना चाहते हैं तो 1 आंख के टुकड़े को काट लें। उसके बाद शोधन किसी भी रासायनिक दवा के साथ शोधन करें, या थाइफिनेट मिथाइल ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, या जो इसके अलावा एजॉक्सिस्टोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का मिक्सचर है, 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या लिक्विड है तो 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना लीजिए और कटे हुए बीज को शोधित करके तभी गन्ने की बुआई करना चाहिए। इसके लिए किस्मों का चयन एक बहुत ही बड़ा कदम होता है किसान भाइयों के लिए। किस्मों का चयन ऐसे किस्मों का चयन करना चाहिए जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हो। जैसे कुछ अस्वीकृत गन्ने की किस्म किसान भाई कभी कभी लगा देते हैं, तो ऐसे अस्वीकृत गन्ने की बुआई नहीं करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित किस्में हैं उन किस्मों की ही बुआई करें और अपने क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए। यदि उस क्षेत्र में गन्ना किस्म अच्छा चल रही है तो उसी गन्ना किस्म की बुआई करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बीज संशोधन की बात कही है, तो कितनी देर डुबो कर रखना चाहिए?
2: देखिए, ऐसा है जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज का शोधन बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, जैसे आपने रेड रॉट का जिक्र किया होगा, पिछले श्रोता समझ रहे थे कि किसान भाई सुन रहे हैं कि किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि बीज का उपचार 100% करना है आपको। हमारी 1 साल के लिए 2 साल के लिए फसल जाती है, 1 साल प्लांट केन हम लेते हैं, दूसरे साल हम जो है रेटून लेते हैं। तो अगर वह बीज का शोधन हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से उसमें निजात मिलेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने ट्राइकोडर्मा का भी जिक्र कर दिया, आपको अपनी बीज का जो हेग्जास्टॉप दवा होती है या थायोपनेट मिथाइल है, कोई भी कार्बिडिजम है, किसी भी दवा से आप अपना इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बतानी है किसान भाइयों को, जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमाणित हमारी वेराइटी है, जैसे CO0118, हम GO238 का जिक्र नहीं कर रहे हैं ज्यादा, CO0118 है, COLK16202 है, COS18231 है, तो ये वेराइटी जो है, इन वेराइटियों का चयन अब थोड़े थोड़े क्षेत्रों पर हम जैसे बीज मिल जाता है इन बीज को प्रयोग करें। साथ ही साथ थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा, इसमें मिश्रित फसल के रूप में किसान भाई सरसों की फसल ले सकते हैं अक्टूबर की बुआई के साथ में, और जो है दूसरी फसल लहसुन की भी खेती इसमें कर सकते हैं।
1: तो गौरव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
3: हेलो जी,
1: नमस्कार जी।
3: नमस्कार,
1: कौन सा बोल रहे हैं?
3: पवन कुमार, जयतोला डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश।
1: बताएं जी पवन जी, क्या सवाल है आपका?
3: मुझे सितंबर गन्ना बहना था 18231, ये बीज कहाँ से प्राप्त करें?
0: पवन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दूं। आपने एक अच्छे किस्म का चयन किया है जिसका कोसा 18231 नाम है, जो कि अगेती फसल है और ये सरकार के द्वारा अनुशंसित भी है। तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा, आप संभल जनपद के रहने वाले हैं तो आपके क्षेत्र में जो भी लोकल गन्ना विकास परिषद है या सोसाइटी है, उस सोसाइटी पे आप जाइए, अपने इस 18231 के नाम को बताइए और वो लोग हमारे गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर या गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर से ये किस्म मंगवा के आपके आपके पास स्वतः ये पहुंचा देंगे। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस अपना नाम, अपना पता, कितनी मात्रा में आपको बीज की मात्रा चाहिए गन्ना विकास परिषद या गन्ना समिति में आप नोट करा दीजिए, आपको शोध संस्थान से उपलब्ध हो जाएगा।
1: तो पवन भाई, बहुत बहुत तो आपकी चीज जितनी मेहनत थी ना वो सारी डॉक्टर साहब ने खत्म कर दी है, तो आपकी ऐसे ही कीजिए, धन्यवाद फोन करने के लिए। और फोन एक और आ गया डॉक्टर साहब, तो देखते हैं किस किसान का फोन है और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो
4: हेलो,
1: नमस्कार जी।
4: जी नमस्कार डॉक्टर साहब,
1: कौन सा बोल रहे हैं जी?
4: डॉक्टर साहब, मैं सोनू नागर बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: सोनू भाई बताइए, क्या सवाल है?
4: डॉक्टर साहब मुझे सामान्य की प्रजाति लगानी है सितंबर माह में
1: जी,
4: तो प्रजाति का नाम जानना चाहते हूँ, सामान्य की कौन सी प्रजाति लगा सकता हूँ सितंबर में।
0: हाँ सोनू नागर जी नमस्कार।
4: जी नमस्कार। ठीक
0: मैं हाँ जी बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है किसान भाइयों का। तो आप सामान्य गन्ना लगाना चाहते हैं, तो सामान्य गन्ने में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग करके आप ज्यादा ज्यादा लाभ ले सकते हैं। सामान्य गन्ना में यदि हम बात करें तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि 0-50-11 की खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं।
4: ठीक है जी।
0: हाँ अच्छी खेती है जैसा आपने भी बताया, और इसकी भी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सामान्य में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। सामान्य में यदि हम बात करें तो कोसा 1633 एक किस्म है जो कि मध्य प्रदेश से पकने वाली है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से ये और मुक्त हुई है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें चीनी की मात्रा भी ज्यादा है और उपज भी आप अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा कोसा 1433 है जो कि ये भी बहुत पुरानी वरायटी नहीं है, नई वरायटी है और ये भी मध्य प्रदेश से पकने वाली है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसका बुआई में आप यूज करके ज्यादा ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और वैरायटी की जरूरत है मध्य प्रदेश से पकने वाली, तो अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद या सोसाइटी में आप संपर्क कीजिए, वहां से जो भी अनुशंसित है उस गन्ना किस्म का बुआई करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और किस्म है जो कि आपके क्षेत्र में है, ये लखनऊ से रिलीज हुई है, कोलक 1500-207, तो इस किस्म का भी आप बुआई कर सकते हैं। कोलक 1500-206 भी किस्म है, इस किस्म की बुआई करके आप ज्यादा ज्यादा ले सकते हैं। ये सारे सामान्य पकने वाली वैरायटी।
1: डॉक्टर सरोही को जोड़ना चाहिए।
2: मैं किसान भाई आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा दो वैरायटी करनाल से जो रिलीज हुई है उनके बारे में बताना, थोड़ा बीज लेकर के आप अपना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक वैरायटी का नाम है CO 1718 और जिसको हेलो
1: हाँ बोले बोले
2: एक वैरायटी CO 1822, इन दो किस्मों को भी आप अपने सामान्य प्रजाति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
5: हेलो नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
5: ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर गांव जिला गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से।
1: बहुत स्वागत ऋषिपाल भाई आपका, बताइए क्या सवाल है?
5: मैं ठीक है नरेश भाई, और सुनाओ?
1: बढ़िया है जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब?
5: बस वो गन्ने के चक्कर में ही था, असल में हमने पेड़ी वो रखी थी 10-20 पेड़।
1: हाँ जी
5: हेलो।
1: हाँ बोलिए बोलिए।
5: हाँ जी, तो उसमें सड़ाई सी लग रही है पेड़ी में।
0: पेड़ी में सलाई, थोड़ा लक्षण हमें स्पष्ट नहीं हो रहे हैं आपके द्वारा,
5: जैसे सलाई सी नहीं हो जाती जी, या ऊपर से जैसे कुछ खा लेता है?
0: हाँ जी मैं बता रहा हूँ, सलाई तो या तो अंकुर बेधक लगते हैं, लेकिन ये अंकुर बेधक लगने का समय नहीं है, तो आपके कीटों में जो छेद हो जा रहे होंगे, अगर पत्तियां कट जा रही होंगी, तो ये पेड़ी फसल में एक सामान्य जो कीट होता है, जो जिसे हम सैनिक कीट कहते हैं, सैनिक कीट मुख्य रूप से पेड़ी फसल में ही पाई जाती है, और पत्तियों को कुतर कर ये खाने वाला कीट होता है, जिससे कि पत्तियों में छेद भी हो जाता है। इसके अलावा ग्रास हॉपर भी होता है जिसे टिड्डा कहा जाता है, ग्रास हॉपर से भी पत्तियां नुकसान में पहुंच जाती हैं, या यूं कहें जहां पे पुरानी पत्तियों का सम्मेलन होता है, पुरानी पत्ती ज्यादा पाई जाती है, वहां पे सैनिक कीट का भी प्रकोप ज्यादा होता है, और उन जगहों पे कुछ अन्य कीट भी आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप कीटनाशक का इस्तेमाल स्प्रे कर दें, जिससे सैनिक कीट से बचाव आप कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास का भी स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपीट का भी कर सकते हैं।
1: ऋषिपाल भाई
5: जी,
1: ये तो आपने थोड़े क्षेत्र में लगा रखी है ना अपने लिए?
5: हाँ जी।
1: डॉक्टर साहब कोई जैविक तरीका है रोकने का?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आप सभी आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता दूं, इस समय जो समय चल रहा है चोटी बेधक का, तीसरी पीढ़ी खत्म होगी, चौथी पीढ़ी की यह शुरुआत हो गई है, और आपके क्षेत्र में बिजनौर जनपद में एक नया कीड़ा मुझे दिखाई दिया है, जो कि अभी निरीक्षण करने के बाद दिखा है, जो कि प्लासी बोरर के नाम से यह जाना गया है, और प्लासी बेधक एक ऐसा कीट है जो कि बिजनौर जनपद में है और मुजफ्फरनगर जनपद के कुछ ऐसे जगहों पे दिखाई दिया है। इसमें एक गन्ने में कम से कम लार्वा जो होती है, सूंड़ी की संख्या 100 से ज्यादा होती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो इस समय रसायनों का उपयोग कम से कम करें और जैविक रूप से आप उसमें इस्तेमाल करें। जैविक के रूप में कौन सा हथियार यूज करेंगे? ट्राइकोकार्ड के नाम से एक जाना जाता है, ट्राइकोगर्मा जापानिकम के नाम से एक जैविक कीट आता है, या जापानिकम के अलावा ट्राइकोगर्मा किलोनिस के नाम से एक जैविक कीट है, जिनका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के 3 केंद्रों पर मुजफ्फरनगर संस्थान, शाहजहांपुर और पूर्वांचल में कुछ

0: अनुकूल समय चल रहा है, तो तना बेधक से बचने के लिए भी आप ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करके जैविक विधि से बिना किसी दवा का इस्तेमाल किए तना बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, पूरी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, अन्य बेधक से भी बचाव किया जा सकता है।
1: तो ऋषिपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो हम पहले बात कर रहे थे, रोग की बात चल रही थी हमारी शुरू में, तो तीन रोगों का जिक्र आप दोनों ने किया है कि ये रोग हैं और उनका नियंत्रण भी बताया। इसके अलावा बरसात के इस मौसम में कोई अन्य रोग भी है जो आके जो हमारे गन्ना किसान है उनको परेशान करे?
0: हाँ, कुछ ऐसे पश्चिमी क्षेत्र हैं या मध्य क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ रोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी गन्ना किस्म है जिसमें घासी प्ररो रोग दिखाई दे रहा है। घासी प्ररो रोग को मैं आसान भाषा में बता दूं, ग्रासी सूट डिजीज कहा जाता है, और इसमें एक क्लब में कम से कम झूठे कल्लों की संख्या बहुतायत मात्रा में हो जाती है, और एक मदर सूट होता है, तो जो झूठे कल्ले होते हैं वो गन्ने में परिवर्तित नहीं हो पाते। ऐसे जहां पे बीमारी दिखाई दे रहे हैं तो किसी भी दवा का इस्तेमाल किसान भाई ना करें, फफूंद नाशक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप कहीं अनभिज्ञ व्यक्ति से आप दवा के बारे में पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे दवाओं का आपका दे देगा और आपके पैसे ज्यादा नुकसान होंगे। तो आपको करना क्या है, उस संक्रमित पौधे के मूल को, उस क्लंप को जिसमें जो झूठे कल्लों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको समूचा जड़ सहित निकालें और मिट्टी के नीचे दफना दें। यदि इसकी मात्रा ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका आपतन ज्यादा है, तो एक काम किसान भाई जरूर करें, उसमें कोई कीटनाशक का स्प्रे कर दें। जैसे इमिडाक्लोरबिट का भी इस्तेमाल कर स्प्रे कर सकते हैं। इससे फायदे क्या है, इससे फायदे यह है कि इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं ये चूसक कीट करते हैं। जब चूसक कीट को मारने के लिए हम कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे तो बीमारी केवल एक क्लब में ही बचा रहेगा, दूसरे पौधे पे ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जिससे दूसरा स्वस्थ पौधा आपका बच जाता है। तो ये ग्रासी सूट से बचने के लिए बहुत ही आसान और ये इकोनॉमिक तरीका है, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला तरीका है। एक बीमारी और चर्चा में कर दूं, क्योंकि वो बीमारी आने वाली है, किसान भाई कभी कभी परेशान हो जाता है गन्ने के पीलापन को लेके, और गन्ने के पीलापन में एक वायरस जनित बीमारी आती है जो कि अक्टूबर महीने से शुरुआत होती है, सितंबर लास्ट से अक्टूबर से शुरुआत होती है। इससे किसी भी तरह के इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक नुकसान किसान भाइयों को नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस समय और इस वायरस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के वातावरण के अनुकूल जो वातावरण दिखाई दे रहा है, वायरस से बिल्कुल ना घबराएं। इस समय जो पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं, तो बहुत सारे किसान भाई इसको वायरस मान ले रहे हैं, लेकिन आज के समय में जितनी भी पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर जो नुकीला वाले पत्ती हैं वहां से शुरुआत में दिखाई दे रहा है, तो वहां से यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से जड़ों में ये इसकी बीमारी है, जिसे उकठा रोग कहा जाता है, विल्ट कहा जाता है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने पहले ही शुरुआत में किया था। उससे बचने के लिए कोई भी फफूंदनाशक, सिस्टमिक नेचर के फफूंदनाशक की ड्रेंचिंग कर देंगे तो निश्चित रूप से उस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो ये सम्यक विषय पे समसामयिक बीमारी थी, जो कि किसान भाइयों को मैंने बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही संक्षिप्त सरल भाषा में बता दिया। यदि किसान भाई इसको पहचान के यदि समय से इसका उपचार कर ले तो निश्चित रूप से बीमारी से होने वाले जो आर्थिक नुकसान है, इससे बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, पीलेपन की आपने जिक्र करी है, पीलापन आपने कहा कि रोग की वजह से भी हो रहा है, पीलापन हो सकता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है या बाकी जो तत्व है उनकी वजह से भी हो सकता है, तो अंतर कैसे करें किसान?
2: देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर साहब ने भी इंसेक्ट और डिजीज के बारे में अभी विस्तार से समझा दिया।
1: जी जी,
2: अभी एक किसान भाइयों के लिए एक चैलेंजिंग जो समस्या है इस टाइम पे, किसान भाई ज्यादातर लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में किसान भाई यूरिया का अत्यधिक प्रयोग बरसात के बाद भी करते रहते हैं। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की बात करें, पोषक तत्व का प्रबंधन के ऊपर हम बात करें, अब किसान भाइयों को चाहिए इस समय में कि जो यूरिया का इस्तेमाल है उसको ना करें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, मानसून दरकिनार चलता आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी, जी।
2: जो नाइट्रोजन की मात्रा है किसान भाइयों ने सभी ने डाल ली है।
1: जी।
2: अभी अगर उनका मन नहीं मानता है तो एक तत्व जैसे अभी आईपीएल का प्रोडक्ट है, दो खाद इस टाइम पे गन्ने के पोषण के लिए बहुत बढ़िया है, पॉलीहेलाइट 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, या एक बाजार में आता है पोटेशियम सोनाइट के नाम से, किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो उसको जो है 15 किलो से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई बधाई के बाद अपनी उसकी लाइनों में इस्तेमाल

0: करते हैं तो उससे गन्ने की वृद्धि भी होगी, मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ने का वजन भी बढ़ेगा।
1: डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है, देखते हैं किस किसान का है। हेलो हेलो जी। नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, बलवान बोल रहे हैं कलम डिस्ट्रिक्ट से।
1: बलवान?
2: हाँ जी
1: हाँ, बता भाई बलवान क्या सवाल है तेरा?
2: मेरा सवाल है जी, मैं किचन गार्डन में लाना जी, तू किस्म बताओ जो ही।
1: अच्छा, अपने घर की ताई चाहिए?
2: हाँ घर दोगा चाहिए जी।
1: चलो कितनी जगह है वो फिर उसके हिसाब से डॉक्टर साहब बता देंगे।
2: वैसे आधे कनाल है जी।
0: अच्छा आधा कनाल है तो सब आप कैथल से हैं तो आप करनाल से जो आप अपने किचन गार्डन पर्पज के लिए वैरायटी ले सकते हैं तो अभी उस पर्पज के लिए आपको जो वैरायटी है वहां पे दो तीन वैरायटी मिल जाएंगी आपको CO 18022 उसकी आंख मिलेंगी आपको। 1 अक्टूबर से बीज मिलना शुरू हो जाएगा वहां पे आपको, और 17018 16030 कोई भी तीनों किस्मों में से कोई भी आप किस्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: ठीक है जी,
0: ये वैरायटी सामान्य बिजाई की है, सामान्य कैटेगरी में आती हैं और अच्छी हैं, आपको गन्ना चूसने के लिए खाने के लिए चाहिए, उस पर्पज के किचन गार्डन में चाहिए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: कद बो सके डॉक्टर साहब ये बता दो,
0: 15 सितंबर के बाद जो है, जैसे मैं कोशिश करूंगा इन्हें कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, और इसमें खाद पाद यूज खाद फूड या के
0: खाद में आप इसमें किचन गार्डन के तो जैविक का प्रयोग करें, गोबर की सड़ी खड़ी खाद का इस्तेमाल करें, ठीक है ना?
2: हाँ जी, गोबर की, ठीक है जी।
0: और ऊपर से हल्की फुल्की जरूरत होगी तो फिर आपको बता देंगे, बाकी इसमें इस टाइम पे गोबर की खाद डालें अपने किचन गार्डन के लिए। आप जैविक
1: तैयारी करोगे ना, जब उस जगह की खेत की तैयारी करोगे आप तो उसमें सड़ी हुई गोबर की पर सड़ी हुई होनी चाहिए।
2: खाद है जी मेरे पास, खड्डा की खाद है, वह गेट दूंगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, वही करना। ठीक है बलवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका।
1: राम राम भाई। डॉक्टर साहब, शरदकालीन जो गन्ने की बुआई है उसकी चर्चा हुई थी लेकिन वो पूरी हुई नहीं है क्योंकि समय नजदीकी है, तो जो किसान शरदकालीन समय में गन्ना लगाना चाह रहा है तो किस तरह से आपने खेत की तैयारी तो बताई है पर एक बार दोबारा आप बताओ कि किस तरह से खेत की तैयारी करें, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म अनुकूल रहेगी, ज्यादा पैदावार मिलेगी, तो इसके बारे में चर्चा आप थोड़ी सी करते हैं।
0: देखिए ऐसा है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, खेत की तैयारी कहते हैं गहरी जुताई करनी है खेत की, है कि नहीं
1: जी?
0: और साथ ही साथ जो आपने खेत की तैयारी करने के बाद में दो चीजों, गन्ने का मेथड का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर किसान भाई अपना उत्पादन अच्छा चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, किसी भी चाहे हम पूर्वांचल की बात करें
1: जी,
0: ट्रेंच मेथड से कम गन्ने की जो वो है अक्टूबर का जो महीना है इसमें अगर ट्रेंच के साथ अंतिम फसल के रूप में दूसरी भी फसल लेंगे तो ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की खेती करेंगे तो उससे उत्पादन पे कम से कम 20 से 25% की पैदावार पे फर्क पड़ेगा।
1: आपने सह फसलीकरण की बात की है डॉक्टर साहब, तो जो गन्ने की लाइन है दो उनके बीच में कितना अंतर छोड़ना पड़ेगा?
0: अब डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे जो इनकी अनुसूचित वेरायटी है ट्रेंच विधि में कौन कौन सी किस्में हैं, कितने पे गैप करके हम करें, 5 फीट पे हम करें,
1: क्योंकि जगह तो दूसरी फसल के लिए चाहिएगी ना डॉक्टर साहब, तो क्या कितनी दूरी बना के रखनी पड़ेगी?
3: अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि किसान भाइयों का इस शरदकाल का समय आने वाला है, तो आप देखो किसान भाई इस समय वाइड डिस्टेंस पे ही जा रहा है क्योंकि जितना अगर वाइड डिस्टेंस से मतलब वाइड डिस्टेंस का मतलब कि दूरी जितना ही बढ़ाएंगे गन्ने की मोटाई निश्चित रूप से बढ़ती है क्योंकि प्रकाश अच्छे तरीके से सारे गन्नों को मिलेगा, तो कम से कम 4 फीट रखने की बिल्कुल जरूरत है। 4 फीट आप रखिए, 4 फीट पे गन्ने की बुआई कीजिए। किस्मों का चयन निश्चित रूप से जितना डॉक्टर साहब ने बताया, कोसा 18231 ले सकते हैं, कोसा 19231 ले सकते हैं, कोसा 17231 ले सकते हैं, कोसा 13235 ले सकते हैं, या कोयम्बटूर की को 01118 ले सकते हैं, को 98014 है, लखनऊ की अनुशंसित वैरायटी जो है कोलक 14201 है, कोलक 16201 है। जल प्लावित क्षेत्र है, यदि कम जल प्लावित क्षेत्र है वहां पे अगेती फसल लगाना चाहते हैं तो कोसा 13231 का चयन कर सकते हैं, कोसा 10239 का चयन कर सकते हैं, या यूपी 05125। ये तीनों किस्में जल प्लावित क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा उपज देने की क्षमता रखती है। इन वैरायटी किस्मों का चयन करके 4 फीट की दूरी पे आप गन्ना बोएं। अगर बीच में सह फसल ही चुकी, शरद काल में सह फसल लगाना है तो निश्चित रूप से सह फसल के साथ जाना चाहिए। सह फसल में सबसे अच्छा पैदावार सर फसल के रूप में दूसरी क्रॉप की भी ले सकते हैं।

0: और मेन क्रॉप आपके गन्ने से भी ले सकते हैं, तो आलू गोभी भी बुआई कर सकते हैं, मूली साग सब्जी में मूली ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, गाजर की खेती कर सकते हैं, अलसी फ्रेंच बीन जितनी भी आपकी साग सब्जी है उन सारी लहसुन भी ले सकते हैं। तो इस तरह
1: कम अवधि वाली जितनी फसल है
0: कम अवधि में जो कि 3 से 4 माह में ये पक के कट जाती है, तो गन्ने पे किसी भी तरह के विषम प्रभाव नहीं पड़ता और आपकी गन्ने की पैदावार भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती और अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है।
1: तो सह फसली अगर आपने लेनी है गन्ने के साथ दूसरी फसल लेनी है, अपना मुनाफा बढ़ाना है किसान बहनों भाइयों, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कम से कम 4 फीट का आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और उसमें आप बीच में जो आलू बो दो
2: अंतर फसल के रूप में साग सब्जी में, जैसे आलू हो गया आपके, अन्य साग सब्जी फसल कोई भी आप उसमें ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब अब सवाल ये उठता है, दो फसल ले रहे हैं हम, गन्ना तो है ही, दूसरी फसल और उसमें ले रहे हैं हम खेत में, तो जो खाद है चाहे आप जैविक खाद की बात कर लो या रासायनिक खाद की बात कर लो, तो उनकी मात्रा बराबर ही रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी?
2: देखिए अभी डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। 100 ये जो हमारे ये जो अक्टूबर वाली जो प्लांटिंग होती है, ऑटम प्लांटिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारी खाद की रिकमेंडेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है स्प्रिंग प्लांटिंग के बनस्पत, तो उसमें विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे
1: छोटे शब्दों में बता दो।
0: बिल्कुल, आप अभी शरद काल में जो भी गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम का यूज करना चाहिए। तो इस अनुशंसित रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम शरद काल गन्ने की बुआई किया जा सकता है।
1: डॉक्टर सुजीत जी, डॉक्टर सरोही जी, आप कार्यक्रम में आए, हमारे किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान किया, बहुत अच्छी जानकारी दी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद सर।
3: अभी सुन रहे थे इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जिसका विषय था गन्ना फसल में रोग नियंत्रण पर। हमारे सारे किसानों ने बहुत अच्छे कॉल भी आए, उन्होंने जानकारी भी अपने लिए, और हमारे हमारे हमारे जो नरेश पराशर साहब ने इसका संचालन किया, और हमारे डॉक्टर साहब सुरजीत प्रताप सिंह जो वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान संस्थान साजापुर से थे, डॉक्टर DS सरोही जो विशिष्ट गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से थे, बहुत अच्छे और बहुत तरीके से सलीके से इन फसलों पर जो प्रश्न हमारे पूछे गए उनका उनका जवाब दिया। और अब सुन लेते हैं एक स्पॉट।
4: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
5: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
6: इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
3: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक देशिक नंदनलाल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कुछ गजल सुनने का, तो लीजिए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गजल।

0: श्रोताओं, गजलों का सफर यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ।

0: लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलेंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। इसके अंतर्गत प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा और राजघाट डिपो पर एक पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: इन बस सेवाओं के माध्यम से नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरकेपुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षणिक और संस्थागत केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा का शुभारंभ दिल्ली से हरियाणा के प्रमुख शहरों को स्वच्छ और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मार्ग पर 5 इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बसें संचालित होंगी और दोनों दशाओं में प्रतिदिन कुल 10-10 यात्राएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण ऐसा सार्वजनिक परिवहन तंत्र तैयार करना है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को यह लेडीज स्पेशल बस सेवा एक विशेष उपहार है। श्री सिंह ने कहा कि इन सभी पहलों के माध्यम से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए खास बसें शुरू की गई हैं, जिनमें अभी 56 बसें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी। यह नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब इस महीने की 24 तारीख तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं वे 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि सदन में CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के समय हुए सभी घोटालों की जांच चल रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि CAG की सभी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
2: 19 CAG रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब CAG रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसी अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है, एजेंसी काम कर रही है।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया कि पेंशन

0: की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने देवी लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जेजे कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि जो लोग दिनभर काम करते हैं और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिलता, उनके लिए ये एक उपयोगी सुविधा होगी।
1: जो लोग दिन में 2 बार एक ही बार बना खाना खाते हैं, उनके लिए एक उपयोगी साधन होगा और ये हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जिसमें हमने दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जीवन देने का वादा किया था, उनको वहीं पर पक्के मकान भी देने का काम चालू हो गया है, भोजन देने का काम शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
0: श्री आशीष सूद ने आज एक जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चा कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों के डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मेडिकल शिविर में अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन 2 लोगों पर हमला किया था। हमले में 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 250 कम गुणवत्ता वाली एल्यूमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। यह कार्रवाई अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत कथित गैर अनुपालन की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें, बल्कि उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी

0: करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ग साइड तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा डीएसएस कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में तैनात किया है। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, व्यापार कर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुख्य मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर क्षमा करें, कृपया इसको दोबारा सुन लें। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे पहले छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नई दिल्ली के टिकरी कलां के एक सीएनजी पंप पर आज दोपहर एक ट्रक में धमाका हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दोपहर 3:37 पर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेख टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ। 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। तारीखें आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ अपने मनपसंद गीत सुनने का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे गीत लाई हूँ जो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आशा है कि आप सभी को भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म में अनवर और लता मंगेशकर की आवाज, और लीजिए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों आप सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने।

साथियों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गाना नहीं, ये उन तमाम दिलों की आवाज है जिन्होंने कभी किसी को चुपके से चाहा है, किसी का इंतजार किया और फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे प्यार है।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म जुनून का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव ने। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम भूल सकते हैं, लेकिन पहली मोहब्बत की खुशबू, पहली मुलाकात की धड़कन और किसी अपने की आवाज में छुपी वो मिठास शायद कोई कभी नहीं भूलता।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का ये गीत, जिसे स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती है। अगर आपको सच्चा प्यार है तो इंसान दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहता है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लावारिस से आशा भोसले और किशोर कुमार को, और इसी गीत के साथ आज का हमारा ये गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ मैं सुजाता शुक्ला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। भारत ने पिछले वर्षों में विज्ञान अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजिटल तकनीक से लेकर कृषि तक और क्वांटम कम्प्यूटिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने देश की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के बारे में। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा। इसके साथ भारत इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए और सल्फर सहित विभिन्न तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। फरवरी 2025 में इसके सूट उपकरण ने एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर के निचले वायुमंडल के अभूतपूर्व तस्वीरें प्राप्त की। 2025 में स्पाडेक्स मिशन ने दो उपग्रहों की अंतरिक्ष में ऑटोनोमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तथा उनके बीच पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन किया। इसके साथ भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, सैटेलाइट सर्विसिंग और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष विज्ञान केवल चंद्रमा और ग्रहों तक सीमित नहीं है। नाविक जैसी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली परिवहन, समुद्री गतिविधियों, आपदा प्रबंधन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में उपयोगी है। मौसम पूर्वानुमान, कृषि संचार, आपदा चेतावनी और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने 2025 में श्रीहरिकोटा से अपना सौवां प्रक्षेपण भी पूरा किया। साथ ही नासा के साथ संयुक्त निसार मिशन भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य और बायोटेक्नोलॉजी में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में विकसित और निर्मित वैक्सीन ने देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी क्षमता को दुनिया के सामने रखा। आज भी भारतीय वैज्ञानिक जीनोमिक डायग्नोस्टिक, ड्रग डिस्कवरी, जीन एडिटिंग और प्रिसीजन मेडिसिन जैसी क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैंसर रिसर्च, नई दवाओं और रोगों की शीघ्र पहचान के लिए भी किया जा रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी भी तेजी से विस्तारित हुई है। सरकारी आकलन के अनुसार लगभग 12 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी करीब $10 लाख अरब से बढ़कर लगभग $119 अरब तक पहुँची है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का महत्व अधिक है। आज रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सैटेलाइट इमेजरी, सॉइल टेस्टिंग, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती को अधिक उत्पादक और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सैटेलाइट डेटा से फसल की स्थिति, सूखे और जल संसाधनों की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन से खेतों में फसल निरीक्षण और टारगेटेड स्प्रेइंग भी संभव हो रही है। इससे किसान को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन, बेहतर निर्णय और मौसम के जोखिमों से निपटने में सहायता मिल सकती है। डिजिटल तकनीक ने भारत में सेवाओं के स्वरूप को बदल दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान और UPI ने करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय लेन देन को सरल बनाया है। आज मोबाइल फोन से कुछ ही क्षणों में भुगतान किया जा सकता है। अगला बड़ा क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। भारत में भारतीय भाषाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप AI विकसित करने में जोर दिया जा रहा है। भारत जेन जैसी पहली मल्टी लिंगुअल मल्टी मॉडल AI की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है। AI का उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, यातायात, भाषा अनुवाद और वैज्ञानिक अनुसंधान में बढ़ रहा है। अगली क्रांतिकारी तकनीकों में क्वांटम टेक्नोलॉजी का नाम प्रमुख है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल्स के क्षेत्र में अनुसंधान को गति दी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य में अत्यंत जटिल गणनाओं, सुरक्षित संचार, नेविगेशन, मेडिकल सेंसिंग और साइंटिफिक सिमुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेमीकंडक्टर तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आज मोबाइल फोन से लेकर ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट और मेडिकल इक्विपमेंट तक लगभग हर उपकरण के पीछे सेमीकंडक्टर चिप होती है। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत बड़े स्तर पर निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने चिप डिजाइन में महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की है। उदाहरण के तौर पर इसरो और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष उपयोग के लिए 32 बिट विक्रम प्रोसेसर विकसित किया है। इसके अलावा 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर नाविक और जीएनएसएस सिग्नल के लिए इंडिजिनस बेसबैंड एएसआईसी विकसित किया गया है। यह उपलब्धियां भारत की स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच विज्ञान का एक बड़ा लक्ष्य है स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा। भारत में सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल्स, एडवांस बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज जैसी तकनीकों पर अनुसंधान और विकास हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। विज्ञान का सीधा संबंध लोगों की सुरक्षा से भी है। आज भारत में वेदर रडार, सैटेलाइट्स, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी पहले से बेहतर हुई है। चक्रवात, भारी वर्षा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पहले चेतावनी मिलने से प्रशासन और आम जनता को तैयारी के लिए अधिक समय मिलता है। सरकारी आकलन के अनुसार देश में वेदर रडार नेटवर्क के विस्तार से फोरकास्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत की वैज्ञानिक दृष्टि अब समुद्र की गहराइयों तक भी

पहुंच रही है। डीप ओशन मिशन के माध्यम से डीप सी एक्सप्लोरेशन, मरीन बायोडायवर्सिटी, समुद्री संसाधनों और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। समुद्र विज्ञान का महत्व केवल संसाधनों तक सीमित नहीं है। समुद्र जलवायु, मौसम, मत्स्य संसाधन और तटीय जीवन को प्रभावित करता है। विज्ञान से स्टार्टअप तक, भारत में विज्ञान और इनोवेशन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब रिसर्च लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज से निकलकर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज तक पहुंच रही हैं। विशेष रूप से स्पेस सेक्टर इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में लगभग एक से बढ़कर फरवरी 2026 तक 400 से अधिक हो गई है। यह बदलाव बताता है कि भारतीय युवा केवल टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी के निर्माता भी बन रहे हैं। श्रोताओं, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसमें विज्ञान प्रयोगशाला से निकलकर किसान, विद्यार्थी, मरीज, उद्यमी और आम नागरिकों के जीवन तक पहुंच रहा है। चंद्रयान से लेकर सेमीकंडक्टर तक, वैक्सीन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, यूपीआई से लेकर एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, भारत का वैज्ञानिक विकास अब ज्ञान, नवाचार, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण को एक साथ जोड़ रहा है। आने वाले समय में ज्ञानयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड एडवांस एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्र भारत को एक विकसित और जन आधारित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही है विज्ञान की शक्ति, नई खोज, नई तकनीक और बेहतर भविष्य। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं।

0: डॉक्टर संजय वत्स।
1: हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, शोध और समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक, महान शिक्षाविद और दूरदर्शी विचारक डॉक्टर एसआर रंगनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूरदर्शी विचारों से भारत में पुस्तकालय विज्ञान को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने पुस्तकालय को केवल पुस्तकों के संग्रह के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे ज्ञान के प्रसार, शिक्षा, शोध और समाज के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र माना। यदि हम पुस्तकालय के इतिहास पर एक नजर डालें तो पाएंगे कि पुस्तकालय मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही विकसित हुआ है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों के साथ ही उनके केंद्र में पुस्तकालय केंद्रित रहा। नालंदा में देश विदेश से विद्यार्थी और विद्वान यहाँ पर पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिए आते रहे हैं। समय के साथ साथ हस्तलिखित पांडुलिपियों से मुद्रित पुस्तकों और फिर आधुनिक पुस्तकालयों तक की यात्रा हुई। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालयों ने शिक्षा और शोध को आगे बढ़ाने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। पुस्तकालयों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी लोगों में शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक चेतना को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात पुस्तकालय का इतिहास केवल पुस्तकों का इतिहास नहीं है, यह वास्तव में मानव और सभ्यता के विकास का इतिहास है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पुस्तकालय हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनी हुई है। मोबाइल, इंटरनेट, ई पुस्तकें, ई जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल रिपोजिटरी ने ज्ञान तक पहुंच को अत्यंत आसान बना दिया है। एआई आधारित प्रणालियां बड़ी मात्रा में सूचनाओं को व्यवस्थित करने और दस्तावेजों का वर्गीकरण करने के आधार पर सामग्री खोजने और उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। एआई पावर्ड स्पीच रिकमेंडेशन सिस्टम, चैट बॉक्स, वॉइस सर्च, ऑटोमेटेड मेटाडाटा जनरेशन, सिस्टमेटिक रिसर्च जैसी तकनीक पुस्तकालय सेवाओं को अत्यधिक तेज और उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रित बनाती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई शोधार्थी किसी विषय पर जानकारी चाहता है, भविष्य के पुस्तकालय में वह केवल कुछ शब्द टाइप नहीं करेगा बल्कि एक प्रश्न पूछेगा और एआई प्रणाली उसके लिए संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की पहचान कर सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय इन्फॉर्मेशन स्टोरेज से इंटेलिजेंट नॉलेज सेंटर के रूप में बढ़ रहे हैं। भविष्य का पुस्तकालय किस प्रकार होगा, अब वो डिजिटल लाइब्रेरी से इंटेलिजेंट लाइब्रेरी तक का सफर तय कर रहा है। पुस्तकालयों का भविष्य डिजिटल होने तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में हम ऐसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लाइब्रेरीज देख सकते हैं जहां भौतिक और डिजिटल संसाधन एक साथ कार्य करेंगे। भविष्य का पुस्तकालय कैसा होगा जहां आप 24 आवर्स ज्ञान तक पहुंच बना सकेंगे, एआई आधारित और अनुशंसा सेवाएं प्रदान करेंगे, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराएगा, डिजिटल और भौतिक संग्रह को एकीकृत करेगा, शोधार्थियों को रिसर्च सपोर्ट प्रदान करेगा और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को शोधार्थी तक पहुंचाने में मदद करेगा। डिजिटल प्रिजर्वेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, दस्तावेज और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। यहां ओपन एक्सेस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, यही आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, जो कि है भी। लेकिन क्या तकनीक पुस्तकालयों की जगह लेगी, यह एक स्वाभाविक प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। आज किसी भी शोधार्थी या विद्यार्थी को किसी जानकारी के लिए केवल पुस्तकालयों की अलमारी तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वह घर बैठे दुनिया के विभिन्न पुस्तकालयों और सूचना संसाधनों तक पहुंच सकता है। ओपन ऑनलाइन कैटलॉग, डिजिटल लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, ई बुक्स और ई जर्नल आज आधुनिक पुस्तकालय सेवाओं के महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब इंटरनेट इतनी जल्दी और इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकता है तो फिर पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों? हाँ, ये प्रश्न सभी के मन में स्वाभाविक रूप से उठना भी चाहिए। लेकिन सूचना और सही ज्ञान में अंतर क्या है? इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन हर व्यक्ति जानकारी की विश्वसनीयता को कैसे प्रमाणित करे, यह केवल और केवल पुस्तकालय अध्यक्ष ही बता सकता है। आज हमारे सामने फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष केवल एक पुस्तकों का संरक्षक नहीं है, वह इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, नॉलेज मैनेजर, रिसर्च सपोर्टर, डिजिटल क्यूरेटर और इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक्सपर्ट है। वह विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को सही सूचना खोजने, उसका मूल्यांकन करने और उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने में सहायता करता है। इतिहास से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक पुस्तकालय की यात्रा वास्तव में ज्ञान की यात्रा है।
0: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज

0: 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रूपये की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ट साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट में अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेकर स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रूपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यो के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हिल स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है। ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षण

0: तीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आधार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। नवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाये। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लड़कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रूपये पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. U.S. Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
5: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamadi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
6: Total 13,041 crore rupees ke projects are cabinet mein approved kiye.
4: The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations, and strengthen the transport of key commodities including coal and iron. Mr. Vaishnav informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard.
5: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of 3,591 crore rupees.
6: Ka investment is now.
4: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor.
7: We need a fixed policy for the different type of tunnels, bridges and road projects, which is a permanent policy for technical and financial qualification is very, very important. Other important thing is we are very much interested in the government about financial audit. But now after 12 years of my experience in this ministry, I am coming to conclusion that the performance audit is more important than financial audit. Aapko aap contractorship karte ho, paise kamane chahiye, par quality of construction achhi rahe.
4: Civil Aviation Minister K. Ramohan Naidu has said the government aims to triple the country's air cargo volume by 2030. Mr. Naidu was speaking at the inauguration of new sectors under the Transcargo Security Hold Area to enhance air cargo connectivity from Delhi Airport today.
8: India is strategically located in such an advantageous place that we are rightly placed to become the cargo hub of the whole world. We have started hub and spoke operations where we are bringing in people from across the country, different airports, doing immigration there, connecting them through Delhi. Now since we have opened up on the air cargo network also, we approximate that 3.5 million metric tons air cargo that we have in the country today. Our target is by 2030, we want to triple it by almost 10 million metric tons.
4: Union Minister of Education Prahlad Joshi today met with senior officials of the Department of Higher Education to review the implementation of the initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive examinations. The program builds on the announcement made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address to create a free online coaching ecosystem to support students. U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar.
9: This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, and we look forward to building this relationship forward. New Delhi, the Chief Minister here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe, and so we will be looking at if the travel warning is recommended by the United States should be downgraded.
4: Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-U.S. relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. President Draupadi Murmu has called for accurate, credible and citizen-centric government communication in the social media era. She said this during her interaction with the officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service at Rashtrapati Bhavan. She said the rapidly changing landscape of technology, media, economics and public policy requires public servants to continuously upgrade their knowledge and skills.
10: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people. In today's data-driven world, the quality of public policy depends greatly on the availability of accurate, timely and credible evidence.
4: The Supreme Court today stressed the need to institutionalize the NTA with secure infrastructure and robust systems to prevent future paper leaks. While hearing pleas concerning the NEET UG 2026 paper leak, the court directed the Secretary for the Union Ministry of Education to file an affidavit setting out the steps being taken to implement the Radhakrishnan Committee's recommendations. Hearing another case, the Apex Court today sought responses from the Centre and the National Commission for Protection of Child Rights on a PIL seeking the establishment of a national DNA and biometric identification system for missing and rescued children to facilitate scientific identification, tracing and reunification with their families. In Jharkhand, the 26-day-long student agitation over irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations has been called off following the state government's decision to cancel several recruitment exams and order investigations into the issue. However, the government's decision has triggered protests by candidates who were already appointed through the cancelled examinations. More from our correspondent.
11: The state government issued notifications cancelling 22 examinations and ordering investigations into irregularities in 45 examinations, including JPSC Civil Services and JSSC CGL. The students have given the government 60 days to conduct the investigations, warning that they will resume their agitation if the probe is found to be unfair or inadequate. Meanwhile, the government's decision has affected the appointments of 2,628 candidates, prompting selected JSSC CGL employees to stage protests at the Dharpan Secretariat and Project Bhavan, raising concerns over their jobs in future. The protesting employees said they had cleared the examination through the prescribed process and argued that if irregularities occurred, action should be taken against those responsible rather than cancelling the careers of candidates who were selected and appointed. Navish Rahman, Akashwani News, Rajkot.
4: Union Minister Kiran Rijiju has termed as false the claim that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiju said photos and videos from Bangladesh were being used to falsely portray Chinese entry into Arunachal Pradesh. He said such claims could demoralize army personnel guarding the border and create unnecessary confusion. The minister said the India-China border issue is a serious matter and appealed to people not to make false or unverified claims on such a sensitive issue. A court in West Bengal's Nodia district has ordered the issuance of an arrest warrant against Trinamool Congress MP Mahua Moitro for failing to appear before it in an alleged hate speech case. The Krishnanagar court also directed that a report on the execution of the warrant be submitted by the 28th of August. The flood situation in northern Odisha remains a major concern, with the Suvarnarekha River rising rapidly in Baleswar and posing a serious flood threat. Our correspondent has the details.
12: The rising Suvarnarekha has emerged as the latest threat to flood hit northern Odisha. Water levels at Rajghat in Baleswar are rising following heavy rainfall in the Jharkhand catchment and substantial discharge from the Guludihi barrage. Authorities have warned of fresh flooding in low-lying areas of Jaleswar, Bhogarai, Baliapal and Basta. Meanwhile, the flood situation in Bhadrak, Kendrapada and Jajpur districts continues to remain grim as flood waters are yet to recede from a large number of villages. Prakash Das for Akash Vani News, Bhubaneswar.
4: The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall over Chhattisgarh, eastern Madhya Pradesh and western Uttar Pradesh for tomorrow. Iran's Armed Forces Chief of Staff Major General Ali Abdullahi has warned countries along the southern shores of the Persian Gulf against assisting or facilitating U.S. military forces, saying Tehran is closely monitoring activity at regional military bases. Mr. Abdullahi said the presence and deployment of U.S. military aircraft at these bases could not take place without the knowledge of the host countries. U.S. President Donald Trump, meanwhile, said no talks with Iran were underway or scheduled, while the Pentagon is evaluating its military footprint in West Asia with a view to reducing its presence. On to sports. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch rivals Pakistan in the final Pool D encounter of Men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands today to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165-run victory over hosts Sri Lanka in the first test in Gala today to take a 1-0 lead in the two-match series. Sri Lanka, chasing 372 for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sitar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. The 24-year-old also became the youngest Indian spinner to take 10 wickets in an overseas test. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. U.S. Ambassador Sergio Gore hails steps taken by centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of Men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. That was all in the news at 9. Good night.

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं हरिहरन। समाप्त कीजिए उनकी गाई हुई चंद गैर फिल्मी गजलें।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे हरिहरन की गई चंद गैर फिल्मी गजलों से। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शब के 9:45 पर चाहते हैं अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। मरकजी काबीना ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। उसने 4 रियासतों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहरा 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जाब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गौर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदामात की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती राबते पर जोर दिया है। ईरान ने अमरीकी फौजी कार्रवाईयों में सहूलत के खिलाफ खलीजी ममालिक को खबरदार किया है। नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मरतबा 10 विकेट हासिल किये। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु

और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे। मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांव में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल राबता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णो ने मुतला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहरा 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के चौथे एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग से मुतालिक मौजूदा जाब्तों का जायजा लेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और यह अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज है। हिमालयी खित्तों में तोड़ खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेर जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंज भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तिहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तिहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। मगरबी बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने मुबैना नफरत आमेज तकरीर के मामले के सिलसिले में अदालत के सामने पेश न होने पर तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महवा मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने इस बात का भी हुक्म दिया कि वारंट जारी करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक दाखिल की जाए। मोइत्रा के खिलाफ मुबैना तौर पर खवातीन की तौहीन और नफरत आमेज तकरीर करने का मामला है। अदालत ने इससे पहले इस मामले में उन्हें समन जारी किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गौर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा है कि मरकज और खित्ते की हुकूमतों ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जनाब गौर जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दिया और कहा कि फरीकैन ने मुस्तकबिल से मुतालिक अहम इकदाम पर तबादला ख्याल किया। जनाब गौर ने कहा कि हालांकि आज कोई रस्मी ऐलान नहीं किया जा सकता, ताहम सफर से मुतालिक एडवाइजरी में कमी लानी चाहिए क्योंकि नई दिल्ली और मकामी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक सर्वेंट्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मालूमात फराहम करने और शहरियों के साथ जुड़ने के लिए न करें बल्कि इसे उनकी शिकायतों को सुनने, समझने और कार्रवाई करने के लिए भी इस्तेमाल करें। सदर जमहूरिया ने जोर देते हुए कहा कि जब मालूमात तेजी से फैलती हैं तो इसे हमेशा मुस्तनद ज़राए के जरिए दुरुस्तगी, मोतबरियत और अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के ऑफिसर ट्रेनीज से मुलाकात के दौरान यह बात कही। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के रोल पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इसने शहरियों के साथ हुकूमत के रबते को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि मौसर बातचीत और मोतबर मालूमात दरख्शां और जवाबदेह जमहूरियत के अहम सुतून हैं। उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो अपने फैसलों में मुनसिफाना रहें।

0: अपने तर्ज अमल में तहम्मुल बरतें और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखें। ईरानी दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खलीज फारिस के जनूबी साहिल के ममालिक को अमरीकी अफवाज की मदद करने से खबरदार किया है और कहा है कि तेहरान मकामी फौजी अड्डों की सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने कहा कि इन अड्डों पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों की मौजूदगी और तैनाती इन मुल्कों की मालूमात के बगैर नहीं हो सकती। जनाब अब्दुल्लाही का इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब ईरान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तवील कशीदगी के दौरान खित्ते में अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर निगरानी जारी रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने यह इंतबाह मुजाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन और तेहरान के मुतजाद बयानात के दौरान दिया है। 60 रोजा मुफाहमतनामा किसी वसी तर मुहदे में तब्दील नहीं हो सका जिससे सिफारती कोशिशें मजीद पेचीदगी का शिकार हो गई हैं। हॉकी में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स टेल्फेंड में जारी एफआईएच आलमी कप में आज इस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। शिकस्त के साथ ग्रुप मरहले में पाकिस्तान की मुहिम खत्म हो गई। मैच का दूसरा क्वार्टर इंतहाई दिलचस्प रहा जहां दोनों टीमों ने 9 मिनट के दौरान 4 गोल किए। आज गोल में पहले टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका पर 165 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था और लंच के बाद उसकी पूरी टीम 206 रन पर आउट हो गई। भारत के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानुस अख्तर ने भारत की जीत में इंतहाई अहम रोल अदा किया और उन्होंने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट हासिल किए और पहली मरतबा टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी काबीना ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। उसने 4 रियासतों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहरा 22 को वसअत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जेरी ठेकेदारी से मुतालिक जब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जिले इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। और नीदरलैंड्स में मर्दों के एफआईएच हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज सोनी आईआर और डीडी फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें हो जाएं आपकी सेहत के हवाले से। मेजबान नईम का आदाब। आज के प्रोग्राम में कैसे फल का जिक्र करना चाहेंगे जो न सिर्फ जायके में उम्दा है बेहतर है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। हम बात कर रहे हैं नाशपाती की जिसे इंग्लिश में पेयर पिक कहा जाता है और इसमें गजाइत बहुत ज्यादा है और मीठा होता है और जायकेदार तो होता ही है। हिंदी में नाशपाती संस्कृत में अमृत फल भी कहा जाता है और जिसका मतलब है अमर फल। ये मीठा रसीला और पानी से भरपूर फल होता है और इसे निजामे हाजमा के लिए उसको बेहतर करने के लिए माना जाता है और जिसमें पानी की कमी को दूर करने यानी जिस्म को हाइड्रेट करने और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन माना जाता है इस फल को। और ये जिस्म को ठंडक देता है और जिस्म के अंदर अगर सोजिश है और इसके अलावा अगर मेदे में जलन है तो उसे राहत देता है। चलिए पहले इसके गजाई अज्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें तकरीबन 100 ग्राम अगर नाशपाती हम लेते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं कितने हरारे होते हैं। 57 किलो कैलोरीज इसमें होती हैं तकरीबन और कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो 15.2 ग्राम और प्रोटीन 0.36 ग्राम। फाइबर्स की बात कर लेते हैं 3.1 ग्राम फाइबर होता है इसमें और कोलेस्ट्रॉल जी हाँ सबसे खुशी की बात यह दोस्तों कि इसमें 0 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है और जाहिर सी बात है ये सुनने के बाद उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई होगी। जो साहब ये चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, चर्बी ना बढ़े और हम देखने में स्लिम ट्रिम लगे। विटामिन्स की बात कर लेते हैं, ए भी इसमें होता है, B6 भी होता है, 0.0

0: 3 मिलीग्राम और विटामिन सी 4.3 मिलीग्राम, और सोडियम की बात की जाए तो बस 1 मिलीग्राम सोडियम 100 ग्राम तकरीबन नाशपाती में होता है। टोटल फैट की बात कर लेते हैं, चर्बी की बात कर लेते हैं, बहुत कम है जनाब, 0.14 ग्राम। अब कितनी उमदा बात है कि जायका भी है और सेहत के फायदे भी हैं, तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। और नाशपाती में फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, खासतौर पर डाइट्री फाइबर्स की अगर बात की जाए, और ऐसे फाइबर्स जो घुल नहीं सकते, इनसॉल्यूबल होते हैं और वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, और जो बरास को बाहर निकालने में आसानी करती है, यानी कब्ज से राहत देते हैं और आपका निजाम हाजमा दुरुस्त रहता है, और नरम मुलायम होता है ये, और जो इसी वजह से जो आंतों में कई बार जो इरिटेशन एक तरह से हो जाती है उसको ये दूर करता है, और आंतों में अगर सूजन है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोलाइटिस, वर्म हो जाता है आंतों में, तो उसको भी ये दूर करने में मुआविन साबित होता है। और जिस्म को जैसा हमने कहा कि पानी की कमी को दूर करता है, बेहतरीन ये कुदरत का तरीका है नाशपाती, अगर जिसमें आपके पानी की कमी हो गई किसी भी वजह से, इसके इस्तेमाल से पानी की कमी दूर हो जाती है, जिस्म आपका जो हाइड्रेट रहता है, खासतौर पर गर्मी के मौसम में, चूंकि इसी मौसम में ये आपको फल बाजार में आसानी से दस्तियाब भी हो जाता है और दिखाई देता है। और कुछ लोग जो शिकायत करते हैं कि उनको जलन हो रही है मेदे में, एसिडिटी की शिकायत होती है, तो वो अगर नाशपाती का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनको राहत मिलेगी। और पेशाब की कोई परेशानी है, दुश्वारी है, जलन हो या फिर रुक रुक कराता हो, तो ऐसे में नाशपाती का इस्तेमाल जो है वो मुआविन साबित हो सकता है, चूंकि डायरेटिक के तौर पे काम करती है, मुदरे बॉल ये इसमें सिफात जो है वो पाई जाती हैं, और दिल की परेशानियों के लिए बहुत उम्दा है ये फल, चूंकि इसमें कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं मिसाल के तौर पे पेक्टिन, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने और लिपिड मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होता है। वजन को कंट्रोल इसने करता है, कैलोरीज कम होती है, फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, ये भूख को कम करता है, तो इसलिए जो साहिबान ये चाहते हैं कि उनका वजन कम हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में भी ये मुआविन साबित होता है। और रूखी अगर आपकी जिल्द है, मुहासे हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है आपके खून को साफ करता है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को, और आपका चेहरा चमकदार बनाता है, और मुहासों से दानों से निजात दिलाता है, चूंकि वो विटामिन सी भी इसमें मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और कोलेजन बनाने में मदद करती है नाशपाती, तो जिससे आपकी जिल्द चमकदार रहती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम है, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत, तो उसमें भी आप नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुखार के बाद की जो कमजोरी महसूस होती है, तो वो उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो उससे राहत मिलती है, कमजोरी दूर हो जाती है। और कुछ अफराद ऐसे जिनको किसी भी फल से अगर कोई परेशानी या दुश्वारी होती, कोई एलर्जी है, तो फिर अपने मुआविन से रुजू करें, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें फायदे ही फायदे हैं, नुकसान ना के बराबर हैं। तो मशवरे सेहत के सिलसिले में आज बस इतना ही। मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत अभी आप कुछ बातें सुन रहे थे अपनी सेहत के हवाले से, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशात जारी हैं, और अब आपको सुनवाते हैं मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्रा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। एनी अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्लोजिंग ऑक्शन सेशन विल बी डेल्ट विद स्टर्नली, says SEBI's chairman Tohinkant Pandey. In global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़ककर 76,910 पर पहुंच गया। निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आधा प्रतिशत नीचे आ गया। लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई, वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौथरपा दिखवाली देखी गई।
0: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6% and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3% and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced and 231 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रूपये पर बंद हुआ। उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई, वहीं निफ्टी भी कारोबारी सातवें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ। क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?

0: पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री पांडे ने कहा कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीडब्ल्यूएपी व्यवस्था की तुलना में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के तहत संभावित हेरफेर का पता लगाना सेबी के लिए अधिक आसान है। उन्होंने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और उन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक सीएएस में सेबी को किसी भी तरह की हेराफेरी के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
1: देखिए, ये बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं। जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज है, उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं। तो कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है जो वहां इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं तो आपके सिस्टम्स हार्मोनियस होना पड़ता है। चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है वो अलाइन करें। और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। ये उन लाइन में है जो इसे टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीथिंग प्रॉब्लम है। पार्टिसिपेशन का इश्यू है, जब जैसे वैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ती पड़ेगी, आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस नजर दौड़ाता है, वो यही कहेगा कि ये ज्यादा हमें चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ज्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है, वनस्पत इसकी की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है। तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ईटीएफ वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा, तो उसे आप जो आप और हम जैसे निवेशक है वो जैसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीजों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये एफएनओ और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
0: और उदन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है जिस तरह से आरबीआई कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहां पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
1: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीजें हैं वो हम एक हर जगह में, हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका के अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है।
0: आगे बढ़ते हैं। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की यह योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया। उदयन, आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस

0: और ये जब एआई रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह वो उन सारे बोर्ड्स को ऊपर लेके जा रही थी। और जब जैसे ही वहां पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है। वहां पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज्यादा शैलवी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो एआई रिलेटेड प्लेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहां पे असर ज्यादा देख रहे हैं।
1: राइट। And US President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media post, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected 2 ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. Moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a 3-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports लास्ट केम इन।
2: उद्योग हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है। ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कोई थाह नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
0: नहीं, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का वो सप्लाई वहीं से निकलता है और हमारे देश के लिए अगर देखें वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं, तो उनको वहां से सप्लाई अगर आपूर्ति मिलती है वहां पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है। अब दिक्कत यह अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीजों में असर पड़ जाता है। दूसरा है जो तेल वहां से आ रहा है उसका भी खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है, तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपके करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है और वो अब रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये जरूर चैलेंज बना रहेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो जरूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में।
2: आगे बढ़ते हैं। सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced close

0: closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
1: अभी आप सुन रहे थे मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर.

मीडियम वेव से हजार 71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है फरमाइश फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनिगो होकर भरा करती है पैमाने। मेजबान नईम का आदाब, प्रोग्राम की पहली पेशकश।

और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, साथ में भावेश भावसार, सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से शुभम किशोर वडतकर, और अगला ईमेल आसेगांव बाजार महाराष्ट्र से मिला है। हमारे सामीन है करण रंजीत पुनकर, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्कीवाली फलना जाहे, गोकुल चौक गंगजिला सहरसा बिहार से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं, पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग और साथ में गोविंद चुग, और आप हैं कैलाश फुरमाली, दीपक फुरमाली और साथ में वेदिका, अहमदपुर खेगांव खंडवा से हैं, और किशनगंज बिहार से हैं रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। और रविन्द्र मोहन दास साहब, आपको बताना चाहेंगे, आपने लिखा था कि आप हमारे ईमेल शामिल नहीं करते, शायद आपको ब्लॉक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है कि पिछले प्रोग्राम में भी आपका ईमेल शामिल हुआ था, देखिए आज भी हम आपका ईमेल शामिल कर रहे हैं। रविन्द्र मोहन दास जी, आप मुतमईन रहिए बिल्कुल, और आज भी आपके कई ईमेल मिले हैं, तो हम हमेशा कहते हैं अपने दोस्तों से कि एक ही ईमेल कीजिए। बहरकैफ आपका ईमेल शामिल हो गया, रसीद के लिए सिर्फ ये बात आप तक पहुंचाइए। फूल चंचोली पंधरपुर से जाकिर मुलानी, सुमया मुलानी, सुभान और उनके कुछ और साथी, और दुर्गापुर फरदाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं, वंजारा लेआउट नागपुर से अनिल कोहली, छाया कोहले और प्रियांश कोहले, और सिटी सेंटर खंडवा से मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन, सौम्या सेन की फरमाइश है। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं शेट सांगली से हनुमान शिंदे, संगीता शिंदे और ऋषिकेश और उनके कुछ और साथी, और फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हैं संबलपुर कांकेर से। अगले नगमे को आपने भी पसंद किया, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश, किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीट शहर से हैं। इम्तियाज इमाम आतिश, तायरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा की फरमाइश बिशनपुर केडी झारखंड से मिली है, और चमन पार्क दिल्ली से सोनम, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। खान मंजिल गंज टंडवा से आगा खान आगा और भाई ऊद खान, बेबी अमल खान, और अलीका डबाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, और ये फरमाइश मिली है गाजियाबाद से सीमा गांधी, राधा गांधी और साथ में मनोहर लाल गांधी साहब। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, बहुत जल्दी इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा। मधु कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, और ये अगला ईमेल हो गया रिपीट, इसको भी करते हैं साइडलाइन। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शंभू दयाल खटक, और नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

नया अंदाज फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आयशा शमशाद बेगम की आवाजों में। और अगला नगमा जी हाँ आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है और नगमा निगार है जानिसार अख्तर, मौसीकी ओपी नैयर की है। फिल्म है छुमंतर। छुमंतर फिल्म के इस नगमे को हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पसंद किया, उनके नाम भी शामिल कर लेते हैं जनाब। शेरवानी स्कूल गंज डंडवाड़े से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर भी साथ में शामिल हैं। और ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और साथ में राकेश कुमार, प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े कोलासर नांदूरा से। अगला ईमेल मिला है पश्चिम थोक गंज टंडवा से मनोवर अल्लाह पीरजादा, नसीन मिर्जा, अरबाज शहबाज का। गजानन गेले, नवदीप एले, सुशील हैं, सिद्धार्थ नगर देवपुर बाबली से। और राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और दिव्यांशी विश्वकर्मा है मामना हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं प्रकाश निषाद, साथ में है सौरभ निषाद और बल्लू निषाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। अगला मेल मिला है उमरखेड़ महाराष्ट्र से सिराज खान और शबाना खान का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और इसी नगमे को सुनने के मतमन्नी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, निमित दिशानी। और ये फरमाइशी ईमेल मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से मिला है तस्नीम अहमद फारूकी की जानिब से। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, साथ में अयूब खत्री। और जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता की फरमाइश थाना रोड बक्सर से है। और ये फरमाइश ईमेल मिला है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रावे, शेख शेख रहीम मुन्ना का। और चंडीगढ़ सिटी से बिमला नेजा, साथ में सतीश अनेजा हमेशा की तरह। और विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तृप्ति साहू की फरमाइश लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से मिली है। उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, करिश्मा शेख हैं हिप्परसोगा लातूर से। और अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना की फरमाइश है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बड़े गैबी चराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, और साथ में त्रिभुवन मालवीय, अनमोल मालवीय श्लोक और सुभाष योगी। राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू की फरमाइश है कृष्णा कॉलोनी हासी से। और खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, राजेश वर्मा। और साथ में और कौन कौन है ये भी देख लेते हैं जनाब। प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा है, मौनाथ भंजन से आपकी फरमाइश हमें मिली है यूपी से। हेमंत भाषंकर, प्रिया भाषंकर और साथ में मास्टर ओमी भाषंकर बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से। विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मूर्त की फरमाइश बोरखेड़ा उज्जैन से मिली है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं करणवीर हाउस भुचुकेचा बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण और उनके बहुत सारे साथी अल्ताफ हुजे, सैफुल्ला और सबात हुजे की फरमाइश सांगली जत शहर से मिली है। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइडलाइन। गांव नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्डा और साथ में अलका मिड्डा। और बेगूसराय से हैं इकबाल मोगा, अफसरी मोगा और साथ में अहमद मोगा। गुलाम साबिराही, मिराज जहां, साथ में ताज मोहम्मद अंसारी, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति की फरमाइश है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

0: जी छोड़ो ये फसाना।
1: अगर आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में आवारा बादल फिल्म का नगमा, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ, उषा खन्ना की है मौसीकी। और फरमाइशों की जहां तक बात है तो जनाब इस नगमे को सुनना चाहते हैं परमा टॉकीज नेपाल नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और साथ में कुशल शाह। और अगला ईमेल मिला है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके शव्या का। इसी नगमे को सुनने के मंतजर हैं रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक फातिमा और बीबी अलीसबा शेख। और आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल जामनिया गाजीपुर से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर, बेबी प्रियांशी हैं शाहनगर यवतमाल से। और अगला ईमेल मिला है कृष्णा घोट के प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे का, रोहिदास चौक पंधारपुर सिटी से। आकोर से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे सुनने के मुंतजर इस नगमे को। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और सुब्रत चौधरी साहब की फरमाइश कोलकाता से मिली है एज यूजुअल। और वरुण जवलकर से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। आखिर विमान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, मीनाक्षी और उनके बहुत सारे साथी। और ये फरमाइश ईमेल मिला है मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमसुल कमर राहिका, सहावर रोड गंज डुंडवारा से। अब ये जो मोहम्मद कलीम अंसारी हैं, शमसुल कमर राही हैं, अगर किसी और ईमेल में आते हैं तब क्या होगा जनाब? थोड़ा सा ख्याल रखिए जनाब, फिर वो ईमेल शामिल नहीं होगा, इस बात का भी ख्याल रहे आपको। चार डोंगरी पिपरिया कबीरधाम से हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन और उनके बहुत सारे साथी। और अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करते हैं साइड लाइन। पुराना तालाब डुमरा से सुनना चाहते हैं इस नगमे को वलीउल्लाह अंसारी, असमनाज अंसारी और साथ में सुल्तान अंसारी। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं वो दोस्त जो पहले शामिल हो चुके हैं, मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल की फरमाइश गुलबर्गा कर्नाटक से मिली है। और अगला ईमेल है तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और उनके कुछ और साथियों का। और इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, निशा अजीम और माहिरा अजीम। और आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सुनने के मुंतजर इस नगमे को सैयद यूनुस, सैयद नुमान और तनवीर मसरत। तो आइए सुनते हैं मुकेश का गाया हुआ ये नगमा।

कुमार शाही, संतोष शाही का इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं नगमा, और उसके बाद सिलसिला तो जारी रहेगा आपके नामों को शामिल करने का।

इसी नगमे को सुन रहे हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर एमपी से मनमोहन राजावत राज मधु राजावत राजश्री रक्षित नजीफ नगर नवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर निर्मला नाहवकर और विशाल नाहवकर और तिम्बरम चेन्नई से शाहिद अली फत फारूकी और हिफ्जा अली धर्मन छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार है भोपालगढ़ राजस्थान से और ये फरमाइश के लिए संबल पंजू सराय से छोटे अंसारी आलम अंसारी और साथ में असद अंसारी शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से फरमाइश की दिनकर सालवे गंगा सालवे और रंजीत थोराट ने और आप हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूद शाहीन हसन नाजिया और अहले खाना और स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी साथ में टुक टुक और कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता दादा ठाकुर रुद्र भाई रुद्रा राज नगर कांति निकेतन से रश्मि और झरना की फरमाइश है भरत कुमार के साथ राजकोट गुजरात से और इसी नगमे को सुन रहे हैं अजमेर शरीफ राजस्थान से गुलनाज बेगम हाशमी सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी और नगमा भी हो रहा है खत्म तो एक और नगमा आपकी नजर किए देते हैं जनाब और ये नगमा है इन्हीं दो आवाजों में और फिल्म का नाम है शोला और शबनम कैफी आजमी का नगमा लिखा हुआ है और खयाम की है मौसीकी।

और इस नगमे की फरमाइश की पजौनिया जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक और उनके अहल खाना ने, और नेहरू पार्क जावा तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई शेख चांद फारूक की फरमाइश भी थी। और इसी नगमे को सुन रहे थे राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी यादव सिंघारतला एक खंडवा एमपी से, और गांधीग्राम गुजरात से फरमाइश की थी प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी ने। और आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और वंश कनेरा मोहल्ला पटियाला से, सुरेश खुराना पप्पी, करण खुराना, लव्य खुराना एमएलबी रोड ग्वालियर से, और सहदेव दामोदर शशिकला और सुमेत की फरमाइश थी बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से। और अब आपको सुनवाते हैं एक और नगमा जगजीत कौर का गाया हुआ, फिल्म है शगुन और मौसीकी खयाम की है, और साहिल लुधियानवी साहब ने इस नगमे को कलम बन किया था। और इस नगमे को सुनने के मुंतजर हैं नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज शर्मा मंडी हरजीराम मलोट से, और मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल की फरमाइश नर्मदा पाक मंगलबेड़ा महाराष्ट्र से मिली है, और डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, तीन चौदह भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। ये फरमाइश ईमेल मिला है मारा दरवाजा एटा से नबी हसन नब्बासी, नबीद हसन, सुहेल हसन नब्बासी की जानिब से, और संतोष खडसे और विनोद खडसे की फरमाइश यवतमाल महाराष्ट्र से मिली। शेख शर्मा परवीन, एम फारूक शेख, बेबी मुस्कान है गणेशपुर गंजटंडवारा एटा यूपी से, और आप हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, बरबट बकाल बुलढाणा से, योगेंद्र नायक, और मुझे लगता है कि ये पहले शामिल हो चुके हैं जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। आदर्श मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, साथ में योगेश शर्मा, आनंद राज सागर, तरुलता सागर, चांदखेड़ा अहमदाबाद से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, आपने यवतमाल से फरमाइश हमें भेजी है, और फहीम मंसूरी अदी, फातिमा मंसूरी बांदा यूपी से आपकी फरमाइश है, और आप हैं तिलक राणा, रॉबिन राणा नेपाल पैलेस सागर से, और ये फरमाइश ईमेल नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर का है चरौदा बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से, और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, आज बड़ी देर से तशरीफ लेकर आए आप, बहर कैफ आ गए हैं, मोटाला महाराज से विजय सुरलकर, रत्मान सुरलकर, आरती सुरलकर हैं, और ये फरमाइश मिली है पटियाली रोड गंज टंडवा से सकीर अहमद शेख, समन शेख और सुहान शेख की, और कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे और रेखा पांडे, गुलाबदास मानिकपुरी, राजदास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी लेवाई छत्तीसगढ़ से, और के आर साहू, आकाश कमलेश, देवरी फाटपारा छत्तीसगढ़ से।

और इस खूबसूरत नगमे को कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज भी सुन रहे हैं। आज आप भी काफी देर से तशरीफ लाए जनाब, कोई बात नहीं, आ गए हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। धनौल तेले वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी भी आ लिया है। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। और ये फरमाइशी ईमेल मिला है नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, पिंकी सानी और अहले खाना का। और आप हैं रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता और हिना और सुहेल शेख, वजीर शेख और बबलू हैं मोटाला बाजार से। भगवान देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल दरअसल इनका नाम है। और थामड़गांव महाराष्ट्र से फरमाइशी लक्ष्मी देठे पाटिल, दादा समर्थ दादा भी हैं साथ में शामिल। और बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत ईशु की फरमाइश मुख्तसर पंजाब से मिली है। और आप हैं राष्ट्रवाल गजबीर, राधिका गजबीर, तन्मय गजबीर, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। और तारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, चौटाला हरियाणा से। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शिकायती मेरे बड़ा लंबा चौड़ा, बहरकैफ आप शामिल हो गए। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल और विशु की फरमाइश भी है। एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी की फरमाइश पुलोंग इलाहाबाद तेलंगाना से मिली है। और संजय सांगर, और रेखा संगर है सामरा नगर अमरावती महाराष्ट्र से। गुरमीत सिंह मेहता साहब है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, राडगाम कैम अमरावती महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश मिली है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की। और प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा, आशीष कोटेचा जंक्शन प्लॉट राजकोट से। और दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर, अक्षर रामेकर, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूभाई धाकड़ युवराज हैं, आपने मालवा हिंगड़ी से ये फरमाइश हमें भेजी। और नीलू में एक नीलम, साथ में डॉक्टर बंदर कुमार, बिट्टू कुमार, राजधानी रायपुर से। और भारत भूषण है साथ में उनके, अंजू श्रीवास्तव भी है, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आपने फरमाइश हमें इस साल की है।

जैन मंदिर वाली गली कुरावली से है, राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी और नौरीन अंसारी। खान जी भी रुद्रपुर से, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान साथ में, मंजू निम्मी।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में खयाम की थी मौसीकी और यही थी तामीर शाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: शुभ नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद जी।
3: मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर के अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा?
4: अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किया, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवेज को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों के आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है, जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती है, ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है, जो 4-5 लाइन जो की है, कुछ एग्जिस्टिंग लाइन्स को 4थी लाइन 3री लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो ये है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है और साथ ही साथ कई सारी इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी हद तक इस पे लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है।
3: प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है, तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें?
4: जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट की तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वहाँ सीमेंट के हो और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि पूरी तैयारी वही है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो, तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है वो इससे ज्यादा होगा।
3: प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुमिड्डी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लोह अयस्क, स्टील, सीमेंट कंटेनर और अनाज की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही है, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगी?
4: देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को कम प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल जो भी उनकी चीज है वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात आयात के लिए करना है, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के लिए जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद वहां पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहां चौथी लाइन की तैयारी कर रहे थे। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे रूट कम करे, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े।
3: सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी, तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे।
4: जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है, लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर है छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं, और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में। तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर है, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से, आसपास के छोटे छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम।
3: वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, और श्रोताओं आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदिहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं?
4: सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहां की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहां नहीं है वहां पहुंचाया जाए, मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुमेडीपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई विजयवाड़ा रेणीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है, चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे 2-3 टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकैट लेक हो, निलपत्तू बर्ड सेंचुरी हो, और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दहाड़े की जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहां एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहां पे लोग पहुंचेंगे, तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदरूनी इंटरनल टूरिज्म मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है।

0: प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पिछले एक से डेढ़ दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया। इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई है। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है? अब
1: पिछले करीब 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे, और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है। अगर एक बारी आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उन्हें दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हुई है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा आपने सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी एक माल गाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे। अगर अब आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा कि आपका सामान पहुंच जाएगा तो 3रे दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है।
0: चुनाव बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है, तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा?
1: जी बिल्कुल, इसमें एक तो जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है उसके लिए है, और तीसरा यह है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्ट है जैसे अभी रेलवे में हमने बात की थी ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की है करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हुए हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द, तो ये उसी दिशा की ओर कदम है।
0: प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है, लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है, तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इसके पीछे आप क्या मानते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा?
1: इसमें 2 पहलू हैं, एक तो आपने यहाँ गति जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे अब दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है रास्ते कम किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का होता था ये तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ, तो और भी जिस सारे क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते, जैसे आपने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है, लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है, कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से गति जब होती है तो आपको कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
0: प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा, भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा? बहुत कम शब्दों में
1: इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि

0: सेक्टर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री में सामान तो पड़ा है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे, जिसे कहते हैं, मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए साध तो लिया पहुंचना कठिन होगा।
1: केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: अभी आप सुन रहे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत कव्वालियां, फनकार अजीज अहमद खान, वारसी कव्वाल और हमनवा।

0: का सामना करना पड़ा था। ग्रुप डी से भारत और इंग्लैंड अगले राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है। कल गाले में पहले टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका पर 165 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत को दो मैचों की सीरीज में 1-0 से शपथ हासिल हो गई है। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था और लंच के बाद उसकी पूरी टीम 206 रन पर आउट हो गई। भारत के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुतार ने भारत की जीत में इंतहाई अहम रोल अदा किया और उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट हासिल किए और पहली मरतबा टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए, जबकि यह उनका महज दूसरा टेस्ट मैच था। 24 साल भारतीय खिलाड़ी बैरोने मुल्क 10 विकेट लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र स्पिन गेंदबाज भी बने। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत में अमरीकी सफीर सर्गेय गौर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। ईरान ने अमरीकी फौजी कार्रवाईयों में सहूलत के खिलाफ खलीजी ममालिक को खबरदार किया है। कोलम्बिया में आने वाले 7.4 शिद्दत के ताकतवर जिलजिले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 6611 अफराद जख्मी और 290 अफराद लापता हैं। नीदरलैंड में मर्दों के एफआईएच हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गाले में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुतार ने पहली मरतबा 10 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नेशन वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिक की मौसीकी में लीजिए अब सुनिए सुनील कान सक्सेना का सितार पर बजाया राग दुर्गा।

0: बकवास, मोहब्बत दिमाग की एक बीमारी के सिवा और कुछ नहीं।
1: वजीरे आला, बीच में ना टोकिए। अजनबी शायर, अपना बयान जारी रखो।
2: बहुत खूब शहजादी साहिबा,

0: हम मिला कुल अला एक शहजादी एक फकीर से क्यों कर मोहब्बत कर सकती है?
1: आप इन बातों को नहीं समझ सकते वजीर आला। हाँ अजनबी, तो उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ?

0: चलो माफ करना।
1: वजीर आला, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। आज नबी, फिर उस बदनसीब शहजादी का क्या अंजाम हुआ?

0: ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 312 ہو گئی ہے، جبکہ 6611 افراد زخمی اور 290 افراد لاپتہ ہیں۔ نیدرلینڈ میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں گالے میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی۔ مانو ستار نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلوٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈ پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کا ایک بجا چاہتا ہے۔ ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں انجلی۔ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ड साइड तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमनीडीह पुंडी कुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी

देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का ये लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए गोल्डन एरा के वो खूबसूरत गीत जो हमेशा सदाबहार रहते हैं। और आज के इस गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म CID के इस गीत के साथ। आवाजें हैं शमशाद बेगम की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है OP नय्यर साहब ने।

अगला गीत है फिल्म चोरी चोरी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत है शंकर जयकिशन का और गीतकार हैं शैलेंद्र।

अगला गीत है फिल्म भाभी से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: अभी आपने सुना फिल्म राम और श्याम का ये गीत, आवाज़े मोहम्मद रफी की थी। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज़े हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: क्या कहा?

गीत सुनेरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आखिरी गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की है। इस गीत के साथ ही अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को हैं। आप समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ग साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों में ब्रिटिश मिसाइल बलों की सीधी भागीदारी युद्ध में सहभागिता के समान है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हो गया है। यह संवाद पूरे देश के युवाओं के लिए नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की एक सुनियोजित और योग्यता पर आधारित यात्रा में भाग लेने का अवसर है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफिन में एच आई FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर साइड तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे के 4

0: एंटी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिडीह पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन, कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्सटेल्फेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The unit cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the union cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। वक्त है गीत गजल कार्यक्रम का। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारी सी गजल के साथ, जिसे गाया है मिताली ने।

उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन, आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम। अभी आपने कामचोर फिल्म से इस गीत को सुना, आइए अब सुनते हैं एक और प्यारी सी गजल।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

गीत गजल कार्यक्रम में हमने अगला गीत या अगली गजल ली है फिल्म पिंजर से, स्वर जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम के हैं।

आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। अभी आपने ये गजल सुनी, ये गीत कहें फिल्म पिंजर से, जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम की आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। कोशिश यही कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक रहे, और गजलें और गीत तो ऐसे होते हैं जो सबको पसंद आते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, जिनमें एक इत्मीनान है, जिनमें एक सुकून है, जिनके अंदर एक ऐसा जज्बात है जो जिंदगी को अपनी तरह सुनाई देता है। जो संगीत है वो ये दर्शाता है या ये कहता है कि सरोकार तुमसे है, सरोकार मुझसे है। कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। ये थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सागान रूप में।

कि स्वाति करनाल की एक भक्त रचना सुना रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजा परम संतान।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में आइए अब सुनते हैं उषा विजय कुमार को राग चारुकेशी में वाद्य गुट्टू।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बृहस्पति वार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और 24 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम आपको जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद आप प्रातः 5 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। पांच बजकर 10 मिनट का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत आज आप समझेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत। भारतीय सुगम संगीत के कार्यक्रम में 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है, जिसमें प्याज वसीफुद्दीन डागर के स्वर में आप सुनेंगे राग भटिया।

हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के साथ सुबह 6 बजे और 6:05 पर। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन राजा राम मोहन राय के विचार। 6:45 का समय रामचरितमानस से अयोध्या कांड भाग 23 आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

परम पपुले सत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पा

ਪ੍ਰਿਯਸਿਓਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ

बिनौ करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहया भरपूर।

चल महियन सोई, चल महियन सोई, सुन पीती पर दर्शन देख पान, अब सुन पीती पर दर्शन देख पान, मेरा सुंदर स्वामी जी चरण कमल अधिकारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल।

दर्शन देने अपार मेरा सुंदर स्वामी थे हाँ चरण कमल पद सार मेरा सुंदर

मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला। मेरा सुंदर स्वामी जी चरण कमल पद सारा, मेरा सुंदर स्वामी।

मेरा सुंदर स्वामी जी और चरण कमल पग सारा मेरा सुंदर स्वामी।

ਲਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ

हर कलम हार कहो कौन बेच सके। इस बम ज्ञान दान कर दिए चाहे जी सतसार श्रीनिवास आचार्य सदा नी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जिनके मन सारे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे सह प्यार नहीं करते रे सचा नाम दान सचना बेदान मेरा जिन भुखा सब गवान प्रसाद सुख मनिया वस्या इच्छा सब गुजान सदा गुरबान की रात मिठू जिस गाय बढ़िया कहे नानक सुनो संत सब करो वे आरो सचा नाम राजे पंच सबंध कर पाके कर सुबह दे शब्द वाजे पराज करतार पंच दो तुदवास की ते काल कट कमारे आ तुम करें पाया तुझ जिन को से नाम हर तेलाग कहे नानक दर्शन वाद करे।

पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल धर्म।